ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 3 तारीख, तदनुसार 24 जून सन 2026। इस समय प्रातः के 5:58:40 हुए हैं। अब हमारे केंद्र से आज के कार्यक्रमों का प्रसारण आरंभ होता है। हम अपने सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं।

0: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय प्रातः के 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रास लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निहत्ते नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया है। जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति रोक दी गई है और इंटरनेट बंद है। खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमरीका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही जलडमरू मध्य को पार कर सकेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार

0: अलनीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही हैं। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
1: अलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है, और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: लखनऊ में हाल ही में हुई आग की घटना के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य भर में कोचिंग संस्थानों का सर्वे और अग्नि सुरक्षा ऑडिट शुरू किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि सभी कोचिंग संस्थानों का सर्वे और अग्नि सुरक्षा ऑडिट जल्द से जल्द कराया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार आज बेंगलुरु में उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 के तहत निवेशक रोड शो का आयोजन करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। रोड शो में देश के प्रमुख उद्योगपति और निवेशक भाग लेंगे। कार्यक्रम में बुनियादी ढांचे, आईटी, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर और विदेशी निवेश से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि जब तक ईरान समर्थित गुट आतंकी गतिविधियों में लिप्त है और हमले जारी रखे हुए हैं, तब तक पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बहाल नहीं हो सकती। अबुधाबी में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि लेबनान में संघर्ष विराम को लेकर चर्चा ईरान के साथ चल रही वार्ता से अलग है। श्री रूबियो ने कहा कि उन्होंने अमरीका के उपराष्ट्रपति जेरी वेंस और लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ओन से बात की है और अमरीकी अधिकारी लेबनान में पहल कर रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि कोई भी कूटनीतिक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि क्षेत्रीय सुरक्षा और ईरान समर्थित गुटों की गतिविधियों के मुद्दे पर कितनी प्रगति हो पाती है। पश्चिम एशिया में शांति बहाली को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच स्विट्जरलैंड में हाल ही में वार्ता हुई है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों तक असम, मेघालय, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तराखंड में भी तेज हवा के साथ आज बारिश की संभावना जताई है। फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने बड़ी जीत हासिल की है। अमेरिका के ह्यूस्टन में खेले गए ग्रुप के मुकाबले में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया। स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। अब आप सुनेंगे हमारा अगला प्रसारण विविध भारती के मुंबई केंद्र से।

आज का कथन। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, सबसे बड़ा धर्म है अपने स्वभाव के प्रति सच्चा होना। स्वयं पर विश्वास सदैव रखना चाहिए। ये था आज का चिंतन। लीजिए सुनते हैं भक्ति रचनाएं वंदनवार में।

ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। झरोखा में प्रस्तुत है जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की।

अब से कुछ देर बाद ठीक 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस। 6:45 पर होगा कार्यक्रम संगीत सरिता।

8:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम त्रिवेणी और 8:30 पर होगा कार्यक्रम चित्रलोक। ठीक 9:30 पर हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम आज का अखबार और 10:05 पर आज आप सुनेंगे लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़। आज के हमारे इस कार्यक्रम का विषय है गर्मियों की छुट्टियां किताबों का उपहार, बच्चों में जगाएं पढ़ने का प्यार। ग्यारह बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां। 11:15 पर होगा गैर फिल्मी संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरबहार और 11:30 पर आज आप सुनेंगे हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम संजीवनी। यादों की महफिल इस कार्यक्रम का समय रहेगा दिन में 12:05 का। 1:15 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत और 1:30 पर रिले करेंगे कार्यक्रम सुरीला सफर।

दोपहर में 2 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम त्रिवेणी और 2:30 पर होगा कार्यक्रम सदाबहार नगमे। सखी सहेली इस कार्यक्रम का समय रहेगा दोपहर में 3 बजे का। शाम 4 बजे पिटारा के अंतर्गत आज होगा कार्यक्रम आज के मेहमान। शाम 5:05 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत और 5:20 पर आप सुना करते हैं प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे। 5:30 पर आप सुनेंगे अगला प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। शाम 6:30 पर सुनेगा कुछ पंजाबी गीत और शाम 7 बजे का समय रहेगा जयमाला कार्यक्रम का। शाम 7:47 पर आज आप सुनेंगे कार्यक्रम रेडियो डायरी और रात्रि 8 बजे होगा कार्यक्रम हवा महल और 8:15 पर एक बार फिर आप सुनेंगे कार्यक्रम चित्रलोक। आपके लिए ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 9 बजे और 9:30 पर होगा कार्यक्रम आज के फनकार। छाया गीत कार्यक्रम का समय रहेगा रात्रि 10 बजे का और रात 10:32 पर आप सुनेंगे पंजाबी गीतों पर आधारित कार्यक्रम सुर सांझ।

0: झरोखा में ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। अब आप सुनेंगे श्री राम चरित मानस। इस कार्यक्रम को हम रिले कर रहे हैं विविध भारती के मुंबई केंद्र से।
1: आज आप सुनेंगे इसका भाग 229।

श्री राम के मन में ये सोच व्याप्त है कि राजा जनक समेत भरत सभी माताएं अयोध्या तथा जनकपुरवासी दुखी हैं और व्यर्थ ही चित्रकूट में वनवास के कष्ट भोग रहे हैं। उनकी चिंता सुनकर वशिष्ठ जी मिथिलापति से सबकी दुविधा समाप्त करने का आग्रह करते हैं। मुनिवर के वचन सुनकर जनक जी का ज्ञान और वैराग्य तिरोहित हो गए। वो प्रेम और मोह के वशीभूत हो गए। उन्हें लगा कि यहाँ आकर उन्होंने अच्छा नहीं किया। राजा दशरथ ने तो पुत्र विरह में अपने प्राण त्याग दिए और वे उन्हें और गहन वन में भेजकर अपने प्राण भी नहीं त्याग सकेंगे। मिथिलापति को नहीं समझ में आता कि अब क्या किया जाए। अतः क्या किया जाए इसका निर्णय उन्होंने भरत पर छोड़ दिया। भरत ने कहा, सारा जगत जानता है कि सेवा धर्म अत्यंत कठिन है। स्वामी धर्म और स्वार्थ एक दूसरे के विरोधी हैं। बैर अंधा होता है और प्रेम में बुद्धि साथ छोड़ जाती है। अतः मुझसे न पूछकर श्री राम की रुचि का ध्यान रखते हुए वही करना चाहिए जो सर्वसम्मत तथा सबके लिए हितकारी हो।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस की भाग 229।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला वॉयलिन का विहंगम संसार। आमंत्रित कलाकार हैं जाने माने वॉयलिन वादक पंडित एसएल कंडारा। आपसे बातचीत की है जयंत पात्रिकर ने। आइए आज सुनते हैं इस श्रृंखला की सातवीं कड़ी।
1: सभी संगीत प्रेमियों का हम स्वागत करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं सुप्रसिद्ध वायोलिन वादक पंडित एस एल कंडारा जी। आपको तबले पर संगति कर रहे हैं श्री संतोष मिश्र जी। पंडित जी, रागों की चर्चा हो रही है। पिछली कड़ी में हमने राग शंकरा की बात की, आज राग मिश्र खमाज के बारे में आपसे जानना चाहेंगे।
2: जैन जी, ये बहुत रेलेवेंट और बहुत आपने अच्छा चयन किया, क्योंकि शंकरा बहुत गंभीर राग है
1: जी,
2: जबकि मिश्र खमाज लाइट प्रकृति का राग है, सुगम संगीत में ज्यादा इसका इस्तेमाल होता है
1: जी जी।
2: और ठुमरी दादरे में मुख्य रूप से खमाज में ठुमरी गाई जाती है
1: जी, बिल्कुल।
2: और लाइट म्यूजिक का सबसे प्रिय राग है ये मिश्र खमाज।
1: हाँ,
2: ठुमरी दादरा में बनारस और पटियाला, ये दो स्कूल बहुत बड़े स्कूल रहे हैं
1: जी।
2: पटियाला में उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब, उनके बेटे मुनव्वर अली खान, अजय चक्रवर्ती, जगदीश प्रसाद पंडित, ये सब लोग उस परंपरा को फॉलो करते रहे
1: जी।
2: जबकि बनारस घराने की जो स्टाइल है ठुमरी, उसमें सिद्धेश्वरी देवी और महादेव प्रसाद मिश्रा, उनके पहले मौजुद्दीन खां, और बड़ा उनका इतिहास
1: जी।
2: लेकिन जो उसके बाद जो कलाकार मुख्य रूप से जिनका योगदान रहा है, वो गिरजा देवी जी, और गिरजा देवी जी के बाद सिद्धेश्वरी देवी या उनकी समकालीन कह लीजिए आप, और पंडित महादेव प्रसाद मिश्रा जी, जो इस परंपरा के बहुत बड़े एक्सपोनेंट थे। तो उनके साथ मैंने कुछ कॉन्सर्ट संगत की थी, तो मुझे भी उनके गाने की

0: क्या बात है पंडित जी। जैसे जैसे इस ठुमरी के स्वर गूंज रहे थे, मन में गीत उभर रहा था, फिल्म बुढ़ा मिल गया।
1: अरे बहुत अच्छा, मन्नाडे साहब का,
0: मन्नाडे साहब का गाना है।
1: बिल्कुल,
0: आयो कहां से घनश्याम।
1: बिल्कुल,
0: और ये शब्द मजरू सुल्तानपुरी के हैं, संगीतकार राहुल देव बर्मन। यही गीत अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं।
1: जरूर।

0: मिश्र खमाज पर आधारित बुड्ढा मिल गया फिल्म से ये गीत हमने आपको सुनवाया श्रोताओं। इसी के साथ वायोलिन का विहंगम संसार श्रृंखला की ये कड़ी अब समाप्त हो रही है। अगली कड़ी में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: वायलिन का विहंगम संसार, श्रोताओं संगीत सरिता कार्यक्रम में अभी आप सुन

0: रहे थे इस श्रृंखला की सातवीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार जाने माने वायलिन वादक पंडित एसएल कंडारा, आपसे बातचीत की जयंत पात्रिकर ने, तबला संगति संतोष मिश्रा की।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा।

0: जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: एक

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, भूले बिसरे गीत लेकर हाजिर होते हैं कुछ ही पलों में।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक वीको वजरदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: दीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
2: जी,
1: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
2: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
1: पर ये होगा कैसे?
2: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
2: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस
2: बस
1: समझ गया।
2: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: आरबीआई कहता है
4: जानकार बन।
5: भूलिए बिसरे गीत।

धरती माता, ये था फिल्म का नाम। पंकज मलिक, उमा शशि, केएल सहगल की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। पंकज मलिक ने संगीत दिया और पंडित सुदर्शन ने इसे लिखा है।

0: शमशाद बेगम और गीता बाली की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। रंगीन रातें फिल्म का नाम था। केदार शर्मा ने इसे लिखा, रोशन का संगीत।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूं मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम भूले बिसरे गीत।

0: अरे भाई अरे भाई
1: अरे भाई निकल के आ घर से आ घर से, दुनिया की रौनक देख फिर से देख ले फिर से। अरे भाई

0: जलदीप फिल्म का नाम था।
1: एक बेटी की यादों में उसके पिता
2: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
1: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
2: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
2: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब संपन्न होता है।
3: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: त्वचा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही, वीको टर्मरिक क्रीम। मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सौम्य और उज्जवल बनाए। वीको टर्मरिक क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती प्रोग्राम, हम है राही प्यार के लेकर हाजिर होते हैं बस कुछ ही पलों में।

0: किशोर कुमार और सुलक्षणा पंडित की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। बंदी फिल्म का नाम था। इंदिवर ने इसे लिखा। श्यामलाल मित्रा का संगीत।
1: दीवाना।
2: एक दीवाना शहर में।
1: एक दीवाना नहीं, एक दीवानी भी।
2: दो दीवाने शहर में।

ये सुदास, हेमलता और बंसरी सेनगुप्ता की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे। दुल्हन वही जो पिया मन भाए फिल्म का नाम था। रविंद्र जैन ने इसे लिखा और उन्हीं का संगीत।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में धर्मवीर इस फिल्म से गीत अभी आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी ने इसे लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज।

0: लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में गीत आप सुन रहे थे दूसरा आदमी फिल्म से, मजरू सुल्तानपुरी ने से लिखा, राजेश रोशन का संगीत।
1: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। इस समय सुबह के 8 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद और साइबर खतरों समेत वैश्विक सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी सहयोग को और मजबूत करने का आह्वान किया। कतर के अमीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर रास लाफान गैस संयंत्र दुर्घटना में 12 भारतीयों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। भारत ने पाक अधिकृत कश्मीर की स्थिति पर पाकिस्तान की टिप्पणी की कड़ी आलोचना की, कहा पाकिस्तान मानवाधिकारों के हनन से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक, और फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। इंग्लैंड और घाना के बीच मैच बगैर किसी गोल के बराबरी पर छूटा। और अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने की। बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खास तौर से चर्चा हुई जो अब वैश्विक रूप ले चुके हैं। प्रतिनिधियों ने ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आतंकवादी संगठनों द्वारा नई तकनीक के दुरुपयोग पर भी चर्चा की। बैठक में आतंकवाद रोधी तथा सूचना और संचार तकनीक के उपयोग में सुरक्षा संबंधी कार्य समूहों के कार्यों और उनके परिणामों की भी समीक्षा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ साझा कार्रवाई की प्रतिबद्धता दोहराई। बैठक के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सर्गेई शोइगु के बीच नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के क्रम में द्विपक्षीय वार्ता हुई है। इस वार्ता में दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री डोभाल ने सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया।
1: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
2: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति

0: जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ टेलीफोन पर बात की। कतर के अमीर ने रविवार को रास लाफान शहर में हुए हादसे में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर दुख जताया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पीड़ित परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के लिए धन्यवाद दिया और घायलों को तुरंत चिकित्सकीय मदद पहुंचाने के लिए श्री थानी की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया में शांति के प्रयासों में कतर की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इलाके में शांति और स्थिरता बहाल होगी। इस बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कतर में हादसे पर बताया कि दुर्घटना में मृतकों के शव वापस लाने के प्रयास जारी हैं।
2: रास लफान परियोजना में जब वहां एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहां के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
1: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निहत्थे नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया, जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति रोक दी गई है और इंटरनेट बंद है। श्री जायसवाल ने बांग्लादेश में देवी देवताओं की मूर्तियों के अपमान की खबरों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है।
2: हम लोगों ने देखा कि बांग्लादेश में से कुछ खबर आई कि वहां पर हिंदू भगवान के तस्वीरों के साथ अपवित्र हरकतें हुई, जिसके कारण वहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ है। और हम लोग क्या ये उम्मीद है कि बांग्लादेश की सरकार जो वहां पर चरमपंथी लोग हैं उस पर अंकुश लगाएगी और जो वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रह रहे हैं उसकी सुरक्षा को गारंटी करेगी।
1: खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे हैं।
2: 11 जहाज जो भारत की तरफ आ रहे हैं, इसमें से 3 भारतीय जहाज हैं जो कि क्रूड ऑयल टैंकर्स हैं। इनमें 2,85,000 मेट्रिक टन क्रूड ऑयल है। इसके अलावा एक विदेशी पताका के साथ एक एलपीजी टैंकर जो भारत की तरफ आ रहा है और एक विदेशी पताका के साथ फर्टिलाइजर कार्गो के साथ वो आ रहे हैं। और जो अन्य 10 हमारे जहाज हैं वो भी हमारी उम्मीद है कि जल्द ही वो हॉर्मुज पार करके भारत की तरफ आ जाएंगे।
1: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन होर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे 11,000 से ज्यादा नाविकों को निकालेगा। संगठन के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने कहा कि इस अभियान में मदद के लिए जरूरी सुरक्षा की गारंटी ली गई है। इस अभियान में ईरान, ओमान और क्षेत्र के अन्य देशों और समुद्री उद्योग जगत का सहयोग लिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के जिनेवा कार्यालय में ईरान के राजदूत अली बहरीनी ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य व्यावसायिक जहाजों के लिए बिना किसी टोल के पूरी तरह खुला है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और अमेरिका ने प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय वार्ता शुरू की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: दोनों पक्ष 24 जुलाई से पहले एक अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसी तारीख को व्यापारिक साझेदारों से होने वाले आयात पर अमेरिका का अस्थायी

0: अस्थायी 10% टैरिफ समाप्त होने वाला है। 20 फरवरी को अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने व्यापक टैरिफ को रद्द कर दिया था। इसके बाद अमरीकी प्रशासन ने सभी देशों पर 24 फरवरी से 150 दिनों के लिए 10% का अस्थायी टैरिफ लगाया था। द्विपक्षीय व्यापार तनाव कम होने के बाद अमरीका ने ज्यादातर भारतीय सामानों पर जवाबी टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया और पहले से लगे 25% पेनल्टी टैरिफ को हटा दिया। भारत ने भी अमरीका के कई औद्योगिक और कृषि उत्पादों पर टैरिफ कम करने या समाप्त करने का प्रस्ताव दिया था, जिनमें सूखे डिस्टिलर अनाज, पशुओं के चारे के लिए लाल ज्वार, ट्री नट्स, फल, सोयाबीन तेल, वाइन और स्पिरिट्स आदि शामिल हैं। रिशु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, विकास की गति को तेज करने और समावेशी विकास के लिए सभी पक्षों से और अधिक सहयोग आवश्यक है। उन्होंने ये बात कल नई दिल्ली में ग्लोबल कन्वर्जेंस फॉर ग्रोथ सम्मेलन को ऑनलाइन संबोधन में कही। एक रिपोर्ट।
2: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि मौजूदा दुनिया में समृद्धि और चुनौतियां तो साझा हैं, लेकिन संघर्षों और अनिश्चितता का असर विकासशील और पिछड़े देशों पर अधिक पड़ता है। उन्होंने कहा कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए साझा वैश्विक कार्रवाई जरूरी है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि सभी देशों की घरेलू जरूरतें अलग अलग होती हैं और लगातार बने रहने वाले वैश्विक असंतुलन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की विकास दर मुख्य रूप से घरेलू मांग के कारण है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है और मध्यम अवधि में इसके सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर लगभग 7% रहने का अनुमान है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में विकसित और उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों ने हिस्सा लिया। इनमें भारत, ब्राजील, चीन, केन्या, दक्षिण कोरिया जैसे G7 देशों और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रतिनिधि शामिल थे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अल नीनो के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने के लिए खरीफ फसल के लिए एहतियाती तैयारियां कर रही है। श्री चौहान ने नई दिल्ली में कहा कि जुलाई में भी मानसून के कमजोर रहने की आशंका है।
3: ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है हमारी खरीफ की फसल, उस पर इसका असर पड़ सकता है। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है। इनमें से 111 जिले हमारी उच्च प्राथमिकता वाले जिले होंगे क्योंकि इनमें सिंचाई 25% से कम है। मध्यम प्राथमिकता वाले मतलब जहां 25-50% सिंचाई की व्यवस्थाएं हैं ऐसे 76 जिले हैं और 128 जिले निम्न प्राथमिकता वाले, इसलिए वहां सिंचाई के लिए डैम और बाकी चीजों की व्यवस्था है।
1: सरकार ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है और इसकी निरंतर निगरानी की जा रही है। निगरानी में तेल कंपनियां, वाहन निर्माता, ईंधन परीक्षण एजेंसियां और अन्य पक्ष शामिल हैं। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर इस बारे में चल रही खबरें भ्रामक हैं, निराधार हैं। E20 पेट्रोल की शुरुआत के बाद से एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन की खराबी या वाहन में किसी तकनीकी खराबी की कोई व्यापक शिकायत सामने नहीं आई है। लखनऊ में कोचिंग सेंटर में आग लगने की घटना को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के कोचिंग संस्थानों के नियमन को मजबूत करने और अवैध कोचिंग सेंटर्स के विरुद्ध अभियान की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पूरे राज्य में आग से बचाव के उपायों की जांच मिशन मोड में की जाएगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप के में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागे और इसके साथ ही रोनाल्डो 6 विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। ग्रुप एल के एक अन्य मैच में कनाडा के टोरंटो में क्रोएशिया और पनामा के बीच मैच चल रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद मनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों से पद्म सम्मान ग्रहण करने वाली हस्तियों की तस्वीरें और होर्मुज को पार कर भारत की ओर आगे बढ़ रहे 11 ईंधन वाहक जहाजों की खबरें सबसे ऊपर छाई हैं। दैनिक भास्कर ने CUET परीक्षा परिणाम में सर्वाधिक अंक पाने वाली देवीना गहलोत का चित्र प्रकाशित करते हुए खबर को

0: शीर्षक दिया है 100 परसेंटाइल वाले 20 प्रतिशत बढ़े, प्रीमियम संस्थानों में दाखिला कठिन होगा। नवभारत टाइम्स ने परीक्षा में सफल रहे कुछ छात्रों के चित्र के साथ इस समाचार को शीर्षक दिया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के दाखिले में CUET के बाद भी 100 प्रतिशत की रेस। देशबंधु ने मौसम के मिजाज को पहले पन्ने पर जगह दी है। खबर को शीर्षक दिया है दिल्ली NCR में मौसम ने ली करवट और 12 दिन की देरी से मुंबई पहुंचा मानसून, जबकि दैनिक भास्कर का कहना है मानसून 3 दिन देरी से मुंबई पहुंचा। पत्र ने दिल्ली NCR में अभी हफ्ते भर और गर्मी और उमस बने रहने का अनुमान प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने संकट के बीच शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय में कहा है कि पश्चिम एशिया में हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाने की वजह से देश में बढ़ती महंगाई के बीच अब इसका असर औद्योगिक उत्पादन पर भी दिखने लगा है। पत्र की राय में मौजूदा संकट के लिए भले ही वैश्विक परिस्थितियां जिम्मेदार हो, लेकिन इसके समाधान के लिए कारगर कदम उठाने के बजाय इसका बोझ जनता पर डाल देने को उचित नहीं ठहराया जा सकता। वहीं राजस्थान पत्रिका ने कृषि क्षेत्र में भारत की उपलब्धि को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। वैज्ञानिकों की 7 साल की मेहनत रंग लाई, सुपर फूड ग्रेन ओट्स में भारत बन रहा आत्मनिर्भर।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद और साइबर खतरों समेत वैश्विक सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी सहयोग को और मजबूत करने का आह्वान किया। कतर के अमीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर रास लाफान गैस संयंत्र दुर्घटना में 12 भारतीयों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की स्थिति पर पाकिस्तान की टिप्पणी की कड़ी आलोचना की। कहा पाकिस्तान मानवाधिकारों के हनन से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। और फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला प्रसारण विविध भारती के मुंबई केंद्र से।

आज की त्रिवेणी में पड़ोसियों की चर्चा। वर्तमान समय में अधिकांश लोग अपने कामकाज और नौकरियों के कारण प्रायः एकल परिवारों में रहते हैं। यहाँ पति पत्नी और एक या दो बच्चों का परिवार होता है। सगे संबंधी दूसरे शहरों या गांवों में छूट जाते हैं। ऐसे में पड़ोसी ही सुख दुख के साथी होते हैं। वैसे भी ये सच है कि किसी भी बड़ी मुसीबत में पड़ोसी ही मदद के लिए सबसे पहले काम आते हैं। पड़ोसियों से हमें हमेशा मृदु व्यवहार और सहयोग का भाव बनाकर रखना चाहिए। अगर पड़ोसियों से अच्छा व्यवहार है तो जीवन की मुसीबतें बहुत आसान हो जाती हैं।

हम में से बहुत सारे लोग पढ़ाई लिखाई करने, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने अथवा दूसरे क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने के लिए किराए के मकान लेकर रहते हैं। ऐसे लोगों को पड़ोस में बहुत सजग रहना चाहिए। उन्हें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि वे यहाँ केवल अपना करियर बनाने के लिए आए हैं। उन्हें रास्ते से भटकाने के लिए पड़ोस में बहुत से आकर्षण मौजूद होते हैं।

0: और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
1: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
0: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
1: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
0: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
1: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: एक जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा।

हाफ गर्लफ्रेंड। इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे ऐश किंग की आवाज में, और आप सुन रहे हैं चित्रलोक इस वक्त विविध भारती से। अगला गीत आपको सुनवाते हैं।

0: मैं माँ बनने वाली हूँ, बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
1: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
0: क्या ये जांच उपलब्ध है?
2: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
3: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है।
2: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार।
3: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
4: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: श्रोताओं, मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर अभी भी खुलकर बात नहीं होती। और दूसरी ओर आप समाज में, सड़कों पर या कहीं और देखें तो वायलेंस दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हम में संयम लगातार कम होता जा रहा है। और अगर आप ऐसे स्थान पर हैं जहां से आप दूसरों की मदद कर सकते हैं पर आप मदद करना नहीं चाहते, तो क्या कहेंगे आप? यही ना कि बड़ी संख्या में हम लोग मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं। बहुतायत में कुछ ना कुछ केमिकल लोचा तो है। हमें किस प्रकार से लेनी चाहिए मेंटल हेल्थ से जुड़ी गाइडेंस, किन किन बातों का रखना होगा ध्यान, इन सब पर चर्चा के लिए आज दोपहर 3:30 से 4 बजे तक FM लाइफलाइन के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे डॉक्टर अखिलेश शर्मा, एडिशनल प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्री, PGI चंडीगढ़। हमारे फोन नंबर्स हैं 2660615, 2660617, 2660619 और STD कोड है 0172। हमें आपकी कॉल्स का इंतजार रहेगा।
2: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
3: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी?

0: श्री गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं।
1: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
0: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
1: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन। अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
0: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें। हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
0: कम खर्च, बड़ी पहुंच।
1: आकाशवाणी चंडीगढ़।

राहत फतेह अली खान और सुजैन डी मेलो की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे वीर फिल्म से। गुलजार ने इसे लिखा, संगीत साजिद वाजिद का। वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

0: अरिजीत सिंह को आप सुन रहे थे। इस गीत में राबता फिल्म का नाम था, अमिताभ भट्टाचार्य ने इसे लिखा और प्रीतम का संगीत।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूँ मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम चित्रलोक।

0: सनम पुरी और नीति मोहन की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे। स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 फिल्म का नाम था। अनविता दत्त ने इसे लिखा और विशाल और शेखर का संगीत। अभी वक्त है इस प्रोग्राम में एक छोटे से अंतराल का।
1: श्रोताओं, मेंटल हेल्थ मानसिक स्वास्थ्य एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर अभी भी खुलकर बात नहीं होती, और दूसरी ओर आप समाज में सड़कों पर या कहीं और देखें तो वायलेंस दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हम में संयम लगातार कम होता जा रहा है, और अगर आप ऐसे स्थान पर हैं जहां से आप दूसरों की मदद कर सकते हैं पर आप मदद करना नहीं चाहते तो क्या कहेंगे आप? यही ना कि बड़ी संख्या में हम लोग मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं। बहुतायत में कुछ ना कुछ केमिकल लोचा तो है। हमें किस प्रकार से लेनी चाहिए मेंटल हेल्थ से जुड़ी गाइडेंस, किन किन बातों का रखना होगा ध्यान, इन सब पर चर्चा के लिए आज दोपहर 3:30 से 4 बजे तक FM लाइफलाइन के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे डॉक्टर अखिलेश शर्मा, एडिशनल प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्री, PGI चंडीगढ़। हमारे फोन नंबर्स हैं 2660615, 2660617, 2660619, और STD कोड है 0172। हमें आपकी कॉल्स का इंतजार रहेगा।
2: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
3: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
2: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
3: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
2: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन। अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
3: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
2: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D, या हमें फोन करें। हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
3: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
2: आकाशवाणी चंडीगढ़।

टू स्टेट्स, ये था फिल्म का नाम। अरिजीत सिंह और चिन्मयी श्रीपदा की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे। शंकर एहसान लॉय का संगीत और अमिताभ भट्टाचार्य ने इसे लिखा।

0: फिल्म वेक अप सिड से ये गीत अभी आप सुन रहे थे कविता सेठ और अमिताभ भट्टाचार्य की आवाजों में। जावेद अख्तर ने इसे लिखा, शंकर एहसान लॉय का संगीत।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम चित्रलोक।

कपूर एंड सन्स, इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। अरिजीत सिंह और असीस कौर की आवाजों में अरमान मलिक का संगीत था। इस प्रोग्राम में वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

0: जब भी मैट इस फिल्म से गीत आप सुन रहे थे मोहित चौहान की आवाज में। इरशाद कामिल ने इसे लिखा, प्रीतम का संगीत।
1: एक जानी माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
2: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
1: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
2: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
1: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
2: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
1: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
0: इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम चित्रलोक विविध भारती से।

0: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर।
1: श्रोताओं, मेंटल हेल्थ मानसिक स्वास्थ्य एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर अभी भी खुलकर बात नहीं होती, और दूसरी ओर आप समाज में सड़कों पर या कहीं और देखें तो वायलेंस दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हम में संयम लगातार कम होता जा रहा है, और अगर आप ऐसे स्थान पर हैं जहां से आप दूसरों की मदद कर सकते हैं पर आप मदद करना नहीं चाहते तो क्या कहेंगे आप? यही ना कि बड़ी संख्या में हम लोग मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं। बहुतायत में कुछ ना कुछ केमिकल लोचा तो है। हमें किस प्रकार से लेनी चाहिए मेंटल हेल्थ से जुड़ी गाइडेंस, किन किन बातों का रखना होगा ध्यान, इन सब पर चर्चा के लिए आज दोपहर 3:30 से 4 बजे तक FM लाइफलाइन के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे डॉक्टर अखिलेश शर्मा, एडिशनल प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्री, PGI चंडीगढ़। हमारे फोन नंबर्स हैं 2660615, 2660617, 2660619, और STD कोड है 0172। हमें आपकी कॉल्स का इंतजार रहेगा।
0: इस समय आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी चंडीगढ़ FM 107.2 MHz पर, और प्रस्तुत है कार्यक्रम आज का अखबार।
2: आज का अखबार।

सुप्रभात, गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम आज का अखबार में। मैं हूं आज आपके साथ इस प्रोग्राम में आपकी दोस्त शैलजा। दोस्तों, उमस भरी गर्मी इन दिनों परेशानी का सबब बनी हुई है। कल शहर का मैक्सिमम टेम्परेचर 39 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जो कि नॉर्मल से 1.5 डिग्री ज़्यादा था। मौसम विभाग का कहना है कि जल्द ही इस गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है, क्योंकि अगले 3 दिनों तक मौसम का मिजाज बदला रहेगा और गरज चमक तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश की संभावना बन रही है। धूल भरी आंधी और बादलों की आवाजाही के कारण तापमान में गिरावट भी आएगी और आज का मैक्सिमम टेम्परेचर 39 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि कल और परसों के तापमान में 1-1 डिग्री की गिरावट आने की संभावना है। रात का तापमान भी अपेक्षाकृत सुहावना रहेगा और 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रह सकता है और आने वाले वीकेंड पर तापमान के 2 डिग्री घटकर 37 डिग्री सेल्सियस तक रहने का पूर्वानुमान लगाया है मौसम विभाग ने। ऐसे में दोस्तों, इस उमस भरी गर्मी में अपना खास ख्याल रखें, खूब पानी पिएं और मौसमी फल जरूर खाएं।

आकाशवाणी चंडीगढ़ से इस समय आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आज का अखबार और प्रोग्राम में बारी है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुख्य समाचारों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सुरक्षा सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों एनएसए की 16वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। भारत ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के पीओके पर दिए बयान की आलोचना की। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण मॉनसून में संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। और अंतर्राष्ट्रीय मुख्य समाचारों में प्रधान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर से की फोन पर बात, रास लफान हादसे में भारतीयों की मौत पर जताया दुख। फ्रांस और यूरोप में भीषण लू से बचने के लिए सुरक्षित इलाकों में नहाते समय कम से कम 40 लोग डूब गए हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ईरान के लिए 300 अरब डॉलर के पुनर्निर्माण कोष की खबरों को खारिज किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का दावा, ईरान अपने परमाणु केंद्रों की व्यापक निगरानी के लिए सहमत। और भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर पुनर्विचार के लिए नई दिल्ली में उच्च स्तरीय व्यापार वार्ता शुरू की।

0: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
0: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
1: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
0: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
1: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D, या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
1: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
0: आकाशवाणी चंडीगढ़।
2: और दोस्तों, अब आपको बता दें कि विश्व धरोहर कालका शिमला रेल मार्ग पर यात्रा करने वाले पर्यटकों को जल्द ही पैनोरामिक कोचों की सुविधा मिलने की उम्मीद है। लंबे समय से रुकी इस परियोजना को गति देते हुए रेलवे ने कोचेज में सामने आई तकनीकी कमियों को अब दूर कर दिया है और अब इनके ट्रायल की तैयारी की जा रही है। पुराने प्लेन बेयरिंग सिस्टम को हटाकर अब आधुनिक रोलर बेयरिंग लगाए गए हैं, जिससे पहाड़ी मार्गों पर संचालन अधिक सुरक्षित और सुगम हो सकेगा। इससे यात्रियों को झटके कम महसूस होंगे और कोचों का रखरखाव भी आसान होगा। और वर्तमान में ऐसे 28 आधुनिक कोच कालका स्टेशन पर मौजूद हैं। इन्हें विशेष रूप से कालका शिमला रेलखंड की भौगोलिक परिस्थितियों और संकरी रेल लाइन को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। और रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला की टीम ने पैनोरामिक कोच को यात्री सुविधाओं के हिसाब से तैयार किया है, ताकि वो हरियाली से भरपूर विश्व धरोहर प्राप्त रेलखंड का अवलोकन कर सके। पैनोरामिक कोच में बड़ी खिड़कियां लगाई गई हैं, इससे यात्रियों को बाहर का दृश्य स्पष्ट रूप से दिखाई देगा और वो यात्रा के दौरान प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकेंगे। इसके अलावा कोच में सीसीटीवी कैमरा, फायर अलार्म और अन्य सुरक्षा उपकरण भी लगाए गए हैं।

आकाशवाणी चंडीगढ़ से इस समय आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आज का अखबार। प्रोग्राम में अब बारी है लोकल हेडलाइंस की। पैदल यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने और तेज रफ्तार वाहनों पर लगाम लगाने के लिए इंजीनियरिंग विभाग ने कलाग्राम सेंट कबीर मार्ग पर 4 टेबल टॉप बनाने को मंजूरी दी है। 94 लाख होंगे खर्च और 4 महीने में काम पूरा करने का टारगेट रखा गया है।

चंडीगढ़ शिक्षा विभाग ने शहर के 42 सरकारी स्कूलों में 30 नए स्किल कोर्सेज शुरू करने की घोषणा की है और इन कोर्सेज के संचालन के लिए विभाग 38 पार्ट टाइम स्किल ट्रेनर्स की भर्ती करेगा। सेक्टर 32 चंडीगढ़ एसडी कॉलेज में शुरू होंगी बीएससी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग और बीएससी साइबर सिक्योरिटी के नए कोर्सेज। उद्योगों की जरूरतों के अनुसार कोर्सेज का पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। और पंजाब

0: और हमेशा मुस्कुराते रहें। अब आज के इस प्रोग्राम से अपनी दोस्त शैलजा को इजाजत दें। नमस्कार।
1: आज का अखबार।
0: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय सुबह के 10 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने की। बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खास तौर से चर्चा हुई जो अब वैश्विक रूप ले चुके हैं। प्रतिनिधियों ने ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आतंकवादी संगठनों द्वारा नई तकनीक के दुरुपयोग पर चर्चा की। बैठक में आतंकवाद रोधी तथा सूचना और संचार तकनीक के उपयोग में सुरक्षा संबंधी कार्य समूहों के कार्यों और उसके परिणाम की समीक्षा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ साझा कार्रवाई की प्रतिबद्धता भी दोहराई। बैठक के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निहत्ते नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया है, जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति रोक दी गई है और इंटरनेट भी बंद है। खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे हैं।
1: 11 जहाज जो भारत की तरफ आ रहे हैं, इसमें से 3 भारतीय जहाज हैं जो कि क्रूड ऑयल टैंकर्स हैं। इनमें 285,000 मेट्रिक टन क्रूड ऑयल है। इसके अलावा एक विदेशी पताका के साथ एक एलपीजी टैंकर जो भारत की तरफ आ रहा है और एक विदेशी पताका के साथ फर्टिलाइजर कार्गो के साथ वो आ रहे हैं। और जो अन्य 10 हमारे जहाज हैं वो भी हमारी ये उम्मीद है कि जल्द ही वो हॉर्मुज पार करके भारत की तरफ आ जाएंगे।
0: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन होर्मुज जल डमरू मध्य में फंसे 11,000 से ज्यादा नाविकों को निकालेगा। संगठन के महासचिव आर्सेनियो डोमिनिवेज ने कहा कि इस अभियान में मदद के लिए जरूरी सुरक्षा गारंटी ली गई है। इस अभियान में ईरान, ओमान और क्षेत्र के अन्य देशों और समुद्री उद्योग जगत का सहयोग लिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के जिनेवा कार्यालय में ईरान के राजदूत अली बहरीनी ने कहा कि होर्मुज जल डमरू मध्य व्यावसायिक जहाजों के लिए बिना किसी टोल के पूरी तरह खुला है। भारत और अमेरिका ने प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय वार्ता शुरू की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, विकास की गति को तेज करने और समावेशी विकास के लिए सभी पक्षों से और अधिक सहयोग आवश्यक है। उन्होंने ये बात कल नई दिल्ली में ग्लोबल कन्वर्जेंस फॉर ग्रोथ सम्मेलन को ऑनलाइन संबोधन में कही। सरकार ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है और इसकी निरंतर निगरानी की जा रही है। निगरानी में तेल कंपनियां, वाहन निर्माता, ईंधन परीक्षण एजेंसियां और अन्य पक्ष शामिल हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर इस संबंध में चल रही खबरें भ्रामक और निराधार हैं। E20 पेट्रोल की शुरुआत के बाद से एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन की खराबी या वाहन में तकनीकी खराबी की कोई व्यापक शिकायत सामने नहीं आई है। तमिलनाडु सरकार ने वेतरी तमिलगम दस्तावेज को मंजूरी दे दी है। इसमें मामा की ओर से सोने की अंगूठी देने की बात कही गई है। योजना के अंतर्गत सरकारी अस्पतालों में बच्चे का जन्म होने पर राज्य के स्थायी निवासियों के नवजात शिशुओं को

0: एक ग्राम सोने की अंगूठी दी जाएगी। राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज रानी दुर्गावती को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि रानी दुर्गावती एक वीर रानी और नारी शक्ति का प्रतीक थी। श्री शाह ने कहा कि रानी दुर्गावती सुशासन और सेवा के लिए शाश्वत प्रेरणा बनी रहेंगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप के में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागे। इसके साथ ही रोनाल्डो 6 विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर।
2: बुधवार चंडीगढ़ की बातें, कामयाबी के रंग और जिंदगी की हलचल, रेडियो डायरी सिर्फ आकाशवाणी चंडीगढ़ FM 107.2 MHz पर। रेडियो डायरी।
3: श्रोताओं, मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर अभी भी खुलकर बात नहीं होती, और दूसरी ओर आप समाज में सड़कों पर या कहीं और देखें तो वायलेंस दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हम में संयम लगातार कम होता जा रहा है, और अगर आप ऐसे स्थान पर हैं जहां से आप दूसरों की मदद कर सकते हैं पर आप मदद करना नहीं चाहते तो क्या कहेंगे आप? यही ना कि बड़ी संख्या में हम लोग मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं। बहुतायत में कुछ ना कुछ केमिकल लोचा तो है। हमें किस प्रकार से लेनी चाहिए मेंटल हेल्थ से जुड़ी गाइडेंस, किन किन बातों का रखना होगा ध्यान, इन सब पर चर्चा के लिए आज दोपहर 3:30 से 4 बजे तक FM लाइफलाइन के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे डॉक्टर अखिलेश शर्मा, एडिशनल प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्री, PGI चंडीगढ़। हमारे फोन नंबर्स हैं 2660615, 2660617, 2660619 और STD कोड है 0172। हमें आपकी कॉल्स का इंतजार रहेगा।
1: इस समय आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी चंडीगढ़ FM 107.2 MHz पर, और अब प्रस्तुत है लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़।
4: हेलो
5: हेलो,
4: कुछ आपकी कुछ हमारी बातें प्यारी प्यारी। हेलो चंडीगढ़,
5: हेलो चंडीगढ़।

0: स्वागत है आपका दोस्तों हमारे लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़ में। मैं हूं आज आपके साथ इस प्रोग्राम में आपकी दोस्त शैलजा। और दोस्तों प्रोग्राम में आज जिस विषय पर हम बात करेंगे वो विषय है गर्मी की छुट्टियां किताबों का उपहार, बच्चों में जगाएं पढ़ने का प्यार। जी हाँ, ये है हमारे आज के हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम का विषय। और हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 2660615, 2660617 और 2660619 और चंडीगढ़ का एसटीडी कोड 0172। दोस्तों बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट में पढ़ने की आदत का महत्वपूर्ण योगदान होता है। पुस्तकें न केवल ज्ञान बढ़ाती हैं बल्कि कल्पना शक्ति, रचनात्मक और भाषा कौशल को भी विकसित करती हैं। इसलिए आवश्यक है कि बचपन से ही बच्चों में पढ़ने के प्रति रुचि और प्रेम पैदा किया जाए। आपका क्या कहना है इस बारे में, आप हमसे कह सकते हैं फोन कॉल के जरिए। हेलो चंडीगढ़ जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत आपका प्रोग्राम में।
1: थैंक यू मैम
0: जी, कहिए क्या कहना चाहेंगे आज के विषय पर।
1: मैम कहना चाहूंगी कि गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों को पढ़ाई के मामले में रखना चाहिए
0: जी,
1: ताकि वो गर्मियों की छुट्टियों में मतलब कुछ भूल ना जाए।
0: जी बिल्कुल, और उनके पास बहुत अधिक समय होता है इन छुट्टियों में, और इन छुट्टियों में पढ़ने की आदत विकसित करना आसान भी हो सकता है क्योंकि समय का अभाव नहीं होता।
1: और हमें ये ध्यान रखना चाहिए ताकि उनके मतलब राइटिंग का ध्यान भी रखना चाहिए
0: जी,
1: तो मतलब हमें उन्हें लिखने के लिए भी प्रेरित करना चाहिए और पढ़ने के लिए तो करना ही चाहिए मैम।
0: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद आपका कॉल करने के लिए। आपने अपना नाम नहीं बताया।
1: मेरा नाम ममता है मैम, मैं शिमला से बात कर रही हूँ।
0: जी ममता जी, धन्यवाद आपका प्रोग्राम में कॉल करने के लिए।

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो
1: जी नमस्कार।
0: जी नमस्कार, स्वागत आपका प्रोग्राम में।
1: मैं राकेश बात कर रहा हूँ कोटखाई से।
0: जी राकेश जी, क्या कहना चाहेंगे आज के विषय पर आप?
1: आज के विषय पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि अब गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ती हैं तो बच्चों को जो है किताबें जो है तमानी चाहिए, क्योंकि बच्चों को थोड़ा थोड़ा कम ये नहीं कि आप लोग क्या कहते हैं, लोग सोचते हैं कि चलो अब गर्मी की छुट्टी हो गई अब पढ़ाई से अब बोझ कम हो गया, लेकिन ये है कि कम से कम एक दो घंटे जो है बच्चों को गर्मी की छुट्टी में पढ़ाना चाहिए ताकि बच्चों का जो है दिमाग भी स्ट्रांग रहे और बच्चों को जो है हर चीज पढ़ाई में आए। ये नहीं कि आप जब छुट्टी एंजॉय करते हैं तो आप बुक्स को जो है भूल जाते हैं, और पेरेंट्स क्या कहते हैं कि अभी चलो अभी गर्मी की छुट्टी पड़ रही है, जैसे कि अभी हिमाचल में बरसात की छुट्टी पड़ती है, सर्दी की छुट्टी पड़ती है, हम सोचते कि चलो अभी तो अब बच्चे को खेलने देते हैं क्योंकि अब जब जिस दिन स्कूल का समय होगा तब हम बच्चों को पढ़ा लेंगे, तब क्या होता था बच्चों को जो है जो पिछला है आने वाले पढ़ना लिखना भूल जाते, खासकर तो छोटे बच्चों को तो बिल्कुल नहीं ऐसा खुला रखना चाहिए। कम से कम ज्यादा पढ़ाई नहीं, कम से कम एक डेढ़ घंटे तो बच्चों को हमें किताबें थमानी चाहिए।
0: जी, एक तो होती है वो पढ़ाई जो हम स्कूल में पढ़ रहे हैं, स्कूल की किताबें हैं, कई बार उनसे अक्सर बच्चे तंग आ जाते हैं कि स्कूल की पढ़ाई बहुत कर ली अब छुट्टियां हैं, लेकिन उनको हम उपहार दे सकते हैं अलग अलग तरह की पुस्तकों का।
1: बिल्कुल बिल्कुल, है ना, नहीं कि स्कूल की देनी है।
0: जी बिल्कुल, विज्ञान से जुड़ी कुछ कहानियों हो, कुछ कलरिंग की बुक्स हो सकती हैं जो बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो, तो बच्चों का जी
1: जैसे कोई मानस कान की जो है रामायण की पुस्तक हो चाहे कुछ भी हो, जरूर नहीं की अगर मानो की अगर आपके बच्चों को छुट्टी पड़ गई जरूर नहीं की स्कूल की हर वक्त।
0: जी जी जी, बहुत सी
1: पुस्तक बच्चों को दे सकते हैं और उनको पढ़ा सकते हैं, उनको उस कहानी के बारे में बता सकते हैं ताकि वो बच्चे उनका भी क्या वो तो इंटरेस्ट हो जाए, क्योंकि अब गर्मी की छुट्टी में ये पढ़ना है तो आप सभी तो बच्चा अब अलग होता है।
0: जी जी, धन्यवाद आपका प्रोग्राम में कॉल करने के लिए।
1: जी जी धन्यवाद।
0: दोस्तों, इस दौरान अभिभावक बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार कहानी, विज्ञान, साहसिक कथाओं या प्रेरणार्थक पुस्तकों से भी परिचित करा सकते हैं। रंगीन चित्रों वाली पुस्तकें जो हैं वो छोटे बच्चों को विशेष रूप से आकर्षित करती हैं, और यदि घर में पढ़ने का माहौल हो, माता पिता खुद पुस्तक पढ़ें और बच्चों के साथ कहानियों पर चर्चा करें तो बच्चे भी स्वाभाविक रूप से पढ़ने की ओर प्रेरित होते हैं। तो ध्यान देना चाहिए कि गर्मी की छुट्टियों में बच्चों को किताबों का उपहार दिया जाए।

0: दोस्तों आकाशवाणी चंडीगढ़ से समय आप सुन रहे हैं लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़। और दोस्तों आज जिस विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं वो विषय है गर्मी की छुट्टियां किताबों का उपहार, बच्चों में जगाएं पढ़ने का प्यार। हेलो
1: हेलो
0: हेलो
1: शैलजा जी को मेरी प्यार भरी नमस्ते जी।
0: जी नमस्कार, स्वागत आपका प्रोग्राम में।
1: मैं सतीश कुमार सेक्टर 42 चंडीगढ़ से बोल रहा जी।
0: जी सतीश कुमार जी, क्या कहना चाहेंगे आप आज के विषय पर?
1: जी बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं जी, ठीक है जी।
0: जी
1: उनको हम किताबें उपहार में दे सकते हैं, नंदन चंदा मामा
0: जी,
1: लोट बोट, चंपक
0: जी,
1: ऐसी किताबें पढ़ के उनकी हिंदी और इंग्लिश सुधरेगी जी। जी
0: जी जी
1: उनका साहित्य बढ़ेगा और भाषा का ज्ञान भी बढ़ेगा। जनरल नॉलेज की किताबें दे सकते हैं उनको?
0: जी बिल्कुल,
1: कुछ स्कूली किताबों से हटके
0: जी
1: किताबें दे सकते हैं
0: जी। बिल्कुल, बहुत सी ऐसी स्टोरी बुक्स हैं जो आपकी कल्पना शक्ति को बढ़ाती हैं
1: जी। शब्दावली है
0: जी,
1: डिक्शनरी भी वो पढ़ सकते हैं जो स्कूल में नहीं पढ़ते। डिक्शनरी से भी बहुत ज्ञान बढ़ता है जी।
0: जी बिल्कुल, अगर रोज के कुछ वर्ड्स अगर पढ़ें तो उन्हें याद किया जाए तो वो बहुत ही काम आते हैं, आगे आपकी पढ़ाई में भी बहुत काम आएंगे।
1: बाकी कुछ एक्स्ट्रा हॉबी भी हो

0: लगती हैं। वैसे स्कूलों में आजकल कंप्यूटर भी लगता है, कुछ एक्स्ट्रा हॉबीज, पुराने जमाने में रेडियो वगैरह की भी किताबें होती थी, रेडियो टेलीविजन कैमरा चलाना कैसे सीखे, कुछ ऐसी किताबें भी पढ़ सकते हैं जी बच्चे।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद आपका प्रोग्राम के लिए। जी दोस्तों, किताबें केवल ज्ञान का स्रोत नहीं होती बल्कि वे हमारी सबसे अच्छी मित्र भी होती हैं, और एक ऐसी पुस्तक हमें नई दुनिया से परिचित कराती है, कल्पना शक्ति को बढ़ाती है और जीवन के कई महत्वपूर्ण मूल्यों से अवगत कराती है। जब बच्चे कहानियां, विज्ञान, इतिहास या प्रेरणादायक पुस्तकें पढ़ते हैं तो उनका बौद्धिक और भावनात्मक विकास होता है।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: हेलो चंडीगढ़।
2: हाँ शारजा मैडम जी, नमस्कार।
1: जी नमस्कार, स्वागत आपका प्रोग्राम में।
2: मैं सुरेंद्र कुमार बोल रहा हूँ, सेक्रेटरी कॉमन से जी।
1: जी सुरेंद्र कुमार जी, क्या कहना चाहेंगे आज के विषय पर?
2: आज का विषय बच्चों के लिए तो विशेषकर बहुत ही अच्छा है
1: जी,
2: क्योंकि किताबें जो हैं ये ज्ञान का भंडार होती हैं।
1: जी बिल्कुल सुरेंद्र कुमार जी,
2: पढ़ने के साथ साथ उनका ज्ञान भी बढ़ता है और उन्हें खुशी होती है कि हमें अच्छी अच्छी किताबें माता पिता से मिली हैं जो उन्होंने हमें उपहार के रूप में दी हैं।
1: जी जी सुरेंद्र कुमार जी, पीछे से रेडियो बंद कर सकते हैं आप।
2: जी जी जी बंद, सॉरी जी। हाँ जी
1: जी,
2: तो माता पिता से जो भी उपहार मिलेगा जी।
1: जी
2: हेलो
1: हेलो जी, सुन रही हूँ मैं आपको, कहिए।
2: माता पिता से उपहार मिलेगा तो वो उनके ज्ञानवर्धन में बड़ा सहायक होगा
1: बिल्कुल,
2: और उनका समय भी सदुपयोग होगा
1: जी। और

0: घर के रूम में दिए हैं।
1: जी जी सुरेंद्र कुमार जी, पीछे से रेडियो बंद कर सकते हैं आप।
0: जी जी जी बंद, सॉरी हाँ जी
1: जी।
0: तो माता पिता से जो भी उपहार मिलेगा जी।
1: जी
0: हेलो
1: हेलो जी, सुन रही हूँ मैं आपको, कहिए।
0: माता पिता से उपहार मिलेगा तो वो उनके ज्ञानवर्धन में बड़ा सहायक होगा।
1: बिल्कुल,
0: और उनका समय भी सदुपयोग होगा
1: जी।
0: और मोबाइल की आदत भी थोड़ी छूट जाएगी, मोबाइल तो देखना साथ साथ है ही है क्योंकि आजकल की ये डिमांड है, आजकल की जरूरत भी है
1: जी।
0: लेकिन किताबें जो है बच्चों को बहुत ही लाभप्रद होंगी क्योंकि उसमें कहानियां होती हैं, कविताएं होती हैं, बाल उपयोगी कविताएं पढ़ेंगे तो वो हंसेंगे भी, देखेंगे भी, चित्र भी देखेंगे तो उनको बहुत खुशी होगी। इसको तो गर्मियों के छुट्टियों का वो पूरा पूरा फायदा उठा सकेंगे जी।
1: बिल्कुल ठीक
0: मेरा कहना है
1: जी। बिल्कुल ठीक कहा सुरेंद्र कुमार जी, आपने थोड़े लफ्जों में पूरी बात कही। धन्यवाद आपका प्रोग्राम में कॉल करने के लिए
0: जी।

0: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
0: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
1: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
0: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
1: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
1: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
0: आकाशवाणी चंडीगढ़।
2: आकाशवाणी चंडीगढ़ से समय आप सुन रहे हैं लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़। हेलो,
3: नमस्कार
2: जी। नमस्कार
3: शैलजा जी, मैं गुजरात से धीरज जबारी बात कर रहा
2: हूँ। जी धीरज जी, स्वागत आपका प्रोग्राम में। क्या कहना चाहेंगे आज के विषय पर?
3: आज के विषय में कहना चाहिए तो जो वांछन है वो पहले से कम हो गया है मोबाइल आने के बाद। तो अगर वांछन करना है तो मोबाइल में से भी अगर कई साहित्य पत्रिका है, कई अच्छे अच्छे विषयों पर प्रेरणात्मक कई लेखकों द्वारा मोबाइल में भी वांछन हमें मिल सकता है। अगर लाइब्रेरी नहीं जा सकते तो मोबाइल में, लेकिन मोबाइल में क्या है, स्क्रीन छोटी होने की वजह से आंखों को थोड़ा नुकसान हो सकता है। इसीलिए अगर लाइब्रेरी में जाए और हमारा जो वेकेशन का जो समय बचता है उसका उपयोग करें तो अच्छा रहेगा।
2: जी बिल्कुल, क्योंकि मोबाइल फोन में और भी डिस्ट्रैक्शंस बहुत होती हैं। अगर आपके मोबाइल फोन में सिम है तो आपको मैसेजेस भी आएंगे, तो वो चीजें आपको पढ़ने से हमेशा डिस्ट्रैक्ट करती रहेंगी। तो हमेशा ही ये बेटर है कि आप बुक से पढ़ें, लाइब्रेरी जाएं और किताबें हाथ में लेकर पढ़ें, है ना?
3: बिल्कुल, हमने तो जब पहले जब हम पढ़ते थे तब हम हमारी छुट्टियां में हम हमारे नजदीक के स्कूलों से हम स्कूलों में से हमें नॉवेल मिल जाते थे, कई साहित्य रसिक और कई वांछन की बुके मिलती थी, तो हम पठन करते थे। और देखा जाए तो वांछन में जो हमारे मन को सुकून मिलता है बहुत अच्छा है। कई बार वांछन करने में हमें खाना भी याद नहीं रहता, ऐसा एक रुचि कर रहता है वांछन।
2: जी जी जी बिल्कुल, अगर आपकी रुचि बन जाए किताबें पढ़ने में या कोई भी स्टोरी जो आप पढ़ रहे हैं उसमें अगर आपकी रुचि बन जाए तो किताबें भी आपकी सबसे अच्छी मित्र हो जाती है ना?
3: बिल्कुल
2: जी जी जी, धन्यवाद आपका प्रोग्राम में कॉल करने के लिए।
3: जी धन्यवाद
2: जी।

0: हेलो
1: हेलो
0: हाँ जी नमस्कार जी
1: जी नमस्कार स्वागत आपका प्रोग्राम में
0: जी मैं रेनू सबरवाल बोल रही हूँ चंडीगढ़ से 51 सेक्टर से
1: जी रेनू जी क्या कहना चाहेंगे आज आप आज के विषय पर
0: टॉपिक जो है नानी घर का है ना
1: नहीं नहीं आज का टॉपिक है गर्मियों की छुट्टियां में किताबों का उपहार बच्चों
0: हाँ
1: में
0: हाँ
1: जगाएं पढ़ने का प्यार जी
0: पर आजकल उपहार जो है ना वो नानी और दादी घर जाके बहुत सारे मिल जाते हैं
1: बिल्कुल
0: और ज्ञान के उपहार मिलते हैं
1: जी
0: किताबें तो मेरे हिसाब से छोटे बच्चे अपने घर में हम करवाते ही रहते हैं स्टडी लेकिन अब मेरी ग्रैंड डॉटर है आज उसका बर्थडे भी है तो मैं ये चाहूंगी कि सारा आकाशवाणी परिवार जो है ना
1: जी
0: उसको ब्लेस करे
1: जी बिल्कुल बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको
0: हाँ जी थैंक यू जी
1: जी
0: तो वो मेरी जो ग्रैंड डॉटर है ना वो गई हुई है आजकल अपनी नानी के घर में तो वो वहां पर उसकी नानी टीचर रह चुकी है तो वो अपनी नानी से इतने अच्छे अच्छे श्लोक सीख रही है मतलब इतने टफ अभी वो 6 साल की आज हुई है जब वो मुझे फोन पे सुनाती है ना कि दादी मैंने ये वाला श्लोक सीखा आज मैंने ये वाला श्लोक सीखा तो मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि जरूरी नहीं है कि हम उसको किताब में से कुछ पढ़ाए जो चीजें हमें अपने एक्सपीरियंस से मिली हुई है हम लोग वो भी उनको सिखा सकते
1: जी जी
0: हैं
1: जी बिल्कुल बिल्कुल वो
0: तो
1: तो है कि अगर
0: मुझे
1: आप
0: बड़ा
1: अपने एक्सपीरियंस से बच्चों को कुछ सिखा सकते हैं क्योंकि अगर पढ़ने की आदत भी डालनी है किताबें भी अगर लेके बैठना है तो हमें ही बच्चों में ये हैबिट्स इनकलकेट करनी पड़ती है
0: जी
1: ना
0: जी पढ़ने
1: जी
0: के लिए तो देखो मैम स्टडी के लिए बच्चों के पास तो पेरेंट्स की एक सिटिंग होना बहुत जरूरी है।

0: जी.
1: जो मैंने अपने बच्चों को दी, मतलब उनके साथ बैठती थी
0: जी. जी बिल्कुल, स्टडी वाइज की भी बात नहीं है. बहुत सी ऐसी किताबें हैं जो हम गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों को उपहार के तौर पर दे सकते हैं, जिनमें उनका इंटरेस्ट हो, जिसमें कुछ ऐसी स्टोरी लाइंस हो जो बच्चे पढ़ना चाहते हों. जो
1: मैं एक चीज ये देखती हूँ, सॉरी मैंने आपकी बात को काट दिया.
0: नहीं जी, कहिए.
1: कि चंपक और ये जो छोटू मोटू की, मोटू पतलू की जो स्टोरी होती थी ना, जो कॉमेडी होती थी, वो आजकल बहुत कम जगह पे मिलती है. मैं एक दो बारी ना ये बस स्टैंड पे भी गई हूँ लेने के लिए, बट मुझे भी वहाँ पर ना ऐसी कलेक्शन मिली नहीं है जो हमारे टाइम में हमें मिल जाती थी. हम उसको पढ़ पढ़ के ना
0: जी
1: लोट पोट हो जाते थे.
0: जी बिल्कुल, कॉमिक कलेक्शन बोलते थे उसे हम जी.
1: हाँ, ऐसी चीजें बननी भी चाहिए जिससे हम बच्चों के लिए ना एक उनको एक बता सके कि हाँ ये वाली बुक पढ़ो, आप देखो कितना अच्छा उसमें लिखा हुआ है.
0: जी बिल्कुल, जिसमें कॉमिक वे में बच्चे पढ़कर खुश होते हैं और उन्हें डिजिटल युग में जरूरत नहीं पड़ती टीवी और इन चीजों पर कार्टून देखने की, इंस्टेड वो किताबों से पढ़ते हैं.
1: जी है ना? जी, किताबें तो बहुत जरूरी है. देखिए मैम, मैं आज की डेट में, मैं 65 इयर्स की हूँ, मैं आज की डेट में मैंने अपना रूटीन बनाया हुआ है कि मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना ही पढ़ना है.
0: जी,
1: और एक बात पूरी, एक मतलब लाइन नहीं पढ़ती, मतलब मैं पूरी न्यूज़ पढ़ती हूँ.
0: जी जी,
1: तो
0: बहुत
1: पढ़ने की आदत तो शुरू से बच्चों में अगर डाली जाए तो बहुत अच्छी बात होती है, पेरेंट्स के लिए भी अच्छी बात होगी.
0: जी बिल्कुल, इसी विषय पर आज हम बातचीत कर रहे हैं कि गर्मियों की छुट्टियां एक ऐसा मौका है कि अगर आप बच्चों को किताबों का उपहार दें तो उनमें पढ़ने की आदत को जो है वो बढ़ावा मिल सकता है. हम उनकी उनमें एक आदत डाल सकते हैं.
1: तो मैं आज ही जाऊंगी, आज ही आपका टॉपिक सुन के ना मुझे एक और गिफ्ट याद आ गया कि मैं आज उसके लिए कुछ ऐसी कॉमेडी बुक्स वगैरह ना लेके जाऊंगी. अभी वो पढ़ तो नहीं पाएगी बट उसकी मम्मा या मैं उसको पढ़ के सुना पाएंगे.
0: जी बिल्कुल, उससे भी बहुत असर पड़ता है बच्चों पर जब पेरेंट्स उनके साथ बैठ के टाइम स्पेंड करते हैं और किताबें पढ़ते हैं, है ना.
1: जी जी
0: जी, धन्यवाद आपका प्रोग्राम में कॉल करने के लिए.
1: थैंक यू जी. थैंक यू.

0: श्रोताओं, मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर अभी भी खुलकर बात नहीं होती। और दूसरी ओर आप समाज में, सड़कों पर या कहीं और देखें तो वायलेंस दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हम में संयम लगातार कम होता जा रहा है। और अगर आप ऐसे स्थान पर हैं जहां से आप दूसरों की मदद कर सकते हैं पर आप मदद करना नहीं चाहते, तो क्या कहेंगे आप? यही ना कि बड़ी संख्या में हम लोग मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं। बहुतायत में कुछ ना कुछ केमिकल लोचा तो है। हमें किस प्रकार से लेनी चाहिए मेंटल हेल्थ से जुड़ी गाइडेंस, किन किन बातों का रखना होगा ध्यान, इन सब पर चर्चा के लिए आज दोपहर 3:30 से 4 बजे तक FM लाइफलाइन के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे डॉक्टर अखिलेश शर्मा, एडिशनल प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्री, PGI चंडीगढ़। हमारे फोन नंबर्स हैं 2660615, 2660614, 2660619 और STD कोड है 0172। हमें आपकी कॉल्स का इंतजार रहेगा।
1: हेलो चंडीगढ़, हेलो दोस्तों, आकाशवाणी चंडीगढ़ से समय आप सुन रहे हैं लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़। और प्रोग्राम में हम जिस विषय पर बातचीत कर रहे हैं आज, वो विषय है गर्मियों की छुट्टियां, किताबों का उपहार, बच्चों में जगाएं पढ़ने का प्यार। आप इस विषय पर क्या कहना चाहते हैं, आप हमसे कह सकते हैं प्रोग्राम में फोन कॉल के जरिए। और दोस्तों, अगर बात करें तो आज के डिजिटल युग की, आज के इस डिजिटल युग में जहां बच्चों का ज़्यादातर समय मोबाइल और टीवी के सामने बीतता है, किताबें उन्हें रचनात्मक सोच और एकाग्रता की ओर ले जाती हैं। गर्मी की छुट्टियां पढ़ने की आदत विकसित करने का सबसे अच्छा अवसर है। प्रतिदिन कुछ समय पुस्तक पढ़ने के लिए निर्धारित किया जाए तो ये आदत जीवन भर साथ रहती है। हेलो, हेलो चंडीगढ़, हेलो, हेलो चंडीगढ़,
2: हेलो
1: हेलो
2: हेलो, गुड मॉर्निंग मैम।
1: गुड मॉर्निंग, स्वागत आपका प्रोग्राम में।

0: थैंक यू मैम
1: जी.
0: आज के विषय पर मैडम मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहूंगी.
1: जी बिल्कुल कहिए.
0: आज किताबें जो हैं हमारे बच्चों से दूर होती जा रही हैं, इसी विषय पर कुछ पंक्तियां हैं. वफादारी का वजूद सिखाती हैं किताबें, झिलमिल दुनिया की तंगदिली मिटाती हैं किताबें, चांद सितारों को जमी पर ले आती हैं किताबें, अनगिनत जमाने के जख्मों को सहलाती हैं किताबें.
1: जी
0: दोस्ती गजब की निभाती हैं किताबें, मानो तो सारे जहां को अपने में समाती हैं किताबें. कभी संसार की खिड़की बन जाती हैं किताबें, कुदरत की अद्भुत छटा को दिखाती हैं किताबें. बस इतना ही कहना चाहूंगी मैडम, लंबी कविता है
1: जी, लेकिन ये जितनी पंक्तियां आपने सुनाई हैं वो भी बहुत अच्छी हैं और सच में प्रेरित करने वाली हैं.
0: हाँ जी मैम
1: जी, बहुत अच्छा लिखा
0: मैडम. आजकल जो डिजिटल रेस चल रही है उसमें हमारे बच्चे बहुत ज्यादा किताबों से दूर हो गए हैं.
1: जी बिल्कुल.
0: इसकी जगह वो लोग सोशल मीडिया पर ज्यादा बिजी रहते हैं
1: जी.
0: और ये देखने में बहुत हैरानी की बात है कि किताबों से उनकी दोस्ती छुट्टी चली जा रही है.
1: जी जी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप.
0: आज की दुनिया की नीरसता को दूर किताबें ही कर सकती हैं. ये जो डिजिटल दुनिया है ये थोड़ा टाइम अच्छी लगती है, बाद में ये दुनिया बहुत ज्यादा बोरिंग लगेगी.
1: जी बिल्कुल.
0: लेकिन हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो शायद आज के लाइफस्टाइल के इतने आदी हो चुके हैं कि वो समझ नहीं पा रहे.
1: जी बिल्कुल, बच्चे अभी हमारी बातें समझ नहीं पाते कि वो बाद में इसे अकेलापन महसूस करते हैं. जब जैसे ही वो अपना फ़ोन या अपना लैपटॉप कुछ भी ऐसी चीज़ छोड़ते हैं डिवाइसेस, तो उनको फील होता है कि वो अकेले हैं. और ऐसे ही अगर वो कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं या कोई किताब पढ़ रहे हैं तो उन्हें हमेशा ही ये खींच रहेगी कि उसमें इस कहानी में आगे क्या हुआ, उसे पढ़ें.
0: और वो उनके मस्तिष्क पर छाई भी रहती है.
1: जी बिल्कुल.
0: ताउम्र उन्हें उसका एक मॉरल, उसकी जो किताब उन्हें शिक्षा देकर गई
1: जी,
0: है
1: जी.
0: वो उनकी जिंदगी में बसी रहती
1: हमेशा
0: है.
1: बसा रहता है. बिल्कुल ठीक जी. जी धन्यवाद आपका प्रोग्राम में कॉल करने के लिए.
0: थैंक यू मैम. थैंक यू सो मच
1: जी.

दोस्तों, किताबें बच्चों की सबसे सच्ची मित्र होती हैं, जो बिना किसी अपेक्षा के उन्हें ज्ञान और संस्कार देती हैं। और पढ़ने की आदत बच्चों की कल्पना शक्ति को पंख देती है और उन्हें नए विचारों से परिचित कराती है। क्या कहना चाहते हैं आप आज के विषय पर, आप हमसे कह सकते हैं प्रोग्राम में फोन कॉल के जरिए।

0: हेलो चंडीगढ़,
1: हेलो,
0: गुड मॉर्निंग मैम
1: जी. गुड मॉर्निंग, स्वागत आपका प्रोग्राम में.
0: थैंक यू मैम. मैं किरण ठाकुर बात कर रही हूँ.
1: जी किरण जी, क्या कहना चाहते हैं आज के विषय पर आप?
0: मैम, मैं तो ये कहना चाहूँगी कि अपने बच्चे को किताब मजबूती की किताबें पढ़ा, ये तो अच्छा ही है.
1: जी
0: तो मैम, आजकल जैसे ऑनलाइन पढ़ाई का जमाना है, तो मैम हम ये नहीं भूलना चाहिए कि हमें बच्चों के आगे किताबें नहीं रखनी चाहिए. हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमें बच्चों के आगे किताबें रखनी चाहिए, ना कि ये कि हमें बच्चों के आगे किताबें नहीं रखनी चाहिए.
1: जी जी,
0: मेरा बोलने का मतलब है हमें बच्चों के साथ, बच्चे बनते ही पढ़ाई में उनका साथ देना चाहिए.
1: जी बिल्कुल.
0: और हमें उन्हें मतलब जैसे कहानियों की किताबें जैसे होती है ना, वो भी देनी चाहिए पढ़ने के लिए, ताकि उनका मनोरंजन हो सके.
1: जी बिल्कुल, कुछ मनोरंजन, कुछ ऐसी मनोरंजक किताबें या कुछ ऐसी कहानियां जो उन्हें अच्छी लगे, काल्पनिक कहानियां जो बच्चों को अक्सर अच्छी लगती हैं, ऐसी किताबें उन्हें देनी चाहिए और उन्हें पढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करना चाहिए.
0: बल्कि आजकल के बच्चे तो मैम लिखने के नाम पे तो आलस करते हैं मैम.
1: जी
0: हमें वो आलस नहीं करवाना चाहिए, बल्कि कहना चाहिए कि तुम लिखो.
1: जी
0: तुम जितना लिखोगे उतना बेहतर होगा.
1: जी बिल्कुल, लिखने से हैंडराइटिंग भी अच्छी होगी और लिखने से बच्चे जो अपने विचार हैं वो भी अपनी भाषा में, अपने शब्दों में कागज पर उतार सकेंगे. जी जी, धन्यवाद प्रोग्राम में कॉल करने के लिए.
0: थैंक यू.
1: जी.

इस बार सोचिए कि गर्मियों की छुट्टियों में अगर बच्चों को किताबों का उपहार दें ताकि बच्चों में पढ़ने के प्यार को जगाया जा सके। और धन्यवाद आपका हमारे इस प्रोग्राम में कॉल करने के लिए। अब आज के इस प्रोग्राम से अपनी दोस्त शैलजा को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।

दोस्तों, गर्मी की छुट्टियां बच्चों को पुस्तकों से दोस्ती करने का एक सुनहरा अवसर देती हैं और खिलौने कुछ समय के लिए खुशी देते हैं, लेकिन किताबें जो हैं वो जीवन भर साथ निभाती हैं। अगर घर में एक छोटा सा पुस्तक कोना बनाया जाए तो बच्चों के मन में पढ़ने की आदत को बढ़ावा दिया जा सकता है और पढ़ने वाला बच्चा भविष्य में अधिक जागरूक, संवेदनशील और आत्मनिर्भर नागरिक बनता है। तो

नमस्कार श्रोताओ, कार्यक्रम हमारी बेड़ी में मैं प्रिया आपका स्वागत करती हूँ और सबसे पहले आपका धन्यवाद देती हूँ कार्यक्रम सुनने के लिए और हमें संपर्क करने के लिए। इसके लिए आप हमें फोन करें, मिस कॉल करें या SMS करें इस नंबर पर। नंबर है 8527449955। जी हाँ श्रोताओ, नंबर एक बार दोबारा नोट कर लीजिए 8527449955। यदि आप हमें पत्र लिखना चाहते हैं तो हमारा पता नोट कर लीजिए। पता: कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। जी हाँ श्रोताओं, कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। प्रिय श्रोताओं, दहेज का अर्थ उस राशि वस्तुओं से लगाया जाता है जिसे कन्या पक्ष की ओर से विवाह के अवसर पर वर पक्ष को दिया जाता है, लेकिन अपनी पुत्री के विवाह अवसर पर अपनी इच्छा से खुशी खुशी दामाद को कोई उपहार देना दहेज नहीं है, लेकिन वर पक्ष के दबाव में या अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को ऊंचा करने के लिए अपनी हैसियत से ज्यादा वर पक्ष को उपहार देना दहेज है। दहेज एक प्रथा नहीं है, लेकिन भीख लेने का एक सामाजिक तरीका है। फर्क सिर्फ इतना है, देने वाले की गर्दन झुकी होती है और लेने वाले की अकड़ बढ़ जाती है। तो आइए सुनते हैं इस पर आधारित एक नाटक।

0: अरे सुनती हो?
1: हाँ जी, रुको अभी आती हूँ।
0: अरे कल किरण को देखने वाले आएंगे और तुम बाजार से बढ़िया सी साड़ी खरीद लेना। और सुनो, पंकज को पैसे दे देना और वो मिठाई ले आएगा।
1: ठीक है जी।
0: आइए आइए भाई साहब, आपका स्वागत है। भाई साहब, घर ढूंढने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना?
2: अरे नहीं नहीं भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं हुई। आपका मकान सही जगह पर बना हुआ है, फिर पता पक्का हो तो कौन भटकता है।
0: सही कहा आपने। लीजिए भाई साहब, मिठाई खाइए। लो बेटा, आप भी ले लो ना।
2: जी भाई साहब, ये है हमारा लाडला बेटा, जो कि इंजीनियर है, दिल्ली में नौकरी करता है और 50,000 महीने की तनख्वाह है इसकी।
0: अच्छा बेटा, प्रमोद कौन सी कंपनी में हो?
3: जी मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में हूँ।
0: हमारी बिटिया किरण भी बीए कर रही थी, लेकिन उस दौरान वायरल बुखार के कारण अंतिम वर्ष की परीक्षा नहीं दे पाई।
4: अरे कोई बात नहीं भाई साहब, परीक्षा ही तो नहीं दे पाई, हमें तो ऐसी बहू चाहिए जो घर परिवार को संभाल ले और बड़ों की इज्जत करे। पर भाई साहब बिटिया नजर नहीं आ रही।
0: जी अंदर ही है बिटिया, अभी बुलाते हैं।
4: आओ बिटिया यहाँ बैठो। भाई साहब आपकी बेटी तो बहुत सुंदर है। बेटी तुम क्या क्या काम कर लेती हो?
5: जी मैंने ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर रखा है।
4: अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छा किया आपने, अब तो खूब निभेगी हमारी, हमें तो भा गई हो आप। क्यों बेटा प्रमोद?
3: माँ आप लोग देख लीजिए, अगर आपको पसंद है तो मुझे भी पसंद है।

0: अरे बेटा, शादी तो तुम्हें करनी है, तुम आपस में बात कर लो। शादी से पहले लड़का लड़की आपस में एक दूसरे को जान ले तो अच्छा रहता है।
1: हाँ क्यों नहीं भाई साहब, अब तो जमाना बदल गया है। किरण जाओ बेटा अंदर और दोनों आपस में बात कर लो।
2: बहन जी, अभी कुछ दिनों पहले मेरे चाचा जी ने अपनी बेटी की शादी की थी। उन्होंने अपनी बिटिया को खूब सोने से लाद कर भेजा था और दान दहेज भी खूब सारा दिया था।
0: भाई साहब सुनिए, दहेज तो आशीर्वाद होता है जो बिटिया अपने साथ लाती है, और सभी माँ बाप ये सब तो करते ही हैं।
3: जितना हमसे हो सकेगा उतना तो कर ही देंगे, भला कोई माँ बाप अपनी बेटी के लिए कमी थोड़ी करता है।
2: हम तो साफ कहते हैं कि लेन देन की बात पहले ही हो जानी चाहिए, क्योंकि बाद में जिक जिक सही नहीं लगती।
3: बहन जी, हमसे जितना बनेगा हम जरूर करेंगे।
0: भाई साहब, वैसे तो हमारे लड़के के लिए बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं। एक तो 5 लाख रुपए और साथ में गाड़ी भी दे रहे थे, लेकिन मेरे मित्र लालू ने तुम्हारी बिटिया के बारे में बताया, और लालू हमारे बहुत पुराने मित्र हैं।
3: जी वो मेरे साथ ही काम करते हैं, लेकिन भाई साहब हम इतना तो नहीं कर पाएंगे, पर 3 लाख तक का इंतजाम तो हो ही जाएगा।
0: अरे भाई साहब, लड़की गाड़ी तो लाएगी ना साथ में।
3: भाई साहब, अभी हमारा एक बेटा भी है, उसके बारे में भी तो सोचना है ना।
2: अरे भाई साहब, आप अपने लड़के की चिंता मत करो, आपके लड़के को भी तो दहेज मिलेगा, और अभी तो वो बहुत छोटा है।
3: भाई साहब ऐसा करते हैं, 1 लाख रुपए नगद और गाड़ी कर देंगे।
0: अरे ऐसी कोई चिंता नहीं है, 2 लाख रुपए बाद में दे देना, अब तो हम समधी बनने ही वाले हैं।
4: श्रोताओ, इन सब बातों के चलते दोनों परिवारों की सहमति हो गई और अंदर से किरण और प्रमोद बाहर आते हैं।
2: लो बच्चे भी आ गए, तो बताओ प्रमोद बेटा, लड़की कैसी लगी?
5: माँ मुझे लड़की पसंद है, आप एक बार किरण से भी पूछ लीजिए।
1: अरे बेटा, किरण से क्या पूछना, वो हमारी बात कभी नहीं टालती।
2: अरे नहीं, फिर भी बिटिया की राय भी जरूरी है, बोलो बेटा।
6: जी जैसा आप लोगों को ठीक लगे।
0: ठीक है भाई साहब, अब हम चलते हैं, बिटिया की कुंडली भिजवा देना, हम पंडित जी से शादी का मुहूर्त निकलवा देंगे।
4: और फिर किरण की माँ और पिता महेश जी के परिवार को छोड़ने के लिए गेट पर जाते हैं, और उस दिन किरण की माँ बहुत ही खुश थी। किरण की माँ महेंद्र जी किरण के कमरे में जाते हैं और किरण के सर पर हाथ फेरते हुए बोले,
1: बेटा तुम्हें लड़का कैसा लगा?
6: ठीक है माँ, अगर आप लोगों की पसंद है तो मेरी भी पसंद है।
3: मेरी बेटी ने मेरी लाज रख ली, लेकिन एक चिंता मुझे सता रही है, इतने पैसों का इंतजाम कहां से होगा?
1: देखो जी, लड़का अच्छा है और कमाता भी है और नशा भी नहीं करता, भला आजकल ऐसे लड़के कहां मिलते हैं। और रही दहेज की बात, वो तो बेटी के बाप को देना ही पड़ता है, समाज वालों को भी तो मुंह दिखाना है, गांव की जमीन गिरवी रख देते हैं और बाकी इंतजाम बाद में कर लेंगे।
3: तुम ठीक ही कह रही हो, भला बेटी का बाप होना आसान नहीं है, कुछ तो परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। वैसे भी किरण को घर परिवार अच्छा मिल जाए तो जीवन अच्छा बीतेगा।
4: प्रिय श्रोताओं, कुछ दिन बाद किरण की शादी बड़े धूमधाम से हुई और सब काम अच्छे से निपट गए, और किरण के जाने के बाद घर की रौनक चली गई। घर में जो चहल पहल थी उसकी जगह घर अब सूना सूना हो गया। किरण के पिता रोज अपनी बेटी को याद करते थे और कहते थे, जब इस घर में किरण थी तो इस घर में कितनी रौनक थी, और ये कहते हुए उनकी आंखों में आंसू छलक उठे।
1: देखो जी, जब से किरण गई है, जब भी किरण को फोन करो तो उसकी सास फोन उठाती है, और फिर थोड़ी बात होती है तो बात खुलकर नहीं हो पाती है।
0: हेलो हेलो, अरे भाई साहब मैं महेश बोल रहा हूँ। अरे भाई साहब, आपने तो वो पैसे नहीं दिए अभी तक, क्या इरादा है, अपनी जुबान से फिर गए क्या?
3: अरे नहीं नहीं भाई साहब, जो पैसे आपको देने थे वह छोटे बेटे की बीमारी में लग गए, आप मुझे थोड़ा और समय दीजिए, अभी हमारे घर की हालात ठीक नहीं है।
0: भाई साहब ये सब नहीं चलेगा, अपनी बेटी को ले जाओ, आपकी बेटी इतनी कमजोर है कि ना तो घर के कोई काम करती है और ना ही टाइम से उठती है, उसके भी रोज के नखरे हैं।
3: अरे भाई साहब ये आप कैसी बात कर रहे हैं, शादी की है हमने अपनी बेटी की, ऐसे कैसे बोल रहे हैं?

0: आप हमारी मजबूरी समझिए ना।
1: हमें कुछ नहीं सुनना, बहाने नहीं चलेंगे। पहले ही कहा था हमने कि दहेज के बिना शादी नहीं होगी, लेकिन फिर भी हमने शादी कर ली।
0: हेलो हेलो, लगता है बिटिया हमने गलत घर में बिहा दी है। मुझे लगा था कि वे भले लोग हैं, हमारी मजबूरी समझेंगे, लेकिन वो तो बिटिया को वापस ले जाने की बात कर रहे हैं।
2: अरे ये तो बड़े लालची निकले, हमारे घर की हालात भी नहीं समझते। तुम ऐसा करो, किरण को ले आओ। एक तो किरण से काफी महीनों से बात नहीं हो पाई, पता नहीं हमारे किरण वहाँ खुश है भी या नहीं।
3: बेटा प्रमोद, अब तो हमारे सब्र का बांध भी टूट गया है। तू किरण को कहता क्यों नहीं कि उसके बाप ने जो हमसे वादा किया था, जो उन्होंने हमें दहेज में देने की बोली थी, और अब वो रोज बहाने बना रहे हैं।
4: माँ तू चिंता मत कर, मैं अभी बताता हूँ किरण को। किरण किरण जल्दी बाहर आ।
5: जी बोलिए।
4: मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि अपने माँ बाप से कह दे वो पैसे भेज दें।
5: सुनो जी, अभी तो हमारी शादी का कर्जा भी नहीं उतरा, और मेरे भाई के इलाज के लिए भी पैसे चाहिए। वो आपको इतने पैसे कहाँ से देंगे?
4: अच्छा जुबान चलाती है।
5: मुझे मत मारो।
3: प्रमोद एक काम कर, अंदर से तेल लेकर आ और लगा दे आग इसको।
4: ठीक है माँ, रोज रोज का झंझट भी खत्म हो जाएगा।
5: नहीं प्रमोद, मुझे मत जलाओ माँ जी। नहीं प्रमोद, मुझे मत जलाओ माँ जी, बचाओ कोई।
6: अरे ये प्रमोद की घर से कैसी आवाजें आ रही है, चल के देखता हूँ। ओह माय गॉड, ये तो किरण को आग लगा रहे हैं। पुलिस को बुलाता हूँ। हेलो सर, मैं राहुल बोल रहा हूँ। हमारे पड़ोस में एक बहू को उसकी सास और उसका पति मिलकर आग लगा रहे हैं, आप जल्दी आइए।
0: ठीक है, हम अभी आते हैं। अगर हमें सही समय पर जानकारी ना मिलती तो आज आपने तो इसे मार ही दिया था। इसके लिए तुम्हें आजीवन कारावास की सजा हो सकती है।
7: अरे किरण, ये क्या हो गया बेटा?
5: पापा पापा पापा पापा।
6: अरे भाई साहब, इन्होंने तो किरण को मारने की पूरी प्लानिंग कर रखी थी।
8: अरे कारण तो बताओ कि क्या हुआ है।
4: सर हमने कुछ नहीं किया, किरण ने खुद आग लगाने की कोशिश की है।
0: क्या किरण, तुमने सच में आग लगाने की कोशिश करी है क्या?
5: सर मेरे पति ने और मेरे सास ने मुझे मारने की कोशिश की, मेरे ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगाने की कोशिश करी। वो तो शुक्र है सर इन पड़ोसियों का, जो मेरी आवाज़ सुनकर इन्होंने मुझे बचा लिया। क्योंकि इनको इनके मन मुताबिक दहेज नहीं मिला। मेरे पति को मेरे पापा गाड़ी नहीं दे पाए, और मेरी सास को नगद कैश।
0: हवलदार, इन सबको अरेस्ट कर लो, और अब इनको थोड़ा हवालात की हवा खिलाओ। और माता जी, अगर इस जगह आपकी बेटी के साथ ऐसा करे तब आपको पता चले। हवालदार डालो हथकड़ी और ले चलो इनको।
2: और इस घटना के बाद किरण के पिता किरण को अपने घर वापस ले जाते हैं, और किरण अपने माता पिता के साथ खुशहाल जीवन जीने लगती है। प्रमोद और उसके माता पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है।

दहेज एक ऐसी कुप्रथा है जो ना जाने कितनी बेटियों को निगल जाती है। ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और आज हमारे देश का कानून व्यवस्था भी इस प्रकार के मामलों में बहुत सख्ताई बरत रहा है। दहेज अधिनियम 1961 सेक्शन 3 और 4 के तहत दहेज लेना और देना दोनों अपराध है, और इसके साथ साथ जुर्माना भी और कुछ सालों की सजा सुनाई जा सकती है। इस विषय में आप क्या विचार रखते हैं हमें अवश्य बताएं। इसके लिए आप हमें फोन करें, मिस कॉल

करें या एसएमएस करें इस नंबर पर। नंबर है 8527449955। जी हाँ श्रोताओ, नंबर एक बार दोबारा नोट कर लीजिए, 8527449955। यदि आप हमें पत्र लिखना चाहते हैं तो हमारा पता नोट कर लीजिए। पता: कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। जी हाँ श्रोताओं, कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। और मुझे यानी कि प्रिया को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: अभी आपने सुना प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर।
1: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
1: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
2: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
1: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
2: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
2: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
1: आकाशवाणी चंडीगढ़।
0: इस समय आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी चंडीगढ़ FM 107.2 MHz पर और प्रस्तुत है गैर फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम सुर बहार। आइए सुनते हैं सबसे पहला गाना केशव आनंद की आवाज में, एल्बम है इन्ना सोना।

श्रोताओं, मेंटल हेल्थ मानसिक स्वास्थ्य एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर अभी भी खुलकर बात नहीं होती। और दूसरी ओर आप समाज में सड़कों पर या कहीं और देखें तो वायलेंस दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हम में संयम लगातार कम होता जा रहा है। और अगर आप ऐसे स्थान पर हैं जहां से आप दूसरों की मदद कर सकते हैं पर आप मदद करना नहीं चाहते तो क्या कहेंगे आप? यही ना कि बड़ी संख्या में हम लोग मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं। बहुतायत में कुछ ना कुछ केमिकल लोचा तो है। हमें किस प्रकार से लेनी चाहिए मेंटल हेल्थ से जुड़ी गाइडेंस, किन किन बातों का रखना होगा ध्यान, इन सब पर चर्चा के लिए आज दोपहर 3:30 से 4 बजे तक FM लाइफलाइन के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे डॉक्टर अखिलेश शर्मा, एडिशनल प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्री, PGI चंडीगढ़। हमारे फोन नंबर्स हैं 2660615, 2660617, 2660619 और STD कोड है 0172। हमें आपकी कॉल्स

0: का इंतजार रहेगा।
1: सुन सजना, इस एल्बम से आइए सुनते हैं ये अगला गैर फिल्मी गाना, जिसे गाया है तनिष्क बागची ने।

तनिष्क बागजी को अभी आपने सुना सुन सजना एल्बम के इस गाने में, और यही थी हमारे आज के सुरबहार कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। अब इस कार्यक्रम से अपनी दोस्त शैलजा को दीजिए इजाजत, नमस्कार। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर।

0: इस समय आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी चंडीगढ़ और आइए अब सुनते हैं हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम संजीवनी।
1: नमस्कार श्रोताओं, संजीवनी प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस प्रोग्राम में आपके साथ है आपका साथी अनिल पुंज। इस प्रोग्राम में हम आपसे जब भी मिलते हैं तो किसी न किसी टॉपिक पर अपने एक्सपर्ट से जानकारी आपको दिलवाते हैं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनैना चड्डा, होम्योपैथी मेडिकल ऑफिसर, आयुष इंटेग्रेटेड हॉस्पिटल, सेक्टर 34D, चंडीगढ़। प्रोग्राम संजीवनी में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
2: शुक्रिया अनिल जी। आकाशवाणी चंडीगढ़ के सभी श्रोताओं का मैं डॉक्टर सुनैना चड्डा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ।
1: हमने टॉपिक चुना है मधुमेह, शुगर, डायबिटीज, और ये भी कहा जाता है कि हमारे देश में

0: जो शुगर पेशेंट्स हैं सबसे ज्यादा हैं। तो आज ये टॉपिक हमने चुना है, और एक होम्योपैथ किस तरह से मधुमेह को देखता है, किस तरह से इलाज करता है, इस सब के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि मधुमेह, डायबिटीज यानी शुगर, ये बीमारी है क्या?
1: अनिल जी, ये आजकल एक बहुत कॉमन सी टर्म है जो हम डे टू डे लाइफ में सुनते हैं कि हर दूसरे इंसान को डायबिटीज़ है। इनफैक्ट भारत को आज दुनिया की डायबिटीज़ राजधानी कहा जा रहा है, और यह एक बहुत चिंता की बात है। मैं डायबिटीज़ के बारे में बताने से पहले आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल देना चाहूँगी। हमारे पास एक पेशेंट आते हैं, रामदीन है उनका नाम। कुछ दिन पहले वो मेरे पास आए, जर्नल उनकी मेडिसिन मेरे से चल रही थी बॉडी एक्स की
0: जी।
1: परहेज काफ़ी करते हैं, चाय भी वो फीकी पीते हैं, मीठा भी अवॉइड करते हैं, अच्छी लाइफ जी रहे हैं। उनके पैर पे एक जख्म था, वो हील नहीं हो रहा था, ठीक नहीं हो रहा था। मैंने उन्हें बोला एक बार हम आपकी शुगर टेस्ट कराते हैं, और शुगर लेवल जांच कराने पे उनकी शुगर 300 के पार पहुंची हुई थी।
0: अरे अरे अरे,
1: वो बहुत हैरान थे, और वो बोले डॉक्टर साहब मैं तो बिल्कुल भी मीठा नहीं खाता, मिठाई नहीं खाता, मैं चाय भी बिल्कुल नहीं पीता, फिर मेरे को शुगर क्यों हुई?
0: हाँ बिल्कुल, लाइफस्टाइल मेरा ठीक है,
1: फिर भी मेरी शुगर 300 के पार कैसे आ गई? फिर मुझे पता चला जांच करने पर कि वे दिन भर काम बैठ के करते थे, हिसाब किताब करने का काम था उनका।
0: अच्छा,
1: एक ऑफिस
0: बैठने
1: में
0: का काम था,
1: बैठने का काम था, और वो छोटी छोटी बात का मानसिक तनाव बहुत लेते थे। मैंने उन्हें बस एक ही बात कही, रामदीन जी जैसे खड़ी हुई साइकिल को जंग जल्दी लगता है, वैसे ही सुस्त शरीर को बीमारियां।
0: जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप।
1: उन्होंने अपनी जीवन शैली बदली, थोड़ा योगा एक्सरसाइज सैर शुरू करी, और थोड़ा मेंटल स्ट्रेस को ठीक करने के लिए मेडिटेशन किया, अच्छा लाइफस्टाइल अपनाया उन्होंने, और अब वो बिना भारी दवाओं के एक बहुत स्वस्थ जीवन जी रहे हैं।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है, कारणों को दूर कर लिया, उन पर काम कर लिया, और वो सब कुछ रिवर्स हो गया, आप ये कहना चाह रही हैं?
1: जी, डायबिटीज इज अ रिवर्सिबल डिजीज, क्योंकि डायबिटीज है ही एक जीवन शैली गलत होने की निशानी है। अगर हम अपनी जीवन शैली ठीक कर लेते हैं तो काफी हद तक डायबिटीज को रिवर्स भी किया जा सकता है।
0: इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं या ठीक कर सकते हैं?
1: सब कुछ कर सकते हैं, विल पावर पे डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे ठीक कर सकते हैं।
0: जब आप विल पावर कहते हैं तो यहाँ विल पावर किस तरह की होनी चाहिए?
1: विल पावर होनी चाहिए कि मेरे को सबसे पहले तो एक्सेप्ट करो कि मुझे ये डिजीज़ हुआ है, उसे एक्सेप्ट कर लिया हमने, फिर हम बैठ के खुद सोचें कि क्यों हुआ है, उसके पीछे रीजंस क्या हैं, कि मेरा खान पान गलत है, या मेरे अंदर फिजिकल एक्टिविटी की कमी है, या मैं मेंटल स्ट्रेस बहुत लेता हूँ, या मेरी फैमिली हिस्ट्री है। कई बार क्या होता है, सब कुछ ठीक होते हैं पर फैमिली हिस्ट्री इतनी स्ट्रांग होती है कि आपको डायबिटीज़ हो जाती है, बट वो वाली डायबिटीज़ को भी हम काफ़ी हद तक कंट्रोल के साथ साथ रिवर्स कर सकते हैं अगर हम अपनी जीवन शैली को सुधार लें।
0: अगर हमारे परिवार में किसी को प्रॉब्लम है डायबिटीज़ की तो उसे कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है।
1: हर एक को नहीं होती, अब कईयों को लगता है मीठा खाने से डायबिटीज होती है। अब रामदीन जी तो बिल्कुल मीठा नहीं खाते थे, वो चाय भी फीकी पीते थे, उन्होंने कभी मीठा खाया ही नहीं, क्योंकि उनको अंदर से था कि मुझे डायबिटिक नहीं होना, मैं मीठा नहीं खाऊंगा, पर फिजिकल एक्टिविटी नहीं थी, स्ट्रेस ज्यादा था तो उनको भी हो गई। अगर फैमिली में है तो होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, बट ये कोई गारंटी नहीं है कि होगी ही होगी।
0: चांसेस ज्यादा हैं लेकिन ये पक्का नहीं कि होगी।
1: बिल्कुल,
0: अगर आप अपना लाइफस्टाइल ठीक रखते हैं, आपको पता है कि आपके परिवार में कहीं ना कहीं किसी को शुगर की प्रॉब्लम है, ये सब जानने के बावजूद आप अपना स्टाइल ठीक रखते हैं, लाइफस्टाइल ठीक रखते हैं, खान पान ठीक रखते हैं, अपने आप को एक्टिव रखते हैं, तो आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं।
1: बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत पेशेंट्स हैं हमारे जिनके मदर भी डायबिटिक हैं, फादर भी डायबिटिक है, पर उनको डायबिटीज नहीं है क्योंकि उनका फिजिकल एक्टिविटी और जीवन शैली अच्छी है। अब कई लोग ऐसे हैं कि पेरेंट्स तो डायबिटिक नहीं है, 80-80 साल के पेरेंट्स हैं, दे आर नॉन डायबिटिक, बच्चे को 20 साल में डायबिटीज है।
0: जी, वो सारी बात है कि जो लाइफस्टाइल है वो कहीं ना कहीं बिगड़ा हुआ है।
1: बिल्कुल,
0: है ना, खान पान बिगड़ा हुआ है। तो डॉक्टर, ये तो आपने प्रोग्राम के शुरू में ही बहुत अच्छे से उदाहरण के साथ ये समझाया कि किस तरह से एक पेशेंट आपके पास आया, उसकी कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं थी जिसे देख के लगे कि उसे शुगर है
1: जी।
0: लेकिन एक जरा से छोटे से जख्म ने आपका ध्यान उस ओर आकर्षित किया कि हो सकता है कि कहीं शुगर ना हो।
1: बिल्कुल,
0: और आज वो आपकी एडवाइस से, आपकी गाइडलाइन से
1: बिना दवाओं के भी वो नॉर्मल है।
0: नॉर्मल है
1: जी।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि मधुमेह होने के लक्षण क्या हैं और लक्षण क्या हो सकते हैं?
1: भगवान ने हमारे शरीर की संरचना कुछ इस तरह से की है कि हमारा शरीर खुद ही हमें संकेत देता है कि कोई बीमारी या कोई दिक्कत आपकी बॉडी में आ रही है।

0: चार लक्षण मैं ऐसे बताना चाहूंगी जिससे एक व्यक्ति को अंदाजा लग जाना चाहिए कि उसको डायबिटीज हो सकती है और उसको अपने टेस्ट तुरंत करवा लेने चाहिए। इसमें से सबसे पहला लक्षण है, अगर आपको बार बार प्यास लग रही है और मुंह सूख रहा है, बिना, आजकल गर्मी है सबको प्यास लगती है, पर कई बार डायबिटिक पेशेंट को होता है पानी पी के आए 15 मिनट बाद फिर से उसको प्यास लग रही है और मुंह सूखता है उसका बहुत। सेकंड जो इसका सिम्टम है वो है रात को 3 से 4 बार पेशाब के लिए उठना पड़ रहा है। नॉर्मली पेशेंट 1 बार या 2 बार उठता है, अगर उसे लगता है कि नहीं मैं पहले 1-2 बार उठता था, अब मुझे रात को 4 बार उठना पड़ रहा है, दिन में भी मैं फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन के लिए जा रहा हूँ, पॉली यूरिया कहते हैं हम इसको, तो उसमें भी डायबिटीज होने की आशंका है। तीसरा है, खूब खाने के बावजूद वजन अचानक कम हो रहा है या बहुत कमजोरी लग रही है, वीकनेस, हर वक्त बंदा कह रहा है कि मैं ठीक से खा पी रहा हूं फिर भी मेरा वेट लॉस होता जा रहा है और मेरे को हमेशा वीकनेस फील होती है, उसको भी डायबिटीज का टेस्ट कराना है। और फोर्थ जो है, जो मैंने रामदीन जी के लिए डायग्नोसिस में देखा है,
1: जी,
0: कहीं चोट लग जाए तो घाव भरने में बहुत समय लग रहा है। नॉर्मली हमारी बॉडी की सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, कोई भी जो चोट लगती है वो मेडिसिन लेने से और ना भी लेने से, हाइजीन मेंटेन करने से खुद ही वो हील हो जाती है। बट अगर आपका कोई जख्म बहुत लंबे टाइम से भर नहीं रहा है, तो ये चार लक्षण हो या इनमें से कोई 1-2 लक्षण भी हो, तो आपको अपनी फास्टिंग और पीपी दोनों शुगर लेवल जल्दी से जल्दी चेक करवाने चाहिए।
1: आप कह रहे हैं कि कोई चोट लगे तो अमूमन कितने दिन में अपने आप ठीक हो जाए, कितने दिनों के बाद हमें ये सोचना चाहिए,
0: बिल्कुल,
1: कि हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, हो सकता है कहीं शुगर की प्रॉब्लम तो नहीं है।
0: जी, वैसे नॉर्मली चोट जो है हमारी 7 to 10 days के अंदर हील हो जानी चाहिए। अगर वो 1 month, 30 days या 25 days तक वो हील नहीं हो रही है, तो हमें अपना शुगर लेवल जरूर चेक करवा लेना चाहिए।
1: जी अच्छा डॉक्टर, ये तो लक्षण आपने बताए, लेकिन पहले ये कहा जाता था कि भाई जो शुगर की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है, एक ख़ास उम्र के लोगों को होती है ना
0: जी।
1: लेकिन आज तो बच्चों में भी, छोटे छोटे बच्चों में भी शुगर की प्रॉब्लम देखी जा रही है।
0: बिल्कुल, उसके पीछे जो रीज़न है वो मैं दोबारा रिपीट करना चाहूँगी, उनकी गलत जीवन शैली। तो जो मेरा सबसे पहला एडवाइस है, जो बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स को भी है, कि मोबाइल गेम्स, जंक फूड, ये सब चीज़ें बच्चों को अवॉइड करवाएं। माता पिता से मेरी विनती है कि बच्चों को मैदान में खेलने भेजें, उनके टिफ़िन में मैदा, पैकेट बंद जूस हटाकर फल और घर का बना खाना शामिल करें और उनको मोटिवेट करें कि वो आउटडोर गेम्स खेलें। और बच्चों को फ़ोन से हटाने के लिए सबसे पहले उनके पेरेंट्स को फ़ोन छोड़ना चाहिए। अगर हम बच्चे को मना कर रहे हैं फ़ोन चलाने के लिए और पेरेंट्स खुद दोनों फ़ोन पर लगे हुए हैं, वो भी बहुत गलत है। घर जाएँ अपने ऑफिस से, फोन, मदर भी अपना फोन अलग रख दे, फादर भी रख दे, और बच्चा भी, कोई भी फोन मत देखिए, एटलीस्ट उसका इंटरनेट ऑफ कर दीजिए, सिर्फ कॉल आए और कॉल सुनो। अगर हम पेरेंट्स ही बच्चों के लिए अच्छे एग्जांपल क्रिएट करेंगे, बच्चे तभी सुनेंगे, क्योंकि बच्चे जो सुनते हैं वो फॉलो नहीं करते, बच्चे जो देखते हैं वो फॉलो करते हैं। तो हमें,
1: लेकिन डॉक्टर साहब, अब जो समस्या ये है कि आज की जनरेशन का जो भी काम है, चाहे वो मनोरंजन हो या उनके ऑफिस का काम हो, उनके एजुकेशन से जुड़ा काम हो, कहीं अप्लाई करना है, कुछ भी काम है, वो सब कुछ ऑनलाइन है।
0: बिल्कुल,
1: तो ऐसे में अगर वो फोन को अपने मनोरंजन के लिए ना भी इस्तेमाल करें, तब भी उन्हें दिन भर अपने फोन पर, अपनी स्क्रीन पर आना पड़ता है या अपने लैपटॉप पर आना
0: पड़ता है। इसमें उनको खुद से चीजें प्रायोरिटाइज करनी है ना, जो चीजें अनअवॉइडेबल हैं वो करें, वो मनोरंजन के लिए तो अवॉइड कर सकते हैं उन चीजों को।
1: जी।
0: ये दिस इज ओनली द मोटिवेशन वी कैन गिव टू अवर यंग जनरेशन, कि आपको अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना है। हेल्थ अच्छी है तो वो काम भी अच्छा कर सकेंगे, अगर उनकी हेल्थ ही अच्छी नहीं है, उनकी आईज में प्रॉब्लम आ रही है, ओबेसिटी है, नींद ज्यादा आ रही है, घबराहट हो रही है, वो अच्छा परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे अपनी डे टू डे लाइफ में। तो उनको प्रायोरिटी अपनी हेल्थ को देनी है, बाकी के काम करें, हेल्थ का ध्यान रखते हुए सोशल मीडिया को और मनोरंजन को अवॉइड करें, धीरे धीरे कम करें। पेरेंट्स बोलें कि ठीक है हाफ एन आवर ले लो तुम अपने मनोरंजन के लिए, उसके बाद उसको अवॉइड कर लें,
1: यानी राशनिंग कर लें,
0: या
1: और अपने लाइफस्टाइल को पूरा एक्टिवेट करें।
0: बिल्कुल,
1: एक्टिविटी अपनी जो है बना के रखें, फिजिकली एक्टिविटी।
0: देखिए सर, मेरी तरह बहुत डॉक्टर्स यहाँ आते हैं, हर कोई एक ही बात बोलता है, अच्छी जीवन शैली, फिजिकल एक्टिविटी, ये टर्म्स ना रह के एक एक्चुअली प्रैक्टिकली हमारी लाइफ में आनी चाहिए। अगर हमारा बच्चा आज 3 घंटे फ़ोन देख रहा है, हम उसे बोलते हैं कि तूने कल से फ़ोन नहीं देखना, वो पॉसिबल नहीं है, वो एडिक्टेड हो चुका है। उसको पहले तो आप मोटिवेट करो, उसको माइंड मेंटली इतना मोटिवेट कर दो कि वो खुद

0: आपको बोले ठीक है मुझे आज से फोन नहीं देखना है, वो 3 घंटे से 2 घंटे पे आए, 2 घंटे से 1 घंटे पे आए, ग्रेजुअली डिक्रीज करें। और एक आजकल पेरेंट्स फैमिलीज में क्या है, हम लोग इकट्ठे बैठ के खाना नहीं खाते हैं, कोई किसी टाइम पे खा रहा है, कोई किसी टाइम पे, इकट्ठे बैठ के जब हम खाना खाते हैं, हम डिस्कशंस करते हैं, हमारी मोटिवेशनल टॉक्स होती हैं, उससे एक फैमिली में अच्छा एटमोसफियर बनता है, एक दूसरे से अटैचमेंट होती है, एक दूसरे के साथ गॉसिप्स करने का मन करता है बच्चों का। हम पेरेंट्स ही अटेंड नहीं करते अपने बच्चों को, हम भी फ़ोन में लगे हैं, वो भी फ़ोन में लगे हैं, तो रियल कल्प्रिट इज़ फ़ोन। उसको दूर करने के लिए पेरेंट्स को, बच्चों को, सबको ही एफर्ट्स करने
1: जी
0: पड़ेंगे।
1: अच्छा डॉक्टर सुनैना, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जब डायबिटीज़ की बात होती है तो दो तरह की डायबिटीज़ होती हैं, नंबर 1 नंबर 2, इसके बारे में समझाइए।
0: डायबिटीज़ 2 कैटेगरीज में बांटी गई है, डायबिटीज़ टाइप 1 एंड डायबिटीज़ टाइप 2।
1: जी
0: जो तो हम आजकल, मैं आज जिस टॉपिक पे बात कर रही हूँ, ये टाइप 2 डायबिटीज़ है जो हम अपनी गलत जीवन शैली की वजह से अपनी बॉडी में लाते हैं। जो टाइप 1 डायबिटीज़ है वो हमारे बस में नहीं होती, क्योंकि वो हमें जन्म से ही हमारे अंदर इंसुलिन की प्रोडक्शन कम होती है या एब्सेंट होती है, कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटी है, तो वो बचपन में ही डिटेक्ट हो जाती है, एंड दैट इज़ कॉल्ड द इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़। उसके लिए आपको एक्सटर्नली इंसुलिन लेना ही पड़ता है। और जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़। नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट मतलब एक्सटर्नल इंसुलिन की उसको ज़रूरत नहीं है, वो हम अपनी डाइट, मेडिकेशन और लाइफस्टाइल से ठीक कर सकते हैं।
1: जी, टाइप 1 है जब
0: जी
1: बच्चों को हो जाती पता चलता है।
0: जी इतना लॉन्ग टाइम, अब बच्चे को 2 साल की उम्र में डायग्नोज हो गई है, उसका हम सोचते हैं जी 80 ईयर्स अगर उसकी उम्र है, उसने 78 ईयर्स आगे इंसुलिन लेना है, तो लाइफ टाइम जो इंसुलिन ले रहा है उसको और भी साइड इफ़ेक्ट्स होने की प्रॉब्लम्स
1: जी
0: हो सकती
1: जी
0: हैं। तो
1: जी
0: हमारी एज अ होम्योपैथ ये कोशिश रहती है कि पहले तो पेशेंट को हम काउंसल करते हैं कि तुम्हें इंसुलिन लेनी है, बट तुम्हें उसके साइड इफ़ेक्ट्स के बचने के लिए ऐसी ऐसी लाइफस्टाइल जीनी है, ये जीवन शैली होनी चाहिए, ऐसी तुम्हारी डाइट होनी चाहिए। अगर बंदा पॉजिटिव डाइट के साथ और एक अच्छे एटीट्यूड के साथ होम्योपैथिक मेडिसिन साथ में कंटिन्यू करता है, तो उसकी इंसुलिन की डोजेस कम हो सकती हैं।
1: वो उसको सपोर्ट करती हैं।
0: जी
1: जी, डॉक्टर सुनैना चड्ढा, आप बहुत अच्छे से समझा रही हैं डायबिटीज़ के बारे में, और हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपको कितने साल हो गए हैं?
0: मुझे 16 ईयर्स हो गए हैं।
1: 16 साल हो गए
0: जी
1: हैं। इन 16 सालों में कैसा लगता है आपको कि वाकई होम्योपैथी को इस स्टेज से अपनाया जाए या इस तरह से अपनाया जाए तो अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं?
0: जी बिल्कुल, एज अ होम्योपैथ मुझे बहुत सक्सेसफुल रिजल्ट्स मिले हैं, शुगर के केसेस में, बीपी के केसेस में, ओबेसिटी में, जो लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं उनमें जो होम्योपैथी का काम करने का तरीका है वो है लाइक क्योर्स लाइक। इसका अर्थ है जो पदार्थ एक स्वस्थ व्यक्ति की बीमारी में बीमारी जैसे लक्षण पैदा कर सकता है, वही पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में उस बीमारी को ठीक भी कर सकता है।
1: जी,
0: बेसिकली होम्योपैथी व्यक्ति के केवल रोग का नहीं बल्कि उसके शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक पहलुओं को समझकर संपूर्ण स्वास्थ्य को संतुलित करता है।
1: जी
0: बहुत माइन्यूट खुराक हम देते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स मिनिमल हैं, और जो मेन हमारा टारगेट ऑर्गन है होम्योपैथी का, दैट इज़ द वाइटल फोर्स। जो हमारी दवाएं हैं वो शरीर की वाइटल फोर्स, जीवन शक्ति को उत्तेजित करती हैं, जिससे शरीर खुद को प्राकृतिक रूप से ठीक करने के लिए सक्षम बनता
1: सक्षम
0: है।
1: बनता है, आप
0: जी
1: उसे स्ट्रांग बनाते हैं।
0: जी
1: ये जो आपकी दवाई है एज ए सोल्जर्स काम करती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, मेंटल
1: अच्छा
0: काउंसलिंग प्लस इंटरनल वाइटल फोर्स और इम्यूनिटी पे काम करती है होम्योपैथी।
1: हाँ, यानी आपके कहने का मतलब है कि जो होम्योपैथी है वो केवल बीमारी को ही टारगेट नहीं करती, वो
0: बिल्कुल
1: टारगेट करती है कि बीमारी हुई क्यों
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: और उसमें
0: बिल्कुल
1: कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से सिम्टम्स हैं जिनकी
0: जी
1: वजह से ये स्थिति आज हुई। क्या ऐसा
0: जी
1: ही मैम?
0: बिल्कुल,
1: जी
0: होम्योपैथी केवल लक्षणों को दबाने की बजाय शरीर की इंटरनल शक्ति को जागृत करने पर काम करती
1: जी
0: है।
1: और डॉक्टर सुनैना चड्ढा, इस प्रोग्राम में हम अपने मेहमान की पसंद का गाना भी शामिल करते हैं, तो प्रोग्राम के अगले सेगमेंट में जब हम आपसे मिलेंगे तो और पहलुओं पर बात करेंगे, सवाल कुछ हमारे रहेंगे, लेकिन फिलहाल आप अपनी पसंद का गाना हमें बताइए।
0: जी मितवा सॉन्ग फ्रॉम चांदनी मूवी।
1: जी, ये गाना चांदनी फिल्म से हम आपके लिए प्ले करते हैं, उसके बाद फिर से मिलते हैं प्रोग्राम में।

0: प्रोग्राम संजीवनी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनैना चड्डा। प्रोग्राम में एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं।
1: शुक्रिया।
0: ऐसी कौन कौन सी और चीज़ें हैं हमारे आसपास जो हमारे इम्यून को मजबूत करें, हमारी जीवन शक्ति, हमारी वाइटल फोर्स जिसके बारे में आपने बात की है, उसे शक्ति प्रदान करें ताकि जो समस्या हमें आ गई है उसे लड़ने के लिए हमें एक ताकत पैदा हो।
1: बिल्कुल। डाइट का, जैसे मैंने पहले भी बताया, डाइट का बहुत रोल है डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में। तो कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली जो हैं वो शुगर का कॉजिटिव एजेंट है। कार्बोहाइड्रेट्स हम अपनी लाइफ में से जितने कम कर देंगे हमारी शुगर उतनी बेटर हो जाएगी और शुगर होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। जो हम डेली सुबह उठते ही चाय पी लेते हैं, चाय के साथ बिस्किट खा लिए, रस खा ली, पेशेंट्स कहते हैं मैम हम तो शुगर फ्री वाले बिस्किट ले रहे हैं। चाहे शुगर फ्री ले रहे हो, है तो वो आटे से बने हुए हैं। जितने हम अपने दिन की शुरुआत ही कार्बोहाइड्रेट से करते हैं और सारा दिन हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते रहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का जीआई ग्लाइसीमिक इंडेक्स जो है वो बहुत ज्यादा है।
0: डॉक्टर साहब, अभी आपने जीआई के बारे में बात की है, तो ये जीआई क्या है और एक आम व्यक्ति किस तरह से ये मालूम करे?
1: बिल्कुल। जीआई की फुल फॉर्म है जी ग्लाइसीमिक इंडेक्स। ग्लाइसीमिक इंडेक्स क्या है? जो भी हमने शुगरी प्रोडक्ट खाया, जो भी हमने कार्बोहाइड्रेट्स खाया, वो कितनी जल्दी हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में शुगर लेवल्स को इंक्रीज करेगा। जिन फूड आइटम्स का ग्लाइसीमिक इंडेक्स ज़्यादा होगा, फॉर एग्जांपल 70 से ऊपर है,

0: जैसे मैदे के प्रोडक्ट्स हो गए, आटे के प्रोडक्ट्स हो गए, आलू हो गए, चावल हो गए, इनका जीआई लेवल, इनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स इज अबव 70, तो ये हमारी बॉडी में जाते ही एकदम ब्लड में शुगर लेवल हाई
1: शूट जी
0: शूट करते हैं, जिससे हमें ड्राउजी फील होता है, बॉडी एक फील होता है, चने भटूरे खा लेते हैं हम खाने में, उसके बाद हमें लगता है अभी सो जाएं हम, इतनी ज़्यादा नींद, स्लीपिंग पिल का नाम देते हैं आजकल हम
1: लेकिन
0: चने
1: वो
0: भटूरे
1: स्वाद
0: को।
1: बड़े लगते हैं।
0: हाँ बिल्कुल, पर उनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स इतना ज़्यादा है कि
1: हाँ
0: वो बॉडी में एकदम शुगर लेवल्स को शूट करते हैं और हमें ड्राउजीनेस और नींद आनी फील हो जाती है।
1: डॉक्टर, अभी आपने कहा कि चने भटूरे खा लेते हैं
0: जी
1: या पकौड़े हो गए या कुछ और हो गया, क्या
0: नहीं
1: इन चीजों का मजा लेना आपके हिसाब से वर्जित है?
0: नहीं बिल्कुल वर्जित नहीं है, हमने
1: हाँ
0: जिंदगी का मजा भी लेना है, पर हर चीज हमें
1: हाँ
0: मॉडरेशन में लेनी है। अगर हम अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करके चलेंगे, हफ्ते में हमने 6 दिन अगर हेल्दी फूड खा लिया, कार्बोहाइड्रेट्स हमने लेस अमाउंट में ले लिया, तो हम एक संडे को चीट डे रख सकते हैं, पर इन मॉडरेशन।
1: जी
0: लाइफ इंजॉय भी करनी है हमने, बट उसको इस तरह इंजॉय करना है कि हमारे बाकी के दिन भी अच्छे निकले। अगर हम
1: हाँ
0: रोज़ कार्बोहाइड्रेट्स लेते रहेंगे, शरीर गिरा रहेगा, टूटा रहेगा, ओबेसिटी होगी, बस फिर हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, स्ट्रोक, हार्ट अटैक, उन सब से बचने के लिए बेटर है कि हम हर चीज़ को मैनेज करके, बैलेंस करके चलें।
1: बैलेंस रखना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल
1: जी
0: बिल्कुल जी। अब जीआई की हम बात कर रहे थे, ग्लाइसीमिक इंडेक्स, तो जो लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स के फूड हैं उनमें मेनली हमारे फ्रूट्स, वेजिटेबल के साथ साथ मिलेट्स आते हैं, जिनको श्री अन्न भी
1: श्री
0: कहा जाता
1: अन्न
0: है।
1: जी
0: बिल्कुल, पोषण का खजाना है ये मिलेट्स हमारे लिए, हमारे पूर्वजों के आहार का मुख्य हिस्सा ही मिलेट्स थे, जो आज फूड फिर से एक सुपर फूड के रूप में उभर रहे हैं। इनमें चावल और गेहूं की तुलना में कहीं अधिक फाइबर, आयरन, कैल्शियम व मैग्नीशियम होता है,
1: जी जी
0: और सबसे बड़ी बात, इनका जो ग्लाइसीमिक इंडेक्स है वो बहुत कम है, ये एकदम से शुगर लेवल रेज नहीं करते, और
1: धीरे धीरे
0: हमारा
1: धीरे
0: धीरे
1: धीरे
0: धीरे
1: चलते हैं
0: रेज करते
1: जी,
0: हैं, हमारा पेट भरा भरा फील होता है, हमें जल्दी भूख नहीं
1: नहीं
0: लगती।
1: लगती।
0: एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये ग्लूटेन फ्री हैं, जिससे ये पाचन के लिए हल्के और पेट के रोगों में काफी फायदेमंद
1: तो
0: होते।
1: इन्हें इस्तेमाल करने का तरीका भी बता दीजिए, क्योंकि हमें आदत तो गेहूं और चावल की है ना ज्यादा,
0: बिल्कुल
1: यही
0: बिल्कुल
1: हमारी स्टेपल डाइट है,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: और श्री अन्न को हम कहीं ना
0: इनको,
1: कहीं भूल गए थे। अब फिर
0: बिल्कुल
1: दुनिया ने इसे माना है,
0: माना
1: इसके
0: है
1: गुणों को
0: हमने,
1: जाना है,
0: बिल्कुल
1: और
0: बिल्कुल
1: भारत सरकार भी इसे प्रमोट कर रही है।
0: बहुत बहुत
1: तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इनका इस्तेमाल में कुछ हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए?
0: कुछ नहीं करना, जैसे हम आटे की चपाती बनाते हैं, नॉर्मल डो हम व्हीट फ्लोर का बनाते हैं, वैसे ही हम ज्वार फ्लोर का डो बनाएंगे, उसकी चपाती बनाएंगे और सब्जी के साथ खाएंगे। बनाने का तरीका वही है जैसे हम अपनी व्हीट की रोटी या मक्की की रोटी बनाते हैं। एसिडिटी इश्यूज आपके कम हो जाते हैं, पेट लंबे टाइम तक भरा रहता है, इसलिए जो बाद में स्नैकिंग और मंचिंग बार बार होती है वो करने को मन नहीं करता। शुगर लेवल जो है हमारे ड्रास्टिकली इम्प्रूव करते हैं, पेशेंट्स की मेडिसिंस हाफ तक हो जाती है, हाफ क्या बंद भी हो जाती हैं, बहुत से पेशेंट्स की मेडिसिंस हमने मिलेट्स स्टार्ट करके टोटली बंद करवा दी हैं, क्योंकि इनमें ग्लूटन नहीं है, इनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स लो है, तो ये वजन कंट्रोल करने में और शुगर को नियंत्रित करने में बहुत ही हेल्पफुल हैं।
1: मतलब दवाई के साथ साथ जब एक पेशेंट अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखता है, खान पान अच्छा रखता है, और खान पान में मिलेट्स का इस्तेमाल शुरू करता है, तो
0: बिल्कुल,
1: उसके आपने बताया कि रिजल्ट्स अच्छे आते हैं।
0: बहुत अच्छे आते हैं सर, संतुलित आहार इज
1: जी
0: द मेन की टू सक्सेस।
1: और डॉक्टर सुनैना चड्ढा, अब होम्योपैथी ने भी बहुत तरक्की की है,
0: जी
1: क्या होम्योपैथी में रिसर्च का काम हो रहा है
0: जी होम्योपैथी में रिसर्च का काम कंटिन्यू है सर, बहुत
1: और
0: रिसर्चेस
1: कुछ
0: होती
1: नए
0: रहती
1: आयाम
0: हैं।
1: जुड़े हैं डायबिटीज को लेकर?
0: जी मैंने आपको पहले बताया है कि डायबिटीज़ में मेडिसिन मेरे लिए एज अ होम्योपैथ मेडिसिन इज़ सेकेंडरी, योर लाइफस्टाइल एंड डाइट इज़ प्राइमरी। तो अगर आप अपना डाइट लाइफस्टाइल अच्छा रख के साथ में होम्योपैथिक मेडिसिंस लेते हो, तो आपकी शुगर लेवल्स हम 100% कंट्रोल कर लेते हैं, रादर रिवर्स कर देते हैं। जब हमारी डाइट अच्छी होती है, वेट लॉस होता है, 5 to 10% अगर हम अपना वेट लॉस कर लेते हैं, तो हमारी शुगर टोटली रिवर्स हो जाती है।
1: जी
0: तो पेशेंट को हम हमेशा यही काउंसल करते हैं कि यू कम हियर फॉर मेडिसिन। अब पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं, वो पहले 3 तरीके की मेडिसिंस खा रहे हैं, हम उनको डाइट एडवाइस करके 2 पे ले आते हैं, फिर 1 पे, पर हमारे पेशेंट खुश नहीं होते, वो हमें कहते हैं कि डॉक्टर साहब पहले डॉक्टर तो 4 दवाइयां देते थे, आपने तो 2 कर दी, आपने तो 1 कर दी। तो हम उन्हें समझाते हैं दवाई कम होना इज़ अ पॉजिटिव थिंग, दिस इज़ नॉट अ नेगेटिव थिंग, हम आपकी दवाइयाँ कम कर रहे हैं क्योंकि आपकी वाइटल फोर्स अब काम कर रही है, जो काम पहले मेडिसिंस कर रही थी, वो अब आपकी वाइटल फोर्स अच्छा काम कर रही है। वो क्यों अच्छा काम कर रही है?

0: और डॉक्टर सुनैना चड्डा, अब होम्योपैथी ने भी बहुत तरक्की की है
1: जी,
0: क्या होम्योपैथी में रिसर्च का काम हो रहा है?
1: जी, होम्योपैथी में रिसर्च का काम कंटिन्यू है सर, बहुत रिसर्चेस होती
0: कुछ नए आयाम जुड़े हैं डायबिटीज को लेकर।
1: जी, मैंने आपको पहले बताया कि डायबिटीज में मेडिसिन मेरे लिए एज अ होम्योपैथ मेडिसिन इज सेकेंडरी, योर लाइफस्टाइल एंड डाइट इज प्राइमरी। तो अगर आप अपना डाइट लाइफस्टाइल अच्छा रख के साथ में होम्योपैथिक मेडिसिन्स लेते हो तो आपकी शुगर लेवल्स हम 100% कंट्रोल कर लेते हैं, रादर रिवर्स कर देते हैं। जब हमारी डाइट अच्छी होती है, वेट लॉस होता है, 5-10% अगर हम अपना वेट लॉस कर लेते हैं तो हमारी शुगर टोटली रिवर्स हो जाती है
0: जी।
1: तो पेशेंट को हम हमेशा यही काउंसिल करते हैं कि यू कम हियर फॉर मेडिसिन। अब पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं, वो पहले 3 तरीके की मेडिसिन्स खा रहे हैं, हम उनको डाइट एडवाइस करके 2 पे ले आते हैं फिर 1 पे, पर हमारे पेशेंट खुश नहीं होते। वो हमें कहते हैं कि डॉक्टर साहब, पहले डॉक्टर तो 4 दवाइयां देते थे, आपने तो 2 कर दी, आपने तो 1 कर दी। तो हम उन्हें समझाते हैं दवाई कम होना इज अ पॉजिटिव थिंग, दिस इज नॉट अ नेगेटिव थिंग। हम आपकी दवाइयां कम कर रहे हैं क्योंकि आपकी वाइटल फोर्स अब काम

0: सबसे सस्ता और बढ़िया इलाज है। नंबर टू, थाली का संतुलन। आधी थाली सब्जियों से भरी हो, एक चौथाई में अनाज और एक चौथाई में दाल या प्रोटीन हो। मीठे फल सीमित मात्रा में ही लें। तीसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तनाव से बचें। गहरी सांस लें, योग करें, मेडिटेशन करें, भरपूर नींद लें। ये सब चीज़ें शुगर को कम करेंगी। और टेक होम मैसेजेस कि हर 3 महीने में HbA1c टेस्ट कराएं ताकि पता चले कि पिछले 90 दिनों में आपका शुगर कैसा रहा। तो सर मैं कहना चाहूंगी, डायबिटीज कोई सजा नहीं है, यह एक संकेत है कि आपको खुद से प्यार करना शुरू कर देना चाहिए।
1: डॉक्टर सुनैना चड्डा, आप हमारे इस प्रोग्राम संजीवनी में आई और होम्योपैथी में किस तरह से मधुमेह का इलाज होता है, किस तरह से होम्योपैथ इस समस्या को होम्योपैथी में देखते हैं, इन तमाम बातों के बारे में आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। इस प्रोग्राम में पधारने के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।
0: शुक्रिया।
1: तो श्रोताओं, ये तो था आज का संजीवनी प्रोग्राम। इस प्रोग्राम की प्रस्तुतकर्ता मीनाक्षी कालिया। अब अपने साथ ही अनिल पुंज को दीजिए अनुमति। खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।

0: मानसिक स्वास्थ्य एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर अभी भी खुलकर बात नहीं होती, और दूसरी ओर आप समाज में, सड़कों पर या कहीं और देखें तो वायलेंस दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हम में संयम लगातार कम होता जा रहा है, और अगर आप ऐसे स्थान पर हैं जहां से आप दूसरों की मदद कर सकते हैं पर आप मदद करना नहीं चाहते तो क्या कहेंगे आप? यही ना कि बड़ी संख्या में हम लोग मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं। बहुतायत में कुछ ना कुछ केमिकल लोचा तो है। हमें किस प्रकार से लेनी चाहिए मेंटल हेल्थ से जुड़ी गाइडेंस, किन किन बातों का रखना होगा ध्यान, इन सब पर चर्चा के लिए आज दोपहर 3:30 से 4 बजे तक FM लाइफलाइन के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे डॉक्टर अखिलेश शर्मा, एडिशनल प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्री, PGI चंडीगढ़। हमारे फोन नंबर्स हैं 2660615, 2660617, 2660619। और
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। दोपहर के 12 बजने को हैं कुछ ही पलों में समाचार। हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने सह अध्यक्ष के तौर पर पाकिस्तान के आचरण की आलोचना की। पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद के टिप्पणियों के जवाब में पी हरीश ने जम्मू कश्मीर पर भारत के लंबे समय से चले आ रहे रुख को दोहराया। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद

0: 11 जहाज होर्मुज जलडमरु मध्य से भारत पहुंचे हैं।
1: 11 जहाज जो भारत की तरफ आ रहे हैं, इसमें से 3 भारतीय जहाज हैं जो कि क्रूड ऑयल टैंकर्स हैं। इनमें 285,000 मेट्रिक टन क्रूड ऑयल है। इसके अलावा एक विदेशी पताका के साथ एक एलपीजी टैंकर जो भारत की तरफ आ रहा है, और एक विदेशी पताका के साथ फर्टिलाइजर कार्गो के साथ वो आ रहे हैं। और जो अन्य 10 हमारे जहाज हैं, वो भी हमारी उम्मीद है कि जल्द ही वो हॉर्मुज पार करके भारत की तरफ आ जाएंगे।
0: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन होर्मुज जलडमरु मध्य में फंसे 11,000 से ज्यादा नाविकों को वहां से निकालेगा। संगठन के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेस ने कहा कि इस अभियान में मदद के लिए जरूरी सुरक्षा गारंटी ली गई है। इस अभियान में ईरान, ओमान और क्षेत्र के अन्य देशों और समुद्री उद्योग जगत का सहयोग लिया जाएगा। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने की। बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खासतौर से चर्चा हुई जो अब वैश्विक रूप ले चुके हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ साझा कार्रवाई की प्रतिबद्धता भी दोहराई। ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए एक नया परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा कि बदलते घटनाक्रमों के बावजूद भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचना चाहिए। देश में रह रहे भारतीय नागरिकों और बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। ताजा जानकारी और आगामी परामर्श के लिए दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार नजर रखने को कहा गया है। आज पासपोर्ट सेवा दिवस है। ये दिन 24 जून 1967 को पासपोर्ट अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने कहा है कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण का क्रियान्वयन, चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत, नए पासपोर्ट सुरक्षा केंद्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना तथा रिकॉर्ड स्तर पर पासपोर्ट जारी करने से यात्रा सुगम हो रही है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सेवा, सुशासन और नागरिक सुविधा के संकल्प के साथ इंडिया पोस्ट द्वारा संचालित डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र के माध्यम से पासपोर्ट सेवाएं देश के सुदूर क्षेत्रों तक भी पहुंच रही हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप के में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। 12:05 हुए हैं। अगला प्रोग्राम है यादों की महफिल।

हम सुन रहे थे गीतबाजी फिल्म से गीता दत्त की आवाज़ में साहिर लुधियानवी के बोल और संगीतकार हैं सचिन देव बर्मन। आज के कार्यक्रम यादों की महफिल में आइए याद करते हैं गीता दत्त को उनके गीतों के साथ। तो चलिए सुनते हैं उनके ही द्वारा गाया गया ये और एक और गीत।

0: हम सुन रहे थे प्यासा फिल्म का यह गीत गीता दत्त की आवाज में, साहिल लुधियानवी के बोल और सचिन देववर्मन के संगीत से सजा हुआ। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल। यादों की महफिल में और भी नगमे हम सजाएंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये संदेश।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूलें कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
4: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
3: सखी सहेली?
4: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
3: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
4: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
5: सखी सहेली।
0: और कार्यक्रम यादों की महफिल में लेते हैं एक छोटा सा विराम।

सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल और हमने आज की यादों की महफिल सजाई है गीता दत्त के द्वारा गाए हुए गीतों के साथ। तो आइए सुनते हैं सुजाता फिल्म का यह गीत जिसे गाया है गीता दत्त ने। मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं और सचिन देववर्मन ने इसे संगीत दिया।

आइए सुनते हैं गीता दत्त के द्वारा गाया हुआ, जिसमें मोहम्मद रफ़ी और साथियों ने उनका साथ दिया है, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, ओपी नैयर का संगीत, और फिल्म का नाम है मिस्टर एंड मिसेस 55।

हम सुन रहे थे आर पार फिल्म का ये गीत गीता दत्त की आवाज में, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और ओपी नैयर का संगीत।

0: फिल्म का यह गीत गीता दत्त की आवाज में, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और ओपी नैयर का संगीत।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, बाहों में
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत।
2: तुम्हारी याद सताती है।
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल और आज सजाई है यादों की महफिल गीता दत्त के गानों के साथ। तो आइए सुनते हैं फिल्म CID का यह गीत, जिसे लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीतकार हैं ओपी नैयर और गाया है गीता दत्त ने।

हम सुन रहे थे हावड़ा ब्रिज फिल्म का यह गीत, गीता दत्त की आवाज़ में, कमर जलालाबादी के बोल और ओपी नैयर के संगीत से सजा हुआ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल का यह अगला गीत, जो कि है 12 o'clock फिल्म से। गीता दत्त की आवाज़ है, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल हैं और ओपी नैयर का संगीत।

हम सुन रहे थे ये गीत श्रीमती 420 फिल्म से गीता दत्त की आवाज़ में जानेसार अख्तर के बोल और ओपी नैयर के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं एक और गीत गीता दत्त की आवाज़ में, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल ओपी नैयर का संगीत।

हम सुन रहे थे ये गीत आज के इस कार्यक्रम यादों की महफिल में गीता दत्त की आवाज में, और आज हम उन्हें याद कर रहे हैं उन्हीं के गीतों के साथ। तो आइए सुनते हैं अनुभव फिल्म का यह गीत, जिसे गाया है गीता दत्त ने, लिखा है गुलजार ने, और कनू रॉय ने इसे संगीतबद्ध किया है।

हम सुन रहे थे साहेब बीबी और गुलाम फिल्म का यह गीत गीता दत्त की आवाज में शकील बदायूनी के बोल और हेमंत कुमार के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल का यह अंतिम गीत कागज के फूल फिल्म से, गीता दत्त की आवाज में कैफी आजमी के बोल और सचिन देवर्मन का संगीत।

0: और इसी के साथ कार्यक्रम यादों की महफिल समाप्त होता है. नमस्कार.
1: श्रोताओं, मेंटल हेल्थ मानसिक स्वास्थ्य एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर अभी भी खुलकर बात नहीं होती. और दूसरी ओर आप समाज में सड़कों पर या कहीं और देखें तो वायलेंस दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है. हम में संयम लगातार कम होता जा रहा है. और अगर आप ऐसे स्थान पर हैं जहां से आप दूसरों की मदद कर सकते हैं पर आप मदद करना नहीं चाहते तो क्या कहेंगे आप? यही ना कि बड़ी संख्या में हम लोग मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं. बहुतायत में कुछ ना कुछ केमिकल लोचा तो है. हमें किस प्रकार से लेनी चाहिए मेंटल हेल्थ से जुड़ी गाइडेंस, किन किन बातों का रखना होगा ध्यान, इन सब पर चर्चा के लिए आज दोपहर 3:30 से 4 बजे तक FM लाइफलाइन के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे डॉक्टर अखिलेश शर्मा, एडिशनल प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्री, PGI चंडीगढ़. हमारे फोन नंबर्स हैं 2660615, 2660617, 2660619 और STD कोड है 0172. हमें आपकी कॉल्स का इंतजार रहेगा.
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर. दिन का एक बज चुका है. अब जानकारी हमारे बाकी के कार्यक्रमों की. प्रादेशिक समाचार हर रोज की तरह आज भी आप सुनेंगे अब से कुछ ही देर में 1:05 पर पहले हिंदी में, उसके बाद 1:10 पर हम आपको लिए चलेंगे अपने जालंधर केंद्र पंजाबी में प्रादेशिक समाचारों के लिए. यही क्रम रहता है शाम 6:10 पर पहले हिंदी में, उसके बाद 6:20 पर पंजाबी में.

समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे दोपहर 2:15 पर, शाम 5 बजे, शाम 6 बजे, रात 8:45 पर समाचार संध्या और रात 11 बजे। स्पॉन्सर प्रोग्राम आप सुनेंगे लम्हे शाम 5:20 पर और 5:30 स्पॉन्सर प्रोग्राम उमंग। पंजाबी गीतों का कार्यक्रम आपके लिए पेश करेंगे शाम 6:30 पर। शाम 7:45 पर मुख्य प्रादेशिक समाचारों के बाद आप सुनेंगे कुछ पंजाबी गाने। रात 10:30 पर मुख्य प्रादेशिक समाचारों के बाद सुनिएगा सुरसांझ कार्यक्रम में पंजाबी गाने।

विविध भारती मुंबई से जो प्रोग्राम रिले किए जाएंगे उन प्रोग्रामों में दोपहर 1:30 पर प्रोग्राम सुरीला सफर, 2 आप सुनेंगे प्रोग्राम त्रिवेणी, 2:30 सदाबहार नगमे, 3 महिलाओं का कार्यक्रम सखी सहेली। टॉक शो पिटारा में शाम 4 आज के मेहमान प्रोग्राम में आपकी मुलाकात करवाएंगे चित्रकार अखिलेश वर्मा से। 8 प्रोग्राम हवा महल में झलकी आप सुनेंगे, वो कैसी होगी, अभिनेत्री करिश्मा कपूर पर केंद्रित है आज के फनकार प्रोग्राम 9:30। 7 फौजी भाइयों के लिए जयमाला कार्यक्रम में फिल्मी गाने, 8:15 पर चित्र लोक, 9 आपके लिए। और हमारे केंद्र से फिल्म संगीत आप सुनेंगे 1:15 पर, 5:05 पर। ये थी जानकारी हमारे बाकी के कार्यक्रमों की, कुछ जो हमारे केंद्र से आपके लिए पेश किए जाते हैं और कुछ विविध भारती मुंबई से रिले किए जाते हैं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। 1:05 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार पहले हिंदी में हमारे केंद्र से। उसके बाद हम आपको लिए चलेंगे अपने जालंधर केंद्र 1:10 पर पंजाबी में प्रादेशिक समाचारों के लिए।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अल नीनो के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने के लिए खरीफ फसल के लिए एहतियाती तैयारियां कर रही है। श्री चौहान ने नई दिल्ली में कहा कि जुलाई में भी मॉनसून के कमजोर रहने की आशंका है।
1: ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है हमारी खरीफ की फसल, उस पर इसका असर पड़ सकता है। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है। इनमें से 111 जिले हमारी उच्च प्राथमिकता वाले जिले होंगे, क्योंकि इनमें सिंचाई 25% से कम है। मध्यम प्राथमिकता वाले, मतलब जहां 25 से 50% सिंचाई की व्यवस्थाएं हैं, ऐसे 76 जिले हैं। और 128 जिले निम्न प्राथमिकता वाले, इसलिए वहां सिंचाई के लिए डैम और बाकी चीजों की व्यवस्था है।
0: हरियाणा की सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रीमती श्रुति चौधरी की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई विभागीय उच्च अधिकार प्राप्त खरीद समिति की बैठक में प्रदेश में आगामी मॉनसून को देखते हुए बाढ़ नियंत्रण के लिए कई निर्णय लिए गए। बैठक में विभागीय उच्च अधिकार प्राप्त खरीद समिति के सदस्य

और प्रदेश के शिक्षा मंत्री श्री महिपाल ढांडा भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक के दौरान समिति ने जलभराव और बाढ़ जैसी स्थितियों से निपटने के लिए पाइपों तथा उच्च शक्ति वाले जल पंपों की खरीद से संबंधित सभी 16 एजेंडा को सर्वसम्मति से मंजूरी दी। इन उपकरणों और सामग्रियों की खरीद पर प्रदेश सरकार द्वारा 30 करोड़ रूपये से अधिक की राशि व्यय की जाएगी। मंत्री ने कहा कि सरकार के इस कदम से प्रदेश के संवेदनशील और निचले इलाकों में जल निकासी व्यवस्था को भारी मजबूती मिलेगी। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाढ़ नियंत्रण से जुड़ी सभी सामग्रियों की आपूर्ति समय पर सुनिश्चित की जाए। भारतीय सूचना सेवा के सेवामुक्त अधिकारी श्री जीएस टिवाना की आज 88 वर्ष की आयु में कनाडा में निधन हो गया। उन्होंने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न विभागों में अपनी सेवाएं दी। वे 1998 में दूरदर्शन जालंधर से निदेशक समाचार के पद से सेवामुक्त हुए थे। हरियाणा के लोक निर्माण एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा ने अधिकारियों को बरसात के मौसम के दौरान हर हाल में सभी प्रशासनिक, तकनीकी और वित्तीय औपचारिकताएं पूरी कर लेने के निर्देश दिए हैं, ताकि मौसम अनुकूल होते ही सड़क निर्माण एवं सुधार कार्यों को तेजी से शुरू किया जा सके। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों का विशेष ध्यान रखा जाए। श्री रणबीर गंगवा लोक निर्माण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप राज्य के सभी 22 जिलों में विकसित की जाने वाली आदर्श सड़क परियोजनाओं के साथ साथ अन्य परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। श्री रणबीर गंगवा को अधिकारियों ने बताया कि इन 2 सड़कों की कुल लंबाई लगभग 115 किलोमीटर होगी। इन सड़कों को सौंदर्यकरण, आधुनिक सुविधाओं और सड़क सुरक्षा के लिहाज से प्रदेश की आदर्श सड़कें बनाया जाएगा। अधिकारियों ने जानकारी दी कि चयनित 8 सड़कों का विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा सर्वेक्षण जुलाई माह में पूरा कर लिया जाएगा। इसके साथ ही जुलाई तक आदर्श रोड परियोजनाओं को प्रशासनिक मंजूरी भी मिलने की संभावना है, जिसके बाद निर्माण कार्य शुरू कर दिए जाएंगे। अधिकारियों ने वर्ष 2026-27 के कार्य की प्रगति को लेकर बताया कि प्रस्तावित 1633 सड़कों में से 1042 सड़कों के अनुमान तैयार कर भेजे जा चुके हैं, जबकि शेष सड़कों की प्रक्रिया भी तेजी से पूरी की जा रही है। अंबाला जिला रेडक्रॉस सोसाइटी द्वारा कल अंबाला शहर के पंचायत भवन में सुबह 9 बजे से दिव्यांगजनों के लिए विशेष मापन एवं उपकरण वितरण शिविर का आयोजन किया जाएगा। रेडक्रॉस सोसाइटी से कार्यक्रम के जिला संयोजक सुनील कुमार ने बताया कि शिविर में अंबाला जिले के अंबाला, नारायणगढ़, बराड़ा, मुलाना सहित सभी 6 खंडों के पात्र दिव्यांगजनों को आवश्यकता के अनुसार ट्राईसाइकिल, मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र, बैसाखियां तथा अन्य सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। इस बार विशेष प्रयास किया जा रहा है कि मापन के बाद लाभार्थियों को उपकरण उसी दिन अथवा अगले दिन उपलब्ध करा दिए जाएं, लोगों को कई महीनों तक इंतजार न करना पड़े। केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत MY यानी माय भारत चंडीगढ़ ने युवाओं की भागीदारी को बढ़ाने तथा संगठित युवा समूहों के माध्यम से सामुदायिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पूरे चंडीगढ़ में यूथ क्लब विकास अभियान की शुरुआत की है। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: संबंधी जानकारी साझी की गई। केंद्रीय रेल राज मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू वालों आज जलंधर के मुख रेलवे फाटकों से बनाए जाने वाले ओवरब्रिजा के नींह पत्थर रखे जाएंगे। यह रेलवे ओवरब्रिज भीड़ भड़के वाले दो रेलवे क्रॉसिंग गुरु नानकपुरा और बस स्टैंड तो गड़ा रोड रेलवे फाटक से बनने। इन्हों दोवें रेलवे ओवरब्रिज बनने ट्रैफिक जाम की मुश्किल तो राहत मिलेगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सरपंचां नूं दिहाती पंजाब दे बदलाव की अगवाई करन दा सदा दिता ते स्पष्ट कीता है कि पंजाब नूं देश दा सब तों वध विकसित सूबा बनाउण दे सुपने नूं साकार करन लई सूबे दे पिंड देश विच सब तों वध विकसित हो के उभरने चाहीदे ने। रामपुरा फूल ते तलवंडी साबो दे सरपंचां ते पंचां नाल गलबात करदिआं मुख्यमंत्री ने दोहराया कि पंजाब सरकार पिंडां दे सर्वपक्षी विकास लई पूरी तरह वचनबद्ध है अते इस कारज लई फंडां दी कोई घाट नहीं आउण दित्ती जाएगी। उन्होंने पंचायतां नूं अपील की कि वह सरकारी फंडां दी वरतों इस तरीके नाल करन जिस नाल समाज के हर वर्ग नूं लाभ मिले जबकि सिक्ख्या देहाती बुनियादी ढांचे ते निरंतर रहण योग विकास नूं पहल दित्ती जावे। मुख्यमंत्री ने पिंडां दे विकास अते सिंचाई नाल संबंधित मुद्दियां दी भी समीक्षा कीती ते किसानां लई नहरी पानी दी सप्लाई यकीनी बनाउण अते पंजाब दी तरक्की ते खुशहाली दी रफ्तार तेज़ करन लई सरकार दी वचनबद्धता नूं दोहराया। सरपंच मिलने दौरान इकट्ठ नूं संबोधन करदिआं मुख्यमंत्री ने कहा कि सरपंच पिंड दा मुखी हुंदा है ते इक चंगा सरपंच पिंड दी नुहार बदल सकदा है ते लोकां दी खुशहाली यकीनी बना सकदा है। सरपंचां नूं विकास कार्जां नूं पहल देण दी अपील करदिआं मुख्यमंत्री ने कहा कि इह फंड इस तरीके नाल खर्च कीते जाणे चाहीदे ने कि समाज दे हर वर्ग नूं इस नाल लाभ मिले। उन्हां सरपंचां नूं पिंडां नूं साफ सुथरा हरिया भरिया ते प्रदूषण मुक्त बनाउण लई सख्त मेहनत करन दी अपील भी कीती तां जो सूबे दे चुगिरदे नूं बचाया जा सके। पंजाब दे सिक्ख्या मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने 12वीं जमात दीआं परीक्षावां विच 85% जां इस तों वध अंक प्राप्त करन वाले 1050 तों वध होनहार विद्यार्थियां दा सन्मान कीता। शिमकतसर साहिब विखे ब्राइट माइंड्स पंजाब 2026 प्रोग्राम तहत करवाए गए समारोह दौरान श्री बैंस ने कहा कि सिक्ख्या सारियां समाजिक चुनौतियां दा सब तों ढुकवां हल है। उन्होंने मापिया ने अपील की कि वह अपने बच्चों की सिक्ख्या को तरजीह देन ताजो पेशेवर बुलंदियों नूं छो के सूबे ते देश दा नां रोशन कर सकन। पंजाब दी जल स्रोत ते भूमि ते जल संभाल मंत्री श्री वरिंदर कुमार गोयल ने फाजिलका हल्के दे वासियां नूं करीब 45.74 करोड़ रुपए की लागत वाले 7 सिंचाई ते बुनियादी ढांचा प्रोजेक्टां दी सौगात दित्ती। उन्हां 33.51 करोड़ रुपए की लागत नाल मुकम्मल होए 3 प्रोजेक्टां दा उद्घाटन कीता। इस तों इलावा 8.89 करोड़ रुपए की लागत नाल सतलुज क्रीक ते बनन वाले VR ब्रिज दी उसारी ते नींह पत्थर रखण सने जमीन हेठली पाइपलाइन ते वर्टिकल ड्रेनेज सिस्टम राहीं सोलर पंपां नाल सेमग्रस जमीन सुधार ते 3.34 करोड़ रुपए ते 3 प्रोजेक्टां दा नींह पत्थर भी रख्या। मर्दां दी हॉकी विच बीती रात भारत ने FIH प्रो लीग दे लंडन पड़ा दे अपने पहले मैच विच पाकिस्तान नूं 4-3 नाल हरा दिता। भारत लई अभिषेक नैन नीलकांत शर्मा सुखजीत सिंह अते राजेंद्र सिंह ने गोल कीते। पाकिस्तान दे अहमद नदीम ने 3 गोल कीते। भारतीय टीम ने अपनी लीड बनाई रखी ते मैच अपने नां कीता। इस दे नाल ही प्रादेशिक खबरां खत्म होईयां। साडा एक्स हैंडल @AIRRN जलंधर। राष्ट्रीय खबरां दा अगला बुलेटिन तुसीं सुणोगे दोपहर बाद 1:40 ते। नमस्कार।
1: अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: प्रस्तुत है फिल्म संगीत, आनंद लिया जाए कुछ फिल्मी गानों का।

0: अभी आपने फिल्म संगीत का पहला गाना सुना सुखविंदर सिंह की आवाज़ में। इस गीत को लिखा जयदीप सहनी ने, संगीत था सलीम सुलेमान का और ये फिल्म थी रब ने बना दी जोड़ी।
1: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
1: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
2: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
1: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
2: अधिक जानकारी और

0: बुकिंग के लिए संपर्क करें
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
0: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
1: आकाशवाणी चंडीगढ़।
2: फिल्म संगीत में हम फिर आपके साथ हैं और अब बारी है अरिजीत सिंह के गाए एक गाने की। इसे लिखा है इरशाद कामिल ने, संगीतकार सोहेल सेन। ये फिल्म है गुंडे।

फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं विविध भारती चंडीगढ़ से एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। अपने रेडियो सेट के साथ साथ इस समय आप हमें हमारी ऐप न्यूज ऑन AIR और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग पर भी सुन रहे हैं। ये रहा फिल्म संगीत का आखिरी गाना।

अभी आपने अभिजीत और अलका याग्निक की आवाजों में टक्कर फिल्म से ये गीत सुना। माया गोविंद के बोल थे, संगीत अन्नू मलिक का, और यही था अब तक का फिल्म संगीत। आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर।

0: इतरा के चलना। अच्छा, और किसी ने लिखा है कि हमें तो काजोल याद आई देखकर। जी, ये देखने की बात है, सोचने की बात है कि हमें कब कौन कहाँ कैसे याद आता है। पर हमारे श्रोता लिख रहे हैं कुछ और कि मेरे दोनों लड़कियां और पत्नी जब कभी बाहर घूमने जाती हैं तो सलवार सूट और जीन्स पहनाकर ले जाती हैं बेटियां माँ को, क्योंकि घूमने फिरने में आसानी होती है, बस और ट्रेन में चढ़ने उतरने में आसानी होती है, हालांकि वो घर पर तो साड़ी ही पहनती हैं। और हमारे श्रोता बड़ी अच्छी बात लिखते हैं कि कभी कभी हम ओल्ड फैशन समझ कर ड्रेस अलमारी के कोने में रख देते हैं, जो बाद में कभी नए फैशन के रूप में लौटता है तो फिर हम उसे फिर से ड्राई क्लीन करा कर पहन लेते हैं। कितना बढ़िया आइडिया दिया है आपने वस्त्रों के फिर से उपयोग का। हमारे श्रोता लिख रहे हैं, आज का टॉपिक बड़ा अच्छा है, अगर हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक चले तो भाषा के साथ कपड़े बोली सब बचकूच बदला हुआ दिखाई देता है, फैशन बदलता है, लोगों की संस्कृति आराम और व्यक्तित्व को दर्शाता है। आजकल सस्टेनेबल फैशन यानी पर्यावरण के अनुकूल कपड़ों का चलन है, लेकिन फैशन सिर्फ महंगे कपड़े नहीं होना चाहिए बल्कि अपनी पसंद और बॉडी टाइप के हिसाब से कोई भी स्टाइल आप चुन सकते हैं। हमारे एक श्रोता ने पूछा, शर्मिला के जूड़े सबसे अलग थे, पता नहीं सच होते थे या विक पहनती थी, हालांकि उनके बाल तो बड़े दिखाई देते हैं पर कौन जाने उनके जूड़े असली थे या वो बिक पहनती थी, ये बात तो हमें भी नहीं पता। पर चलिए, पसंद तो सबकी अपनी अपनी है। तो अब हम चल रहे हैं अगले गीत की तरफ। इसके गीतकार का नाम बता दीजिएगा, इस गीत के गीतकार कौन है, फिल्म बॉबी से लिया गया ये गीत है। और दूसरा प्रश्न, जैसे मैं हमेशा दो प्रश्न आपको देती हूँ, दूसरा प्रश्न ये है कि आप घूमने तो गए होंगे, भारत की कई जगह पर घूमे भी होंगे, कहीं कश्मीर, कहीं मनाली या दक्षिण भारत में, या कहीं तो घूमे होंगे। जहाँ भी घूमने गए वहाँ पर सामान्यतः ऐसा होता है कि फोटोग्राफर कुछ कपड़े अपने पास रखते हैं, उन्हें आप ऊपर से पहनते हैं, फिर आपकी एक फ़ोटो खिंच जाती है और उसे यादों के तौर पर आप अपने पास सहेज कर रखते हैं। हुआ होगा ना, ऐसी कौन सी ड्रेस है जो आपने पहनी थी कभी और उसके साथ फोटो खिंचाई थी, भारत के या विदेश के कहीं भी आप गए हो घूमने के लिए और वहाँ की ड्रेस पहनकर फोटो खिंचाई हो आपने, आपके परिवार में किसी ने, तो जरूर साझा कीजिएगा और बताइए अगले गीत के गीतकार कौन है।
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम। देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप घर से निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ,

0: थाना पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: और आइए अब आपको लिए चलते हैं विविध भारती मुंबई हमारे अगले प्रोग्राम के लिए, जिसका नाम है सुरीला सफर।
2: याद आ रहा है, देखिए ये जो बात है ना, ये बात हमें हमारे सेंसेस से जोड़ती है कि हमें किसका क्या पसंद आ रहा है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि बंगाली सीनियर सिटीजन अपने हर वैवाहिक सांस्कृतिक फंक्शन में धोती कुर्ता पहनते हैं। जी बिल्कुल, और उसका उसी का प्रयोग कई सारी फिल्मों में भी किया गया है, इस बात को हम मानते हैं। चुन्नी बाबू को ये याद कर रही हैं, जगदीश श्रॉफ को उन धोती दुपट्टे के साथ में। हमारे श्रोता कहते हैं कि मिथुन चक्रवर्ती के कपड़ों की बहुत नकल करी है उन्होंने, टाइट पैंट, टाइट शर्ट, हील वाले शूज़ और उन्हीं की

हम सुन रहे थे बॉबी फिल्म का यह गीत, लता मंगेशकर शैलेंद्र सिंह की आवाज़ में, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ, और आप सबने सही पहचाना, आनंद बख्शी के बोल। अब एक रोचक जानकारी इस फिल्म को लेकर, इसकी ड्रेसेस को लेकर मिली कि इस फिल्म के जो कपड़े हैं, लुक्स हैं, उनको मुख्य रूप से राज कपूर ने खुद ने डिज़ाइन और स्टाइल किया था, पर इसमें इनका साथ करने वाले बिन रामानी, जिन्होंने वार्डरोब स्टाइल सजाई थी, सत्यवान और बी आर लक्ष्मण इसके टेलर थे और उन्होंने पूरे इन ड्रेसेस को बनाया था। कितना दिमाग और कितनी सोच लगती है एक फिल्म की एक ड्रेस को बनाने के लिए, ये भी अद्भुत कला है अपने आप में, और इस कला को भी हम सब याद रखते हैं। और जब हम याद रख ही रहे हैं तो हमें याद है कि हमने आपसे एक और प्रश्न पूछा था, और वो प्रश्न बड़ा प्यारा सा था, बड़ा रोचक सा था कि आपने कभी कोई ऐसी तस्वीर खिंचाई है क्या। तो हमारे श्रोताओं ने बड़े अच्छे अच्छे उत्तर दिए कि वो एक बार शिमला गई थी, बहनों के साथ फ़ोटो खिंचाई थी, वह उनके पास में है, कोई असम घूमने गया था तो फ़ोटो खिंचाई थी, उसे संभाल कर रखा है, कश्मीरी लिबास में 300 रुपये के फैशन के साथ रोजी रोटी भी चलती है और उन्होंने वहाँ जाकर फ़ोटो खिंचाई थी, क्या बात है। मणिपुर में भी फ़ोटो खिंचाई हमारे एक श्रोता ने, उनकी जेठानी, किसी की जेठानी कश्मीर गई थी तो वहाँ के कपड़े पहनकर उन्होंने फ़ोटो खिंचाई और पर्स वहीं भूल कर आ गई, जो कि उन्हें बाद में मिला नहीं, इस बात का जिक्र भी वो कर रही हैं। उसके साथ ही हमारे श्रोता बताते, बहू जापान गई थी तो वहाँ की पारंपरिक पोशाक किमोनो में फ़ोटो खिंचाई थी, वही पोशाक जो आशा पारेख ने सायोनारा वाले इस गीत में पहनी थी। इसके साथ ही हमारे श्रोता ने बहुत अच्छी जानकारी दी, वो कहते हैं बॉबी के इस गाने में अकार्डियन जो है वो स्वर्गीय सुमित मित्रा ने बजाया था। जी, बहुत रोचक जानकारी आपने दी है। हमारे श्रोता ने बताया कि छठी कक्षा में थे तब उन्होंने बॉबी देखी थी।

और श्रोता बता रहे हैं कि संदर्भ मुझे याद आता है, जब बॉबी पिक्चर लगी थी तो ये लोग ये नहीं पूछ रहे थे कि बॉबी देखी या नहीं, लोग ये पूछ रहे थे कितनी बार बॉबी फिल्म देखी। बिल्कुल सही बात है, हमारे श्रोता ने किसी ने कश्मीर में फ़ोटो खिंचाई है और किसी ने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, तो बताया बहुत सारी बातों को। उन्हें एक श्रोता लिखते हैं कि उन्हें सबसे अच्छा ड्रेस सैनिकों का लगता है, उन्हें देखते ही अपने आप हाथ सल्यूट करने लग जाते हैं। क्या बढ़िया बात है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि डल झील में उन्होंने फ़ोटो खिंचाई थी, और हमारी श्रोता बताती हैं बॉबी फिल्म का याना, इसकी ड्रेस मैंने और मेरी दीदी ने एक बार बनवाई थी। नोट बैंक की टॉप पहनते थे, स्काउट पहनते थे, और फ़ोटो भी उन्होंने इस बात को लेकर खिंचाई है। तो ये सारे हमारे श्रोताओं ने उत्तर दिए हैं, और इन श्रोताओं की इन उत्तरों के साथ में हम चल रहे हैं अगले गीत की तरफ। और हमारे श्रोता बता रहे हैं कि फैशन हर वक्त बदलता रहता है, और स्कूल कॉलेज भी में भी बहुत फैशनेबल रहे हैं, वो बड़े बाल रखते थे, स्टाइलिश कपड़े पहन के स्कूल जाते थे, कई बार स्कूल में गुरुजी से पिटाई भी होती थी। हाँ, वो दौर बड़ा अच्छा था जब गुरुजी पीटा करते थे, और हमारे गुरुजी तो कहते थे गुरुजी मारे धम्म धम्म विद्या आवे छम छम, शायद आती होगी इस बात से ऐसा हम मानकर चलते हैं। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि फैशन कभी पुराना हो नहीं सकता, फैशन एक शब्द है, और उसके साथ में उनका उन्होंने ब्लाउज़ की बड़ी अच्छी वो बताई है कि पहले पफ वाली बाह और जो दादी नानी पहनती थी वो वाले ब्लाउज़ अब फिर से आ गए हैं। हाँ, कॉलेज में पैरेलल पहनते थे, प्लाजो पहनते थे, अब वापस आ गए हैं। और रेखा की दो चोटी वाले बालों की स्टाइल बहुत लोकप्रिय है। जी, इतनी अच्छी बातें आप हमारे साथ साझा कर रहे हैं। अब एक बात और हमारे मन में आती है कि जो कपड़े होते हैं वो कभी कभी बड़ी तरीके से दिखा देते हैं, जब रंगमंच में आप होते हैं या फिल्मों में होते हैं तो कपड़े आपकी स्टाइल को बताते हैं कि अगला मूड क्या है। अब हम अगर अगली फिल्म का ये गाना ले लें तो इसमें जो कपड़े हैं उन कपड़ों को मनीष मल्होत्रा ने डिज़ाइन किया है, और उन्होंने पहले जो एक्ट्रेस है यानी हीरोइन जीत यानी करीना कपूर के कपड़ों को बड़ा बेफिक्री वाले कपड़ों में दिखाया है, और थोड़ी देर बाद जब उनका दिल टूट जाता है तो सलवार सूट में दिखाया है। कपड़े भी आपकी संजीदगी को दिखा देते हैं। वैसे ही अभिनेता आदित्य यानी शाहिद कपूर को भी पहले बड़े संजीदा कपड़ों में और बाद में बेफिक्री में दिखा दिया है। तो ये दोनों चीज़ें आपके मूड को भी यानी आपकी फिल्म की कहानी को भी दिखाते हैं, तो कपड़े कुछ इस तरह से दिखाते भी हैं। तो चलिए सुनते हैं अगला ये गीत, बताइए इसके गायक कलाकार कौन है। और एक बात और, सबसे सुकूनदायक वस्त्र कौन सा है जो पहनकर आप अपनी पूरी जिंदगी रह सकते हैं, सबसे सुकूनदायक वस्त्र आपका कौन सा है? अगर हमसे पूछा जाए या आपसे पूछा जाए, तो हमसे पूछा जाए तो हम कहेंगे हमें सलवार सूट में बड़ा आराम मिलता है, सुकून मिलता है। आपको ऐसा कौन सा वस्त्र है जिसमें आराम मिलता है, बताइएगा।

हम सुन रहे थे जब वी मेट फिल्म का यह गीत इरशाद कामिल के बोल प्रीतम के संगीत के साथ, और हमने आपसे पूछा किसके गायक कलाकार कौन है, आपने सही पहचाना उस्ताद राशिद खान। और इसके साथ हमारे श्रोताओं से हमने एक और प्रश्न पूछा था कि आपको ऐसा कौन सा वस्त्र है जो बड़ा कंफर्टेबल लगता है, बड़ा सुकूनदायक होता है तो वो आप पहनते हैं। तो हमारी श्रोता लिखती हैं कि उन्हें हल्के रंग की सूती साड़ी जो है वो उन्हें पसंद है। इसके साथ ही कोई लिखता है कि हाई हील वाले जूते, हीरो जूते पहनते थे वो उन्हें बहुत पसंद थे, उन्होंने मंगाए भी थे, जिप वाले जूते, हाँ एक चैन वाले जूते हुआ करते थे, अभी भी फैशन में है, लड़कियाँ पहना करती हैं उस फैशन को आजकल। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि उन्हें सुकून और आरामदायक जो है वो साड़ी ही लगती है और उनके ऊपर भी अच्छी लगती है। वैसे एक बात कही जाए तो भारतीय महिलाओं के ऊपर साड़ी बहुत अच्छी लगती है, सुंदरता, बड़ी सुंदरता के साथ दिखाई देते हैं। उसके साथ कई लोगों ने साड़ी को बोला, किसी ने कुर्ती प्लाजो को बोला। जब वी मेट में करीना कपूर ने पटियाला सूट पहना है जो देखते बनता है, जी बिल्कुल। कुछ हमारी एक और श्रोता लिखती है, कुछ कुछ होता मैं भी काजोल ने शुरू

डंगरी पहनी और बाद में खूबसूरत साड़ियाँ, मूड के मुताबिक उसको पहना गया था। जी बिल्कुल, यही तो बदलाव दिखाने का एक बड़ा अच्छा तरीका होता है। एक हमारे श्रोता लिखते हैं, ये बात तो कई लोगों ने लिखी कि सफ़ेद कुर्ता पजामा और बिल्कुल ढीला पहनने में बहुत सुकून होती है, पर गंदा भी तो बहुत होता है ना। पर ठीक है, सबकी अपनी पसंद है। लॉन्ग टी शर्ट और पटियाला वाला फैशन इससे ही आया था। हमारे कुछ श्रोताओं का ऐसा कहना है कि उनका कोई गीत सुनने में नहीं आया, तो मैं क्षमा चाहूँगी, सुनते जाइए, ये गीत भी तो अच्छे ही हैं, कभी कभी ऐसा भी होना अच्छा है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि उन्हें गाउन पहनना अच्छा लगता है, लेकिन किसी और के सामने जाना अच्छा नहीं लगता, गाउन उन्हें बड़ा कम्फर्टेबल लगता है। जी बिल्कुल, हल्का फुल्का सा वस्त्र होता है। कोई अपनी पत्नी के कपड़ों के बारे में बता रहा है कि उन्हें सलवार सूट पसंद हैं, और कोई अपने बारे में बता रहा है, कोई कह रहा है लुंगी अच्छी लगती है पहनने में, तो किसी ने बताया बनियान और वो पट्टे वाला हाफ पैंट जो होता है वो लोगों को पसंद आता है, किसी को सूती कुर्ती और लेगिंग पसंद है, तो किसी को एक लोअर टी शर्ट में, वो किसी भी फैशन में किसी भी कार्यक्रम में भी जा सकते हैं। तो ऐसी कई सारी चीज़ें लोग बता रहे हैं। हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि उनका विवाह जो है वो चित्तौड़गढ़ में हुआ था, ससुराल भी वहीं है, तो उनकी पत्नी के साथ चित्तौड़गढ़ गए थे और वहाँ बहुत सारी फ़ोटो खिंचाई थी जिसका उन्हें याद है। एक श्रोता लिखते हैं, हमारे एक समय था जब ग्राहक डिज़ाइन देखने के लिए फिल्म दिखाने के लिए आता था और कहता था ये वाली डिज़ाइन बना दो, यानी हमारे जो कपड़े सिलने वाले थे उनको फिल्में देखनी पड़ती होंगी उस समय पे, क्योंकि वो डिज़ाइन बनानी होती थी। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हमारे श्रोता लिखते हैं। ऋषि कपूर की स्वेटर और देवानंद की मफलर का फैशन लाकर छा गए थे। जी बिल्कुल, और देवानंद के तो कपड़ों पर बैन भी लगा था शायद, ऐसा कुछ किस्सा भी सुनने में आता है, शायद आपको भी पता हो, किसी को लोअर टी शर्ट में आराम मिलता है और किसी को शर्ट में, किसी को सलवार कुर्ता, किसी को कुछ, किसी को कुछ, हर किसी का अपना अलग विधान है कि उसे ये पसंद है। और अब हम चल रहे हैं आज की शाम के, आज के इस कार्यक्रम के कुछ अंतिम गीतों की तरफ, और ये अगला गीत आप सुनिए और बस बता दीजिए ये कौन सी फिल्म से है, और इस फिल्म के बारे में एक बड़ी रोचक सी जानकारी हमें कहीं से मिली थी, तो वो हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं कि इस फिल्म के लिए, चांदनी के लिए भी कपड़े जो बनाए थे भानु अथैया ने बनाए थे, और नीता लुल्ला ने भी इसमें बहुत मदद की थी उन कपड़ों को बनाने के लिए, और बड़ा स्टाइल फेमस हो गया था, मतलब वो बड़ी अच्छी साड़ियाँ थी और लोगों ने उस समय बहुत पहनी भी ये साड़ियाँ। तो चलिए सुनते हैं इस गीत को और बताइएगा ये इस गीत के संगीतकार कौन हैं, नाम पूरा लिखिएगा संगीतकार का।

और इसी के साथ आज का यह कार्यक्रम सुरीला सफर यहीं पर समाप्त होता है, परंतु हम आपके साथ वो साझा करना चाहेंगे जो आपने बताया है जी। हमने पूछा था कि इसके गीत संगीतकार कौन है, पंडित शिव कुमार शर्मा और पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, ये दोनों बातें आपने हमें बताई, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। और आज के दिन हमने बहुत सारी फैशन डिज़ाइन और इन सब की बात की। हमारे श्रोता ने बताया कि पहले तो लड़कियां पैसे भी देती थी कि जाकर आप यह फिल्म दिखाइए मास्टर जी और फिर वैसा कपड़ा बना दीजिए, तो ये इतनी अच्छी रोचक जानकारियाँ हमें मिली, उसके लिए आप सबका धन्यवाद। सदा मंगल हो, नमस्कार, प्रणाम, सदा खुश रहिए।

आज की त्रिवेणी में पड़ोसियों की चर्चा। वर्तमान समय में अधिकांश लोग अपने कामकाज और नौकरियों के कारण प्रायः एकल परिवारों में रहते हैं। यहाँ पति पत्नी और एक या दो बच्चों का परिवार होता है। सगे संबंधी दूसरे शहरों या गांवों में छूट जाते हैं। ऐसे में पड़ोसी ही सुख दुख के साथी होते हैं। वैसे भी ये सच है कि किसी भी बड़ी मुसीबत में पड़ोसी ही मदद के लिए सबसे पहले काम आते हैं। पड़ोसियों से हमें हमेशा मृदु व्यवहार और सहयोग का भाव बनाकर रखना चाहिए। अगर पड़ोसियों से अच्छा व्यवहार है तो जीवन की मुसीबतें बहुत आसान हो जाती हैं।

हम में से बहुत सारे लोग पढ़ाई लिखाई करने, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने अथवा दूसरे क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने के लिए किराए के मकान लेकर रहते हैं। ऐसे लोगों को पड़ोस में बहुत सजग रहना चाहिए। उन्हें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि वे यहाँ केवल अपना करियर बनाने के लिए आए हैं। उन्हें रास्ते से भटकाने के लिए पड़ोस में बहुत से आकर्षण मौजूद होते हैं।

रहता है। ऐसा नहीं है कि पड़ोसी केवल मुसीबत में ही काम आते हैं, वे हमारे किसी पार्टी या शादी समारोह में भी बड़े सहायक सिद्ध होते हैं। कई बार दोनों की छतों का उपयोग करके हम छोटी मोटी पार्टी के लिए एक अच्छा स्पेस निकाल सकते हैं। अच्छे पड़ोसी अपनी छत का उपयोग और कई रोचक कार्यों के लिए कर सकते हैं, जैसे

0: एक जानी माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तान पर सहअध्यक्ष के तौर पर अपनी स्थिति का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। ईरान में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी कर गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी। कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश और अचानक बाढ़ के बाद असम में हाई अलर्ट। हॉकी इंडिया ने अगले महीने ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सहअध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने सहअध्यक्ष के तौर पर पाकिस्तान के आचरण की आलोचना की। पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद के टिप्पणियों के जवाब में पी हरीश ने जम्मू कश्मीर पर भारत के लंबे समय से चले आ रहे रुख को दोहराया। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश

0: जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है।
1: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। ये हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है, ऐसी बातें कही गई। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
0: ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: भारतीय दूतावास ने कहा कि बदलते घटनाक्रमों के बावजूद भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचना चाहिए। बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। विश्वसनीय स्रोतों के जरिए स्थानीय घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रखने और स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया है। लोगों से दूतावास को अपने बारे में जानकारी देने की सलाह दी गई है। ताजा जानकारी और आगामी परामर्श के लिए दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार नजर बनाए रखने को कहा गया है। किसी भी तरह की सहायता के लिए दूतावास ने आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये नंबर है +98912810915। दूसरा नंबर है +98912810909। तीसरा नंबर +98912810902। और चौथा नंबर है +98993217935। इसके अलावा भारतीय नागरिक cons.tehran@mea.gov.in पर ईमेल के जरिए भी दूतावास से संपर्क कर सकते हैं। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिवेश के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि समान मूल्यों और आपसी विश्वास वाले देशों को और अधिक निकटता से मिलकर काम करना चाहिए। सियोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक के दौरान उन्होंने ये बात कही।
1: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बैठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 3 दिन की खाड़ी क्षेत्र की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसका उद्देश्य ईरान के साथ हुए नए संवाद और समझौते के बाद प्रमुख अरब सहयोगियों को विश्वास दिलाना है।
1: 4 महीने से जारी पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका ने ईरान के साथ नया समझौता किया है। श्री रूबियो कल देर रात अबू धाबी पहुंचे। उनका संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन में बातचीत का कार्यक्रम है। इस सप्ताह के अंत में वे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के अधिकारियों से मिलेंगे। इस दौरान वे क्षेत्रीय सहयोगियों को अमरीका और ईरान के बीच लागू अंतरिम शांति समझौते और संभावित अंतिम समझौते के ढांचे के बारे में जानकारी देंगे। यात्रा से पहले श्री रूबियो ने कहा कि उनकी यात्रा उद्देश्य ईरान और अमेरिका की बातचीत में खाड़ी देशों की राय को महत्व देना है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने टोल वसूली को अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया। सप्ताहांत में स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत सकारात्मक रही। हालांकि दोनों पक्षों ने बैठक के बारे में अलग अलग राय व्यक्त की है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय मुंद्रा बंदरगाह से 3000 किलोग्राम मादक पदार्थ आयात मामले से जुड़े धनशोधन मामले में दिल्ली के 5 स्थानों पर तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि ये तलाशी हरप्रीत सिंह तलवार, शम शुद्रुन और उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि मादक पदार्थ से प्राप्त धन का कथित तौर पर दिल्ली के नाइट क्लबों में निवेश किया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर कर्नाटक में उनके परिवार द्वारा संचालित एक ट्रस्ट को भूमि आवंटन से जुड़े कथित घोटाले में संलिप्त होने

0: का आरोप लगाया है। पार्टी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने आज नई दिल्ली में कहा कि वर्ष 2024 में कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड ने एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास के लिए ट्रस्ट को लगभग 5 एकड़ औद्योगिक भूमि आवंटित की थी। श्री भंडारी ने आरोप लगाया कि इन क्षेत्रों में कोई पूर्व अनुभव न होने के बावजूद ट्रस्ट को लगभग 100 करोड़ रुपए की अनुमानित कीमत की भूमि आवंटित की गई। भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमार स्वामी ने इस्पात उद्योग से भविष्य के विकास के लिए डिजिटलीकरण अपनाने को कहा है। आज नई दिल्ली में इस्पात क्षेत्र में डिजिटलीकरण पर आयोजित चिंतन शिविर में उन्होंने ये बात कही। इस्पात क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए श्री कुमार स्वामी ने कहा कि देश वर्ष 2018 से विश्व के दूसरे सबसे बड़े इस्पात उत्पादक के रूप में अपनी मजबूत स्थिति बनाए हुए है। आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने इस क्षण को ऐतिहासिक बताया और कहा कि ये परियोजना आवागमन को सुगम बनाएगी।
1: बहुत ही ऐतिहासिक मूवमेंट है, जब देश की राजधानी जहां से पूरी सरकार चलनी है, सेंट्रल विस्टा और यहां के कर्मचारी और यहां के जितने भी कार्यालयों में काम करने वाले सब लोग, उनको एक ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिए अष्टमी पूजन अथवा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आज ये की गई है। और ये जब कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद दिल्ली के बहुत से छोर आपस में जहां जहां मेट्रो लाइन चलती है उनको ये जोड़ेगी। अब ये जो लाइन है ये आर के आश्रम से लेकर के और इंद्रप्रस्थ तक, जिसके अंदर 9 स्टेशन्स है।
0: केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। श्री मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के ताराताला के पास निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने से 5 लोगों के मारे जाने की आशंका है। मलबे में कुछ और लोग फंसे हुए हैं। अग्निशमन और आपातकालीन सेवा कर्मी तथा पुलिस बल मौके पर पहुंच चुके हैं। बचाव अभियान जारी है। आज पासपोर्ट सेवा दिवस है। ये दिन 24 जून 1967 को पासपोर्ट अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण का क्रियान्वयन, चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत, नए पासपोर्ट सुरक्षा केंद्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना तथा रिकॉर्ड स्तर पर पासपोर्ट जारी करने से यात्रा सुगम हो रही है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सेवा, सुशासन और नागरिक सुविधा के संकल्प के साथ इंडिया पोस्ट द्वारा संचालित डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र के माध्यम से पासपोर्ट सेवाएं देश के सुदूर क्षेत्रों तक भी पहुंच रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज रानी दुर्गावती को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि रानी दुर्गावती एक वीर रानी और नारी शक्ति का प्रतीक थी। रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रानी दुर्गावती ने अपनी मातृभूमि और संस्कृति की रक्षा में अद्वितीय साहस और वीरता का परिचय दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में भी अगले 2 दिन इसी तरह का मौसम रह सकता है। असम, मेघालय, कर्नाटक के भीतरी भाग, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 29 तारीख तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया गया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में शनिवार तक तेज हवा के साथ वर्षा का अनुमान है। अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी जिले में तेज बारिश से असम के विभिन्न सीमावर्ती जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि असम में सभी संबंधित विभाग हाई अलर्ट पर हैं।
2: अरुणाचल प्रदेश में हुई भारी बारिश के बाद असम में संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी संभावित एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है। इसके परिणाम स्वरूप असम में धेमाजी, लखीमपुर, विश्वनाथ और सोनितपुर सहित निचले क्षेत्रों में नदियों के जलस्तर और प्रवाह की गति में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। अगले 1 से 2 दिनों में

0: बाढ़ का पानी और आगे के क्षेत्रों की ओर बढ़ सकता है। SDRF, NDRF और अन्य इमरजेंसी रेस्पॉन्स दलों को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं जिला प्रशासन को संवेदनशील क्षेत्रों पर कड़ी निगरानी रखने और आवश्यक एहतियाती उपाय सुनिश्चित करने को कहा गया है। निचले तथा बाढ़ संभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने, प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देश पालन करने, जलमग्न क्षेत्रों से दूर रहने तथा छोटी नाव से यात्रा न करने की सलाह दी गई है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: हॉकी इंडिया ने 5 से 14 जुलाई तक ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा कर दी है। भारतीय टीम नए कोच टिम वाइट के नेतृत्व में जूनियर एशिया कप सहित आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी के सिलसिले में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में 7 मैच खेलेगी। खैदम शिलेमा जानू टीम की कमान संभालेंगी, जबकि निधि और एंगल हर्षारानी मिंज गोलकीपर की जिम्मेवारी संभालेंगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज मैक्सिको में खेले गए ग्रुप के मैच में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बना ली। डैनियल मनोज के दूसरे हाफ में किए गए गोल की मदद से

0: इंग्लैंड में 7 मैच खेलेगी। खैदेम शिलेमा जानू टीम की कमान संभालेंगी जबकि निधि और एंगल हर्षाराने मिंज गोलकीपर की जिम्मेवारी संभालेंगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज मैक्सिको में खेले गए ग्रुप के मैच में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बना ली। डैनियल मुनोज के दूसरे हाफ में किए गए गोल की मदद से कोलंबिया ने लगातार दूसरी जीत हासिल करते हुए अगले दौर में प्रवेश किया। इससे पहले पुर्तगाल ने ह्यूस्टन में इसी ग्रुप के एक मैच में उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। 41 वर्षीय क्रिस्टियानो रोनाल्डो के 2 शानदार गोल की बदौलत पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान पर 5-0 से जीत दर्ज की। रोनाल्डो अब 6 अलग अलग विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 1% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 908 अंक की उछाल के साथ 77,109 पर, जबकि निफ्टी 241 अंक बढ़कर 24,065 पर कारोबार कर रहा था। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में स्थित ऐतिहासिक हेमिस मठ में आज उत्साह और श्रद्धा के साथ हेमिस उत्सव की शुरुआत हुई। 2 दिन के उत्सव में देश विदेश के हजारों श्रद्धालु, पर्यटक, संस्कृति प्रेमी और बौद्ध विद्वान शामिल हो रहे हैं। प्रत्येक वर्ष मनाया जाने वाला हेमिस उत्सव लद्दाख के सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों में से एक है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तान पर सहअध्यक्ष के तौर पर अपनी स्थिति का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। ईरान में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी कर गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी। कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश और अचानक बाढ़ के बाद असम में हाई अलर्ट। हॉकी इंडिया ने अगले महीने ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का यह पहला गीत, जो कि है उजाला फिल्म से। लता मंगेशकर की आवाज है, हसरत जयपुरी के बोल और शंकर जयकिशन का संगीत।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे में यह अगला गीत, जिसे लिया है फिल्म नागमणि से। गीता दत्त की आवाज है, प्रदीप के पुल हैं और अविनाश व्यास ने इसे संगीतबद्ध किया है।

बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई

0: पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: एक जानी माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया। एक सम्मोहक यात्रा।
3: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
2: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
3: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
2: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
3: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
2: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे।

हम सुन रहे थे शरारत फिल्म का यह गीत मोहम्मद रफी की आवाज में शैलेंद्र के पोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। आइए कार्यक्रम सदाबहार नगमे में सुनते हैं गूंज उठी शहनाई फिल्म से यह गीत लता मंगेशकर और साथियों की आवाज में भरत व्यास के बोल और वसंत देसाई के संगीत के साथ।

0: हम सुन रहे थे धूल का फूल फिल्म से यह गीत आशा भोसले महेंद्र कपूर की आवाज में, साहिल लुधियानवी के बोल और एन दत्ता ने इसे संगीतबद्ध किया।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम है सदाबहार नगमे।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने क्यों लोग क्या करते हैं।
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सदाबहार नगमे का अंतिम गीत आइए सुनते हैं संतान फिल्म से लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजों में हसरत जयपुरी के बोल और दत्तराम के संगीत के साथ और इसी के साथ कार्यक्रम सदाबहार नगमे समाप्त होता है आज्ञा दीजिए सदा सुखी रहिए नमस्कार।

0: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम सखी सहेली बस कुछ ही पलों में।
1: श्रोताओं, मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर अभी भी खुलकर बात नहीं होती। और दूसरी ओर आप समाज में, सड़कों पर या कहीं और देखें तो वायलेंस दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हम में संयम लगातार कम होता जा रहा है। और अगर आप ऐसे स्थान पर हैं जहां से आप दूसरों की मदद कर सकते हैं पर आप मदद करना नहीं चाहते, तो क्या कहेंगे आप? यही ना कि बड़ी संख्या में हम लोग मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं। बहुतायत में कुछ ना कुछ केमिकल लोचा तो है। हमें किस प्रकार से लेनी चाहिए मेंटल हेल्थ से जुड़ी गाइडेंस, किन किन बातों का रखना होगा ध्यान, इन सब पर चर्चा के लिए आज दोपहर 3:30 से 4 बजे तक FM लाइफलाइन के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे डॉक्टर अखिलेश शर्मा, एडिशनल प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्री, PGI चंडीगढ़। हमारे फोन नंबर्स हैं 2660615, 2660617, 2660619 और STD कोड है 0172। हमें आपकी कॉल्स का इंतजार रहेगा।

0: कार्यक्रम सखी सहेली में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी और मेरे साथ हैं
1: सोनाली पाठक। तो आप सभी को सोनाली पाठक का
0: और मंदाकिनी जोशी का नमस्कार। क्या कर रही हो सोनाली?
1: बैठी हुई हूं आपके सामने बैठी हूं।
0: भाई मेरे सामने तो बैठी हो, इन दिनों क्या कर रही हो? मैंने ये जानना चाहा क्योंकि बहुत दिनों बाद हमारी मुलाकात हुई है।
1: बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है और बहुत खूबसूरती के साथ आप सामने बैठी हुई हैं, तो इतना अच्छा लग रहा है, एक सुखद अनुभूति मिल रही है।
0: अरे वाह, यही तो होना चाहिए कि जब दो दिल मिलते हैं, दो इंसान मिलते हैं, दो दिमाग मिलते हैं, तो सुखद अनुभव होना चाहिए। और ये हमारी जिंदगी में होता भी है सोनाली। हमारे श्रोता भी इस बात को कहते हैं, जब हम अपने श्रोताओं के लिए आते हैं, उनसे कार्यक्रम के जरिए मिलते हैं, तो कितना सुखद एहसास होता है हमें।
1: और हम है ना कल्पनाओं के माध्यम से महसूस भी करते हैं ना मंदाकिनी जी।
0: हाँ?
1: कि हमारे बहुत सारी सखियां बैठी हुई होगी, श्रोतागण बैठे हुए होंगे और वो क्या कर रहे होंगे,
0: हमें सुन रहे होंगे,
1: हमें सुन रहे हैं,
0: कुछ अचार भी डाल रहे हैं।
1: हाँ, हमारी कुछ सखियां जो है अचार भी डाल रही होगी कि चलिए इधर रेडियो भी ऑन है किचन में और इधर अचार बन रहा है, क्योंकि इन दिनों तो घर में अचार और मुरब्बे बनते ही हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, और ये बहुत जरूरी भी होता है घर के लिए, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं या हमारे घर की जो महिलाएं हैं, पुरुष भी जब ऑफिस जाते हैं, तो अचार और परौठा एक ऐसा भोजन है जो लगभग हर लोग लेके जाते ही अपने टिफिन
1: में। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि सब्जी थोड़ी सी फीकी बन गई है, तो उसमें जो अचार है ना वो उसका स्वाद बहुत बढ़ा देता है खाने का।
0: हाँ, और कई बार ये भी होता है कि जब घर की गृहिणियां सब्जी बनाने में थोड़ी सी आलस बरत लेती है ना, तो दाल और अचार से काम हमारे घर के पुरुष चला लेते हैं, पता
1: या
0: है?
1: फिर कभी सब्जी कम पड़ गई तब भी अचार से काम चला सकते हैं।
0: और या प्याज का सलाद खाना हो ना, उसमें भी अचार डालकर
1: खा सकते हैं,
0: मस्त।
1: और साथ में वो मीठे मीठे मुरब्बे तो बहुत है, उसमें आम का मुरब्बा बनता है, फिर करौंदे का मुरब्बा बनता है, आंवले का मुरब्बा बनता है, अलग अलग तरह के मुरब्बे बनते हैं जो भी हर घर की शान होती
0: शान
1: है।
0: होते तो अभी थोड़ी देर बाद जब हम व्यंजनों पर आएंगे ना, तो हमारे श्रोता या हमारी सखियां और सखा तब तक आचार और मुरब्बे पर अपनी जो है रेसिपी लिख कर भेज चुके होंगे
1: कि आपके घर में किस तरह का मुरब्बा या किस तरह का अचार बनता है। कोई मीठा अचार बनाते हैं, कोई तीखा बनाते हैं, कोई कद्दूकस करके अचार बनाते हैं, तो कौन से तरह का अचार आपके घर में पसंद किया जाता है, उस पर हमें लिखकर भेजिए।
0: बिल्कुल। और इसके अलावा हमारे क्या और विषय हैं आज के?
1: शब्द हमारा विचार आपके, इसमें विषय है संयम।
0: संयम
1: इसे कहना बहुत आसान है और उसे अपनाना बहुत ही मुश्किल
0: है। बहुत मुश्किल है। और वैसे हमारे श्रोताओं ने संयम पर बहुत कुछ लिखकर भेजा भी है, लेकिन हम तो ये जानना चाहते हैं सोनाली हमारी सखाओं से, हमारी सखियों से, कि जब आपके जीवन में संयम बरतने की बारी आई तो आपने कहां कहां संयम खो दिया था
1: या फिर झुंझला उठे।
0: वही बात कि मसलन आपको बाजार जाना है, किसी पार्टी में जाना है, और आपकी धर्मपत्नी ने तैयार होने में थोड़ा सा ज्यादा समय ले लिया और आप झुंझला गए,
1: संयम टूट गया।
0: बिल्कुल। या फिर ट्रैफिक में जब आप
1: फंस गए हो और सामने वाली आपको पता ही नहीं है कि सामने की यानी दो गाड़ियां छोड़ के उसके आगे की गाड़ी बंद पड़ गई है और आप जोर जोर से हॉर्न देते जा रहे हैं कि ये क्यों नहीं चला रहा है, क्यों नहीं चला रहा है, क्या हो रहा है।
0: और दुनिया भर की बातें हमारे मन से निकलती है उस वक्त, है ना, जब हम फंस जाते हैं तो हम धैर्य खो देते हैं, संयम खो देते हैं ना। और भी बहुत से ऐसे विषय हैं जहां हम अपना आपा खो देते हैं, तो हमारे श्रोताओं से हम चाहते हैं वो लिखें। संयम क्या है? हां, संयम तो सबको पता है क्या है, लेकिन संयम की डेफिनेशन नहीं लिखनी है, हमें ये बताना है कि हमने जिंदगी में कब कब संयम रखा और ये कितना काम आया
1: और कब कब खो दिया संयम,
0: वो तो बताना ही है, क्योंकि इसकी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों
1: भी
0: है ना।
1: जी। और साड़ियों का संसार, इसमें हम इलकल साड़ी कर्नाटक के बारे में जानकारी देंगे और हमारे बहुत सारे कुछ श्रोताओं ने लिखकर भी भेजी है इस बारे में जानकारी।
0: बहुत अच्छी साड़ी होती है इलकल साड़ी,
1: बहुत नरम मुलायम, बहुत सुंदर।
0: तो सोनाली इस बार हम जब बाजार जाएंगे ना तो ये साड़ी खरीद कर लाएंगे।
1: बिल्कुल खरीदेंगे, और इतने सुंदर कलर होते हैं इसकी इलकल साड़ी के,
0: क्या बात है। तो और देखिए, सोशल मीडिया पर वाद विवाद और समय की बर्बादी हम बहुत करते हैं,
1: बहुत ही ज्यादा। यानी हमने सोशल मीडिया ऐप खोले कि उसमें कोई एक विषय पे या कोई एक रील पे इतने लोग लिखते हैं, उसमें घंटों बाद, और फिर लोग वो मैसेज भी पढ़ते हैं किसने क्या लिखा, किसने क्या लिखा, उस पे भी 250-300 हजारों के लाइक्स होते हैं। तो ये समय की बर्बादी ही है।
0: बिल्कुल, मिलता कुछ नहीं है, है ना, लेकिन हम अपने विचार वहां थोप देते हैं। और अनावश्यक कई बार क्या होता है, साधारण सी न्यूज होती है उसको हम बहुत बड़ी बना देते हैं और बहुत ज्यादा सेंसिटिव बना देते हैं, या फिर कोई बहुत बहुत ही

0: सटीक घटना हो गई है किसी की जिंदगी में, उस पर हम अपने विचार अनाप शनाप थोप देते हैं।
1: और कभी कभी ऐसा होता है मंदाकिनी जी, आपस में लड़ाई भी हो जाती है लोगों की, ये तुमने ऐसे क्यों लिखा, तुमने ऐसे क्यों बोला, ये तो ऐसा है वैसा है, और उसमें हमारा बहुत सारा वक्त,
0: समय, और सोचिए दिमागी हालत कैसी हो जाती है उसके बाद।
1: अगर हमें क्रोध आ गया तो हम खुद का बहुत नुकसान कर लेते हैं।
0: बिल्कुल, तो सोशल मीडिया पे लिखते वक्त पहले तो हमें खुद ही सोच लेना चाहिए कि हम लिख क्या रहे हैं, फिर ये भी उम्मीद कर लेनी चाहिए कि किस तरह के विचार आने वाले हैं। इन सब में अपना समय बर्बाद करने की बजाय हम कुछ क्रिएटिव लिखें। हाँ, कुछ मुद्दों पर आप आवाज उठाएं, लेकिन उस आवाज का असर दूर तक होना चाहिए।
1: और बस मैसेज किया और छोड़ दिया, उसके लिए पूरा दिन बर्बाद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है
0: कि किसने क्या लिखा और किसने लाइक किया किसने नहीं किया। हम नाराज हो जाते हैं, पर अब हमारे श्रोता नाराज होने वाले हैं अगर हमने गाना नहीं सुनाया।
1: सुनवा देते हैं।

0: तो चलिए दरिया में फेंक दी हमने चाबी, पर हमने अपनी अलमारी की चाबी संभाल के रखना है जिसमें बहुत सारी साड़ियां होती
1: हैं। हाँ, वही तो मैं कहने वाली थी कि दरिया में चाबी फेंक दोगे तो हम अपनी साड़ियां और अपने कपड़े कैसे निकालेंगे भाई।
0: भाई हमारी जो अलमारी होती है उसमें अलग अलग तरह की अलग अलग प्रांत की साड़ियां होती है। तो कर्नाटक की साड़ी इलकल अगर आपने नहीं खरीदी है तो आपको जरूर
1: खरीदनी पड़ेगी, है
0: ना? बहुत सुंदर साड़ियां होती है। और भारत की संस्कृति में साड़ियों का वैसे विशेष स्थान होता है। हर प्रदेश की साड़ी अपने रंग बुनाई और परंपरा के कारण अपनी अलग पहचान रखती है, और इन्हीं में से एक है इलकल साड़ी, जो कर्नाटक राज्य की प्रसिद्ध पारंपरिक हथकरघा साड़ी है। ये साड़ी अपनी सुंदर बनावट, पारंपरिक रंगों और अनोखी बुनाई के लिए जानी जाती है।
1: हाँ बिल्कुल सोनाली, और इलकल साड़ी का जो संबंध है वो कर्नाटक के बागलकोट जिले के इलकल नगर से है, और इसी स्थान के नाम पर इसका नाम इलकल साड़ी पड़ा। और ये कर्नाटक की ग्रामीण संस्कृति और हथकरघा परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
0: और इलकल में साड़ी बुनने की परंपरा कई पीढ़ियों से चली आ रही है। स्थानीय बुनकर परिवारों ने इस कला को वर्षों की मेहनत और अनुभव से जीवित रखा है। पहले ये साड़ियां विशेष रूप से महिलाओं के पारंपरिक पहनावे का हिस्सा थी, लेकिन आज देश विदेश में भी इनकी मांग
1: हो गई है। बिल्कुल सही कहा, और इलकल साड़ी की सबसे बड़ी पहचान है इसकी अनोखी बुनाई तकनीक। इसमें साड़ी के जो मुख्य भाग है, बॉर्डर है और पल्लू को एक विशेष तरीके से तैयार किया जाता है, और पारंपरिक रूप से इसमें टोपे देनी तकनीक का उपयोग किया जाता है जो इसे अन्य साड़ियों से अलग बनाती है।
0: और पारंपरिक इलकल साड़ियों में सूती और रेशमी धागों का सुंदर मेल देखने को मिलता है। साड़ी का मुख्य भाग अक्सर सूती धागों से और पल्लू और बॉर्डर रेशमी धागों से बनाया जाता है, और इसकी हल्की और आरामदायक बनावट इसे रोजमर्रा के पहनावे के लिए भी उपयुक्त बनाती है।
1: हाँ बिल्कुल, और इलकल साड़ियों में लाल रंग मिलता है, हरा है, नीला है, बैंगनी है और मरून जैसे पारंपरिक रंग जो है बहुत ज्यादा लोकप्रिय है, और इसके पल्लू पर सुंदर धारियां और पारंपरिक आकृतियां भी बनाई जाती हैं। बॉर्डर पर विशेष डिजाइन इसकी पहचान बनाते हैं, और कई साड़ियों में मंदिर कला या ज्यामितीय पैटर्न की झलक भी देखने को मिलती है।
0: और एक इलकल साड़ी केवल एक कपड़ा नहीं है मंदाकिनी जी, बल्कि बुनकरों की कला, धैर्य और मेहनत का नाम होती है। हथकरघे पर बैठकर बुनकर धागों को जोड़कर एक सुंदर कलाकृति तैयार करते हैं, और इस काम में अनेक बुनकर परिवारों की आजीविका भी जुड़ी हुई है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और इलकल साड़ी जो है कर्नाटक की एक पहचान है और उसकी परंपरा का प्रतीक है। विवाह के अवसर हो, त्योहार हो या विशेष अवसर हो, इसमें पहनने की परंपरा रही है। और ये साड़ी जो है भारतीय हस्तशिल्प की सुंदरता और सादगी को भी दर्शाती है।
0: और आज इलकल साड़ी पारंपरिक रूप से कई नए डिजाइनों में भी उपलब्ध है। आधुनिक रंगों और नए पैटर्न के कारण युवा पीढ़ी में भी इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है, और ये भारतीय हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है, ताकि जो हमारे ग्रामीण तबके के लोग हैं उन्हें उनकी जो है
0: घर चल सके,
1: उनको एक आजीविका का साधन मिल सके। और इलकल साड़ी केवल पहनने का वस्त्र नहीं, जैसा अभी आपने कहा था, ये कर्नाटक की मिट्टी, वहाँ की संस्कृति और बुनकरों के कौशल की कहानी मानी जाती है, और इसके हर धागे में सोनाली परंपरा की गर्माहट है और कलाकारों के हाथों की मेहनत छिपी होती है। और ये भारतीय हथकरघा विरासत का एक सुंदर उदाहरण है जिसे सहेजना हमारी सांस्कृतिक जिम्मेदारी है।
0: ये बिल्कुल हमें जिम्मेदारी हम महिलाओं को उठाना चाहिए कि जब भी कभी कर्नाटक घूमने गए आप तो आपको इलकल साड़ी जरूर खरीदना चाहिए। और क्या होता है ना मंदाकिनी जी, हम साड़ियां तो खरीद ले आते हैं,

0: लेकिन उसे पहनते नहीं है। तो साड़ियों को पहनना भी उतना ही जरूरी है कि
1: बिल्कुल।
0: कोई भी त्योहार हो, उत्सव हो या फिर कोई पार्टी हो, तो साड़ियां जरूर महिलाओं को पहनना चाहिए। अब क्या होता है कि महिलाओं का ऐसा लगता है कि भाई वक्त बहुत
1: ज्यादा लगता है,
0: पर थोड़ी तैयारी हमने थोड़ी 1-2 घंटे पहले तैयारी करके रख ली कि पहले से हमने साड़ी अच्छे से प्रेस कर ली, ब्लाउज प्रेस कर लिया, उसके जो उसमें पहनने वाले जो गहने वहने सब निकाल के रखे, तो हम आराम से पहन के जा सकते।
1: और जिनको साड़ी पहनने का अभ्यास है तो वो बहुत जल्दी पहन लेते हैं, कुछ बहनों को अभ्यास कम होता है, तो सीखा भी जा सकता है।
0: और आजकल तो सिलवा भी सकते हैं हम साड़ियाँ, यानी आप उसमें बिल्कुल एक हुक लगाना है और पल्लू भी उसमें सिला हुआ ही होता है, तो बिल्कुल जितना समय हमें सूट पहनने में लगता है उतने
1: ही समय
0: में साड़ियां भी पहन
1: उसी तरह से पहना भी जाता है। लेकिन वो खुद जब पहना जाता है ना सोनाली, जब खुद प्लीट्स लगाई जाती है और पल्लू को सजाया जाता है ना, उसका मजा कुछ
0: उसकी
1: और
0: बात
1: होता
0: कुछ और होती है ना।
1: चलिए तो गीत सुन ले,
0: सुनते हैं गीत।

0: हाँ तो सोनाली, हम बात कर रहे थे कि सोशल मीडिया पर हम इतने बिजी हो जाते हैं कि दैनिक जीवन में क्या कुछ करना है इस पर ध्यान हमारा थोड़ा कम हो जाता है और हम सोशल मीडिया की बहसों में उलझे रहते हैं।
1: और हमारी जो सखी है, हमने पूछा था ना कि क्या कर रहे हैं मंदाकिनी जी, तो हमारी एक सखी ने कहा कि हम अचार नहीं बना रहे, हम प्रेस करते हुए प्रोग्राम सुन रहे हैं। और एक साथी लिखते हैं कि सोशल मीडिया पर वाद विवाद हमें पसंद नहीं, हम तो विविध भारती के पेज पर श्रोताओं के अच्छे विचारों को पढ़ते हैं जिससे जानकारी भी मिलती है और आनंद भी आता
0: क्या
1: है।
0: बात है, क्या बात है, छा गया, बहुत अच्छी बात आपने कही, सही बात है।
1: तो ऐसी जब
0: बेतुकी बहसों में पढ़ने से अच्छा है कि हम कुछ सार्थक सुने। और विविध भारती एक ऐसा उनके लिए प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सब कुछ सार्थक होता है, कोई वाद विवाद नहीं,
1: और मनोरंजन के साथ में ज्ञानवर्धन भी होता है,
0: एक पन दो का है ना। तो आज हम सोशल मीडिया के वाद विवाद पर, समय की बर्बादी पर बात करने वाले हैं, क्योंकि सोशल मीडिया जो है सोनाली, हमारे जीवन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है, महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। और इसके माध्यम से हम दुनिया भर की जानकारी है, समाचार और विचारों को तुरंत जान भी लेते हैं, जुड़ भी जाते हैं, जरूरी भी है, और लोगों को अपनी प्रतिभा को और विचार को व्यक्त करने का ये अवसर भी देता है, मौका भी देता है।
1: मंदाकिनी जी, ऐसा होता है कि विचारों में अंतर होना बहुत स्वाभाविक सी बात है। हर व्यक्ति की सोच, अनुभव और दृष्टिकोण अलग अलग होता है, अलग अलग विचार समाज की सुंदरता है, लेकिन उन्हें सम्मान के साथ स्वीकारना उतना ही आवश्यक है।
0: हाँ, एक दूसरे के विचारों का सम्मान करना चाहिए, कोई किस विचारधारा का हो सकता है, कोई किसी विचारधारा का, हम अपनी विचारधारा उस पर थोपे नहीं। और विचारों में अपने का अंतर होना स्वाभाविक है, लेकिन छोटी छोटी बातों से जो बड़े विवाद होते हैं उनसे भी हमें बचना चाहिए। कई बार क्या होता है, किसी पोस्ट पर, किसी फोटो पर, वीडियो पर या समाचार पर एक छोटी सी टिप्पणी से बहस शुरू हो जाती है और वो बहस इतनी लंबी हो जाती है कि व्यक्तिगत हो जाती है ये चीजें, और एक दूसरे को हम भला बुरा कहने लग जाते हैं, आरोप देने लग जाते हैं।
1: और एक बात है ना मंदाकिनी जी, कि जो शब्द होते हैं ना उसमें भावनाएं नहीं होती है। अब जैसे मैंने आपको ऐसे ही कोई बात हंसते हंसते बोल दी तो आपको बुरा नहीं लगेगा, पर वही बात जब मैं मैसेज के रूप से मैं आपको लिखूंगी तो आपको बहुत ज्यादा बुरा लग सकता है कि इन्होंने ऐसे कैसे लिख दिया।
0: हाँ, हाँ।
1: तो लिखना नहीं, अगर आपको बोलना भी है तो कोई बात आप बोल कर लिखिए, ना कर लिखिए। और जब हम ये लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, तो इससे बहुत ज्यादा समय की भी बर्बादी होती है। तो हम ये समय जो होता है ना बहुत अनमोल होता है, तो सोशल मीडिया पर बेवजह बहस करते करते लोगों को पता ही नहीं चलता कि कितना समय व्यर्थ हो गया। समय है जो परिवार, शिक्षा, काम, स्वास्थ्य और स्वयं के विकास में जो लगाया जा सकता है वो हम बिल्कुल पूरे टाइम बर्बाद कर देती है।
0: और इससे क्या होता है सोनाली, हमारी मानसिक स्थिति बिगड़ जाती
1: है, बहुत ज्यादा बिगड़ती है।
0: हमें शांति चाहिए, मानसिक शांति की जरूरत है ना आजकल, बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन हम मानसिक रूप से बीमार से हो जाते हैं, क्योंकि लगातार जो है हम इतनी नकारात्मक चीजें पढ़ते हैं, चर्चाएं पढ़ते हैं, इतना विवाद उसमें देखते हैं, तो मन में तनाव और बेचैनी तो आएगी ही। और हम भी अपनी बात लिखते हैं, कई बार हमें भी गुस्सा आ जाता है, हम भी उसे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने लग जाते हैं। तो सोचिए, हमें लगता है अच्छा मुझे हरा दिया, ये बात मैं ये लिख देती हूँ,
1: चलिए ये तो मेरी बात मैं लिख कर ही रहूंगा, रहूंगी, है ना।
0: तो ये जब चीजें आती हैं तो आप अच्छी सोच और सकारात्मक ऊर्जा की जगह क्रोध और निराशा से घिरने लगते हैं
1: और रिश्तों में दूरी आ जाती है। जहाँ गुस्सा है तो वहाँ पर रिश्तों में दूरी बहुत ही स्वाभाविक सी बात है। और यह ऑनलाइन विचारों का मतभेद व्यक्तिगत संबंधों को भी प्रभावित कर देता है। हमें याद रखना चाहिए कि रिश्ते बहस जीतने से नहीं बल्कि समझ और सम्मान से मजबूत होते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। और एक बात और है कि हम हर विषय पर अपनी टिप्पणी पर अपनी बात कहना बहुत जरूरी समझते हैं या अपनी प्रतिक्रिया दे देते हैं तुरंत, ये बहुत गलत आदत है। आपको तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचना चाहिए,
1: थोड़ा सोचे समझे, संयम से काम।
0: वो संयम यहाँ काम आता है कि हमें क्या कहना है। समझदारी इसी में होती है सोनाली, कि कौन सी बात महत्वपूर्ण है जिस पर हम अपनी राय दें, या समय की बर्बादी तो नहीं है, हम किस से बात कर रहे हैं और क्यों बात कर रहे हैं, ये सब भी हमें समझना होगा।
1: और मंदाकिनी जी, एक और बात है, इतने ज्यादा अपशब्दों का इस्तेमाल होता है कि यानी घृणा मन में उत्पन्न होने लगती है, बहुत कड़वे, बहुत गंदे, बहुत भद्दे, अभद्र भाषा का बहुत
0: इस्तेमाल होने लगता है।

0: होने लगता है, तो वो एक गलत है। वो क्या है, एक को देख के दूसरा भी उसी तरह
1: जी,
0: की
1: उसे
0: का।
1: आप देखिए ना, समाज में कितना गलत संदेश जाता है। हमारे बच्चे जब इसे पढ़ते हैं तो वो भी यही भाषा सीख रहे हैं, उनके मन में भी वो सम्मान और आदर नहीं होता। कई बार स्त्रियों की फोटो होती है, लोग उस पर अभद्र टिप्पणियां कर रहे होते हैं, तो जो बच्चा है वो भी यही देख रहा होता है, पढ़ रहा होता है, उसे भी लगता है कि ये सब आम बात है और ऐसा कर देना चाहिए। बड़ा होकर वो भी उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करने लगता है।
0: सोशल मीडिया के इतने फायदे हैं कि उसका उपयोग हमें ज्ञान बढ़ाने के लिए, अच्छे विचार फैलाने के लिए, नई चीजें सीखने के लिए और समाज में जागरूकता लाने के लिए किया जा सकता है, पर हो रहा है उल्टा।
1: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये विवाद का मंच नहीं है, संवाद का माध्यम है। आप संवाद करिए, समय का मूल्य समझिए, समय जीवन की जैसा कि सबसे कीमती संपत्ति है, इसको आप जाने, और जो समय एक बार चला जाता है वो वापस नहीं आता, ये हम सभी जानते हैं। तो आप सोशल मीडिया में लिखिए, आप लोग लिखते हैं लगातार, लेखक हैं, बहुत अच्छी बातें लिखते हैं, इतनी अच्छी जानकारियां देते हैं लोग, और आप अपनी बनाइए एक ऐसी जहां पर आप अपनी बात कह रहे हैं, अपने मन की बात, और फिर लोगों के विचार आमंत्रित करें, तो अपनी ऊर्जा उन कामों में लगाएं जो आपके

0: सबसे कीमती कीमती संपत्ति है, इसको आप
1: जी
0: जाने, और जो समय एक बार चला जाता है वो वापस नहीं आता, ये हम सभी जानते हैं। तो आप सोशल मीडिया में लिखिए, आप लोग लिखते हैं लगातार, लेखक हैं, बहुत अच्छी बातें लिखते हैं, इतनी अच्छी जानकारियां देते हैं लोग, और आप अपनी बनाइए एक ऐसी जहां पर आप अपनी बात कह रहे हैं, अपने मन की बात, और फिर लोगों के विचार आमंत्रित करें, तो अपनी ऊर्जा उन कामों में लगाएं जो आपके जीवन को, आपकी भावनाओं को, आपके दिमाग को बेहतर बनाती है।
1: यानी सोशल मीडिया स्वयं अच्छा या बुरा नहीं, उसका उपयोग हमारी सोच पर निर्भर करता है। यदि हम हर छोटी बात को विवाद बनाने के बजाय समझदारी और संयम से काम ले, तो यही माध्यम ज्ञान, जुड़ाव और सकारात्मक बदलाव का साधन भी बन सकता है।
0: बिल्कुल, बहुत ज्ञान है। आप जब सोशल मीडिया पे जाते हैं तो नई नई जानकारियां, हमें अच्छी अच्छी जानकारियां भी मिलती हैं। हम उस पर अगर अपना ध्यान लगाते हैं तो यकीनन आपको बहुत सारी जानकारी पढ़ने को मिलती है, बहुत ज्यादा ज्ञान आपको मिलता है।
1: पुराना जमाना याद कीजिए ना, जब सोशल मीडिया नहीं था तो हमें कितनी सारी किताबों को रेफर करना पड़ता था कि इस किताब में इस लेखक ने इतनी अच्छी बात लिखी, उस किताब में
0: लाइब्रेरी में जाना होता था, लाइब्रेरी में बैठकर पढ़नी पड़ती थी किताब।
1: तो एक क्लिक पर इतनी सारी यानी ज्ञान का भंडार खुला है,
0: बैठे हुए मिल जाता है। और मुझे तो ये भी याद है सोनाली कि कई बार हमें ऐसे टॉपिक्स पर संवाद लिखने होते थे स्कूल कॉलेज में, कि हमें अपने पास या अपने माता पिता के साथ साथ पड़ोसी लोगों के पास भी जाकर कई बार विचार जानने पड़ते थे कि अंकल आप इस विषय के हैं, हमें क्या इस पर कुछ लिखा पाएंगे, है ना। तो ये सब बातें भी हमारे जीवन में हुआ करती थी जब सोशल मीडिया नहीं था। आज तो सब कुछ आपके पास है, तो उसका सदुपयोग करना,
1: उसका हमें सदुपयोग करना चाहिए कि भाई जो अच्छा है वो अच्छा अच्छा है, नहीं जो जो अथाह महासागर है इसमें के हीरे मोती हमें चुनना है, ना कि उसकी जो गंदी चीजें या गलत बातें उसे हमें अनदेखा करना है।
0: इसका मतलब ये नहीं हुआ सोनाली कि हम वाद विवाद से बचें, लेकिन अच्छी बातों पर वाद विवाद हो, सार्थक, उसका अंत सार्थक होना चाहिए,
1: और उसमें बहुत ज्यादा समय की बर्बादी
0: नहीं करनी चाहिए, है ना। इसलिए इससे जुड़े लेकिन सार्थक कामों के लिए। और अब हम एक छोटा सा
1: ब्रेक लेते हैं।

0: ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर है, कार्यक्रम है सखी सहेली और मंदाकिनी जी गाना सुनवाते हैं श्रोताओं को, उसके बाद में फिर हम श्रोताओं के कमेंट्स भी लेंगे।
1: बिल्कुल सही कहा सोनाली, पहले सुन लेते हैं ये गीत।

0: सोना, मेरे सामने भी सोना ही बैठी है सोनाली के रूप में।
1: चलिए हमारे एक साथी लिखते हैं, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका उपयोग बेहुदा चीजों के लिए ज्यादा हो रहा है, मसलन हास्य व्यंग के फूहड़ वीडियो बनाना, फेक न्यूज को वायरल करना, बेसिर पैर की ब्लॉगिंग करना वगैरह। आज के समय की सोशल मीडिया ऐसी बीमारी बन गया है जिससे युवा पीढ़ी सबसे ज्यादा ग्रस्त है। सिर्फ वाद विवाद ही नहीं, सोशल मीडिया के यूज ने हमारे बहुमूल्य समय को भी नष्ट कर दिया है।
0: बिल्कुल आपने सही कहा है। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि सोशल मीडिया पर वाद विवाद करना समय की पूरी बर्बादी है, क्योंकि ये एल्गोरिदम पर आधारित होते हैं जहां लोग केवल भावनाओं को भड़काने और मानसिक तनाव का काम करते हैं। इससे उत्पादक चर्चा के बजाय केवल नकारात्मकता और अलगाव ही पैदा होता है। वाद विवाद के नुकसान, ऊर्जा और समय की हानि, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर की जाने वाली बहसें किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती, जिससे आपका कीमती समय और मानसिक ऊर्जा व्यर्थ होती है। और इसके अलावा मानसिक तनाव, क्रोध अलग होता है। इन्होंने इसको साइंटिफिक तरीके से लिखा है। और इसके साथ ही जो है इन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया कितना हानिकारक है, हमारे विशेषज्ञ इस पर अपनी राय देते हैं। गलत सूचनाओं का प्रसार होता है, ऑनलाइन बहसों में अक्सर बिना पुष्टि किए तथ्य साझा किए जाते हैं, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। और समाज में सोशल मीडिया के प्रभाव के लाभ और हानियां भी बहुत हैं। आप उसका उपयोग करें, सीमित करें, और सबसे अधिक किस एप्स पर आप समय बिताते हैं ये भी आपको जानना होगा। और इस पर वो बहुत सारी बातें लिखते हैं।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं, आए दिन सोशल मीडिया झगड़े का अखाड़ा बन चुका है, किसी बात को लेकर दो गुटों के बीच झगड़ा होता है। साथी एक लिखते हैं, सोशल मीडिया पर वाद विवाद करके खुद के दिमाग खराब करने बराबर होता है, क्योंकि इस मंच पर विभिन्न देश या प्रदेश से अलग अलग दिमाग वाले लोग जुड़े मिलेंगे जिससे हम कभी जानते ही नहीं, तो उनसे ऐसे बेकार में वाद विवाद हमें क्यों उलझना चाहिए। आप उनकी पोस्ट ध्यान से पढ़ लें, अगर वो व्यक्ति और उसके प्रश्न जवाब देने लायक है तो उनसे जुड़े, वरना दूर ही रहे, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं, नौबत भी आ सकती है।
0: बिल्कुल सही कहा इन्होंने। और एक श्रोता लिखते हैं कि सोशल मीडिया पर वाद विवाद में उलझना अधिकतर समय की बर्बादी है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म सार्थक चर्चा के बजाय गुस्से और प्रतिक्रियाओं से उलझने उन्हें बढ़ाने का काम करते हैं। यहाँ बहस करने से मानसिक तनाव बढ़ता है और आप का समय जो है व्यर्थ होता है। मानसिक तनाव और ऊर्जा का ह्रास होता है। ऑनलाइन बहस में अक्सर लोग अपनी मर्यादा भूल जाते हैं। कटु शब्दों और आलोचनाओं को पढ़ने से मानसिक शांति हमारी भंग होती है, नकारात्मकता हावी हो जाती है। सोशल मीडिया पर एक विवादित पोस्ट के जवाब में तर्क वितर्क करने में घंटों निकल जाते हैं। इस समय का उपयोग किसी रचनात्मक कार्य में, पढ़ाई में, कौशल सुधार में किया जा सकता है। बहुत बार लोग जानबूझकर कुछ ऐसी बातें डाल देते हैं जिसे लोग और उत्तेजना में आकर लिखते हैं और धीरे धीरे उस जगह से फिर हट जाते हैं।
1: वहीं एक साथी लिखते हैं कि सोशल मीडिया आज के दौर में संचार का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, लेकिन इसका अत्यधिक उपयोग समय की बर्बादी का कारण बन सकता है। लोग घंटों तक बिना किसी उद्देश्य के वीडियो देखते, पोस्ट स्क्रॉल करते और अनावश्यक चर्चाओं में लगे रहते हैं। इससे पढ़ाई, काम और परिवार के लिए समय कम बचता है। कई बार सोशल मीडिया की लत व्यक्ति की एकाग्रता और उत्पादकता को भी प्रभावित करती है। इसलिए सोशल मीडिया का उपयोग सीमित और सार्थक उद्देश्यों के लिए करना चाहिए, ताकि समय का सदुपयोग हो सके, जीवन में संतुलन बना रहे।
0: बिल्कुल एक श्रोता

0: लिखा है कि सोशल मीडिया एक मंच है, यहाँ सोच समझकर ही अपने विचार रखें। अंधाधुंध कुछ भी बोलते रहते हैं लोग, कभी कभी घातक सिद्ध हो जाता है। लोग बदले की भावना रखते हैं और परिणाम स्वरूप कई बुरे काम भी हो जाते हैं।
1: वहीं एक साथ ही लिखते हैं कि इन मंचों पर लोग विचार खुलकर व्यक्त करते हैं, लेकिन इन मंचों पर होने वाले वाद विवाद अक्सर ऐसी दिशा में ले जाते हैं जहां सार्थक चर्चा की बजाय समय और ऊर्जा की बर्बादी होती है। लोग अपनी बात को सही साबित करने के लिए घंटों तक तर्क वितर्क करते रहते हैं और अंत में चर्चा किसी निष्कर्ष तक पहुंचने के बजाय आरोप प्रत्यारोप और कटुता में बदल जाती है, और ऐसे वाद विवाद हमारा मानसिक तनाव भी बढ़ाते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा सोनाली इन्होंने, और एक बात हम भी कहेंगे कि बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं सोनाली जो व्यक्तिगत द्वेष को भी उस पर निकाल लेते हैं। मसलन किसी व्यक्ति विशेष के बारे में हमें कुछ कहना है तो हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने लग गए हैं आजकल, और उनके बारे में अभद्र टिप्पणियां अभद्र बातें करने लग गए हैं। तो इस तरह से कितना बुरा लगता है, आप सोचिए कि जब हम किसी व्यक्ति विशेष को लेकर भी टीका टिप्पणी करने लग जाते हैं और अपना मन का विकार इस रूप में निकालते हैं, इससे बड़ी कायरता और क्या हो सकती है।
1: और क्या होता है ना कि ये जो समय इतना मूल्यवान है कि जिस उम्र में हमें अपना करियर बनाना है, कुछ अच्छा पढ़ना है, अच्छे संस्कार हमें अपने अंदर समाहित करना है, उस वक्त हम इन सब बिना काम की चीजों में उलझे हुए हैं, फिर ये समय तो फिर नहीं आएगा ना।
0: बिल्कुल, कभी समय लौट कर नहीं आता, बल्कि आप ही बाद में जो है एक तरह से दुख करते हैं कि हम धोखा खा गए, समय निकल गया और अब पछताई होत किया जब चिड़िया चुग गई खेत। तो यहाँ पर ये बात आती है जो हमने आज का विषय रखा है ना, संयम, वो यहाँ काम आता है ना, कि जीवन में संयम का कितना ज्यादा स्थान है और किस तरह से हमें हर विचार को एकदम तुरंत रिएक्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उसके लिए वो संयम रखना चाहिए। तो हमारे श्रोता लिख भी रहे हैं कि भाव, विचार, वाणी और व्यवहार ये संयम के चार स्तंभ हैं। संयम का सही अर्थ है आत्मनियंत्रण, धैर्य और संतुलन। ये किसी भी परिस्थिति में विशेषकर उकसावे, गुस्से या लालच के क्षणों में अपनी भावनाओं, इंद्रियों और इच्छाओं को काबू में रखने की एक मानसिक क्षमता है।
1: एक साथ ही लिखते हैं कि मन, वचन, इंद्रियों और वाणियों पर आत्मनियंत्रण ही संयम है। भगवद गीता में कहा है कि मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र है और सबसे बड़ा शत्रु भी है। जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन मित्र है, और जिसने ऐसा नहीं किया उसका मन शत्रु है। तो भैया अपने मन पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है।
0: वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि संयम मतलब मन, वाणी और कर्म पर स्वयं का नियंत्रण। मन जब कुछ गलत चाहे, जुबान कुछ गलत बोलना चाहे या शरीर कुछ अनर्थ करने की कोशिश करे, तब खुद को रोक लेना ही संयम है। संयम हार नहीं ठहराव है। बहुत अच्छा लिखा है। देखिए, गुस्से में बोला गया एक भी गलत शब्द जीवन भर के रिश्ते को खत्म कर देता है, और संयम से बोली गई बात रिश्तों की मिठास को कायम रखती है। जिसने संयम साध लिया मतलब उसने खुद को जीत लिया।
1: क्या बात है। एक साथ ही लिखते हैं, संयम वो खामोशी है जिसमें जल्दबाजी नहीं होती लेकिन समझदारी की आवाज साफ सुनाई देती है। हर ताकत दिखाई नहीं देती, कुछ ताकतें संयम बनकर भीतर रहती है, सही समय पर अपना प्रभाव दिखाती है। संयम का फल सिर्फ सफलता नहीं मन की शांति भी होता है। जो व्यक्ति अपने शब्दों, भावनाओं और निर्णयों को संतुलन रखता है उसके व्यक्तित्व में अलग ही गरिमा दिखाई देती है। संयम जीवन की पतंगी की वो डोर है जो उसे ऊंचाइयों तक भी ले जाती है और बिखरने से भी बचाती है। नदी की गहराई और इंसान का संयम दोनों शोर नहीं करते लेकिन उनकी शक्ति बहुत दूर तक महसूस होती है।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर लिखा है, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि संयम वो शक्ति है जो मनुष्य को परिस्थितियों का दास नहीं बल्कि उनका स्वामी बनाती है। आज की तेज रफ्तार जीवन में हर कोई तुरंत परिणाम चाहता है, ऐसे समय में संयम हमें सिखाता है कि बड़े लक्ष्य धैर्य मेहनत और प्रतीक्षा से प्राप्त होते हैं। एक बीज भी जब वृक्ष बनने में समय लेता है, उसी प्रकार जीवन में उपलब्धियां भी समय और निरंतर प्रयास मांगती हैं। बिल्कुल, हम कई बार अपना आपा खो देते हैं, मेहनत करते हैं और हमें फल नहीं मिलता ना, तो हम अपना संयम खो देते हैं।
1: एक साथी ने लिखा है कि कई बाधाएं, कई कठिनाइयां, कई कांटे मुझे मिले जीवन के पथ पर, परंतु मैंने संयम रखा, हिम्मत ना हारी और माता रानी पर अटूट विश्वास रखा और आज इस मुकाम पर पहुंच गया हूं कि शादी के बाद मेरे संयम को कायम रखने में मेरी धर्म पत्नी ने बहुत सहयोग दिया। मेरा सभी सखियों और सखाओं से यही कहना चाहूंगा कि अपने इष्ट पर विश्वास रखें और संयम रखते हुए कठिनाइयों का सामना करें, सफलता जरूर मिलेगी।
0: बिल्कुल सही कहा, और संयम का तो बहुत बड़ा स्थान होना चाहिए जीवन में। आपने देखा होगा सोनाली, अभी कई बार हम पढ़ते हैं, जिसका जिक्र हम कई बार करते हैं कि एग्जाम नहीं हुए, एग्जाम में कोई दिक्कत हो गई, हम पास नहीं हुए, उतने नंबर नहीं मिले, तो बच्चे जो है सुसाइड कर ले रहे हैं, आत्महत्या की ओर चले जा रहे हैं। तो ये वही है कि वो संयम जो आपा खो रहे हैं, धैर्य खो दे रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें संयम से काम लेना चाहिए, आज
1: इस
0: नहीं
1: साल
0: तो
1: नहीं तो अगले साल हाँ। आपको परीक्षा में सफलता मिल ही जाएगी
0: जिंदगी
1: और इतना सुंदर हाँ। जीवन है मिला है
0: हम खत्म कर दें
1: जी। तो बच्चों को ये हमें कि और क्या होता है ना, इसमें हम भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार होते हैं कि बच्चों ने किसी

0: चीज की जिद की तो हम तुरंत उन्हें ले देते, उन्हें संयम अंदर से सीखने की चीज है कि वे बोला कि आज ही चाहिए ये डिश, आज ही बनना चाहिए, तो तुरंत मम्मियों का प्यार उमड़ पड़ता है कि नहीं आज मांगा है तो आज ही दे देना है, आज उन्होंने कोई खिलौना मांगा है तो आज ही लाकर देना है, आज उन्होंने कोई कपड़े की जिद की है तो वही हम लाकर देते हैं। तो हमें भी उन्हें थोड़ा सा संयम से काम लेने के लिए कहें कि ठीक है आज टाइम नहीं है तो हम कल जरूर लाकर देंगे या दो चार दिन बाद लाकर देंगे। तो बचपन से ही उन्हें
1: ये संयम सिखाया जाए। दूसरा वही कि परीक्षा में अंक लाना महत्वपूर्ण है लेकिन अपनी जान से ज्यादा नहीं है, उनको संयम में रहना सिखाएं। कोई बात नहीं बेटा, इस बार आपके नंबर कम आ गए, आप उतने नंबर नहीं ले पाए, अगली बार मेहनत करिए, ना कि आप अपने जीवन को ही
0: समाप्त
1: कर ले, है ना। तो ये संयम हर जगह जरूरी है और अब हमें संयम हमें भी रखना चाहिए बोलने का,
0: गाना सुनाना चाहिए। सुना

0: मंदाकिनी जी,
1: जी
0: हमारे बहुत सारे साथियों ने, हमारे सखियों ने जो ना अचार और मुरब्बे की बहुत सारी रेसिपीज लिखकर भेजी है। तो आम का मुरब्बा, कच्चे आम इन्होंने लिखा है, कैरी 1 किलो,

0: कतलों में कटे हुए, गुड़ 800 ग्राम से 1 किलो बारीक कुटा हुआ, सौंफ एक छोटा चम्मच, हल्की दरदरी और कलौंजी आधा छोटा चम्मच, इलायची एक छोटा एक पाउडर छोटा चम्मच, उसके अंदर भुना जीरा एक छोटा चम्मच, काला नमक एक छोटा चम्मच और लाल मिर्च पाउडर आधा छोटा चम्मच। बनाने की विधि है कि आम के कतलों को उबाल ले, अब एक कढ़ाई में बारीक कुटा हुआ गुड़ और आधा कप पानी डाले और पकने दे। गुड़ की चाशनी बनाने पर इसमें उबले हुए आम के कतले डाल दे, इसे मध्यम आंच पर पकने दे। आम के टुकड़े गुड़ की चाशनी को सोख कर एकदम रसीले और पारदर्शी हो जाएंगे। इसी समय इसमें सौंफ, कलौंजी, काला नमक और लाल मिर्च पाउडर भी मिला दे। जब चाशनी शहद की तरह गाढ़ी और एक तार की हो जाए तो इसमें इलायची पाउडर और भुना हुआ जीरा पाउडर डालकर मिला ले। आम का गुड़ वाला मुरब्बा तैयार है। ठंडा होने पर कांच की बरनी में रखे। इसे पराठे के साथ, पूरी के साथ, रोटी के साथ
1: खा सकते हैं। इसका मतलब हमारी सभी बहनें प्रेस करने में नहीं लगी है ना
0: कुछ मुरब्बे और अचार
1: बना रही है। मुझे तो डर था कि आज हमें अचार और मुरब्बा खाने को मिलेगा भी कि नहीं, क्योंकि एक सखी ने लिख दिया था कि वो तो प्रेस कर रही है
0: और एक सखी कह रही है कि हम बैठ के सुन रहे हैं
1: तो फिर हम क्या करेंगे, कहाँ से लाएंगे ये अचार और मुरब्बे। तो इसका मतलब हमारी सखियां जो है हमारे साथ कार्यक्रम से जुड़ी हुई है और लगातार जो है मुरब्बा और अचार बनाने की तैयारी भी कर रही है ना। तो मैं पहले एक संदेश सुना दूं, उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं
0: जी।
2: एक जानी माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
3: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
2: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
3: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
2: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
3: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
2: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
1: तो सोनाली, हमारे सभी सखी और सखा जान गए होंगे कि आज के मेहमान कार्यक्रम में 4 बजे ये बातचीत वो सुन सकते हैं।
0: हम भी सुनेंगे उनके साथ में।
1: बिल्कुल, हम तो सुनेंगे ही और साथ में कैरी का अचार या मुरब्बा भी खाते जाएंगे। ठीक है। तो भाई, एक सखी लिखती है कि गुड़ और कैरी का गुजराती स्टाइल का अचार है। इसमें कच्ची कैरी है यानी कच्चा आम, 1 किलो गुड़, 1 किलो छोटे टुकड़ों में कटा हुआ होना चाहिए गुड़, चीनी 1 कप गुड़ के साथ मिलाने से अचार का टेक्सचर अच्छा होता है। अचार का मसाला 200 से 250 ग्राम, राई की दाल, मेथी की दाल, सौंफ, दरदरी, कुटी धनिया का मिश्रण, कश्मीरी लाल मिर्च, 2-3 बड़े चम्मच हल्दी पाउडर, 3-4 छोटे चम्मच नमक स्वादानुसार, चम्मच आपको हींग लेनी है, तेल लेना है मूंगफली का या राई का, 1 कप गर्म करके ठंडा किया हुआ लौंग और काली मिर्च भी आपको लेनी है साथ में 10-12। ठीक है। आम को तैयार करना है। कच्चे आम को धोकर अच्छी तरह सुखा लेना है। इसके बाद इसे छीलकर मध्यम आकार के टुकड़ों में काट ले, क्यूब्स जैसे बना ले। आम के टुकड़ों में 2 चम्मच नमक और 1 चम्मच हल्दी डालकर अच्छी तरह से इसे मिला लें और इसे ढककर 5-6 घंटे या रात भर के लिए आप छोड़ दें। अगले दिन क्या होगा कि आम के टुकड़ों को छानकर हमें अलग कर लेना है और जो पानी उन्होंने छोड़ा है वो हटा देना है। आम के टुकड़ों को सूती साफ कपड़े पर फैलाकर 3-4 घंटे के लिए पंखे की हवा देनी है ताकि उनके अंदर जो नमी होती है ना वो खत्म हो जाए। फिर मसाला तैयार कर लें। एक बर्तन में अचार का मसाला डालें, हल्दी, हींग भी डाल लें, इसके ऊपर हल्का गरम किया हुआ तेल डाल दें और ढककर कुछ देर के लिए छोड़ दें। मसाले को पूरी तरह ठंडा होने दें। अब इसमें भुना हुआ नमक डालें, कश्मीरी लाल मिर्च डालें, लौंग डालें, काली मिर्च डालें, इन सबको मिलाना है। फिर अचार को कैसे मिलाना है, एक बड़े और सूखे कांच या चीनी मिट्टी के बर्तन में जो सूखे हुए आम के टुकड़े हैं और तैयार मसाला है उनको डालकर अच्छे से मिला लेना है। अब इसमें गुड़ और चीनी डाल दें। सभी सामग्रियों को साफ हाथों से या सूखी चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स कर दें। बर्तन को सूती कपड़े से बांधकर 2-3 दिन तक धूप या छाया में रखें और दिन में 3-4 बार अचार को चम्मच से ऊपर नीचे या हिला लें। 3-4 दिनों में गुड़ और चीनी पिघलकर चाशनी बन जाएगी और आम के टुकड़ों के साथ मिलकर गाढ़ा रसा तैयार हो जाएगा और आप एक गुजराती जो है ये गुड़ कैरी का अचार खा सकते हैं।
0: मेरे तो मुंह में पानी आ गए। थेपले के साथ में कितना अच्छा लगेगा ना।
1: क्या बात है, तुम्हें तो थेपले की भी याद दिला दी
0: है। अब मुरब्बा बनाने की सरल विधि है तो इन्होंने कहा है कि 1 किलो फल जैसे आंवला है या फिर कोई भी फल ले सकते हैं और 1.25 किलो चीनी है, 4 से 5 कप पानी है, 4-5 इलायची, फलों को अच्छी तरह से धो ले और फलों को कांटे से गोंद ले ताकि चाशनी अंदर जा सके, हल्का सा उबाल ले उन फलों को और फिर

0: बर्तन में चीनी और पानी मिलाकर एक तार की गाढ़ी चाशनी तैयार करें। चाशनी में फल डालकर धीमी आंच पर पकाएं। जब फल पारदर्शी दिखने लगे और चाशनी गाढ़ी हो जाए तब इलायची पाउडर डालें। ठंडा होने पर साफ सूखे कांच के बर्तन में भरें। मुरब्बा जितना पुराना होगा उतना स्वाद और उतना ही अच्छा होगा।
1: हाँ, वही एक सखी ने लिखा है कि हम जो सिंपल सा अचार बनाते हैं वो बता देते हैं। बिल्कुल, सिंपल सा अचार भी बहुत अच्छा लगता है। अभी आम का अचार डालने का सही समय है, वो कह रही है। हम नाप तोल कर नहीं बनाते, बस सबसे पहले कैरी को धोकर सुखा लेते हैं, उसमें थोड़ा नमक हल्दी डालकर उसको रख देते हैं। दूसरे दिन उसका पानी हटाकर थोड़ा सुखा लेते हैं। बस फिर कढ़ाई में सरसों का तेल गरम कर लेते हैं, जब थोड़ा ठंडा हो जाए उसमें अचार मसाला डालकर मिला लें और उसमें इन कैरियों को डालकर मिला लें और साफ सूखी कांच की भरनी में डाल दें। कुछ दिनों तक उसे रोज बार बार हिलाएं, तेल ऊपर तक होना चाहिए ताकि अचार जो है खराब नहीं होगा। अगर तेल ज्यादा नहीं डालना हो तो मसाले थोड़ा ज्यादा डाल दें और कैरी को अच्छे से सुखा कर उसमें डालना है और लगभग हिलाते रहना है जब तक कैरी पक नहीं जाती है।
0: और अब क्या करना है?
1: अब तो हमें बहुत अचार खिला दिया है श्रोताओं को हमने।
0: अचार और मुरब्बा खा लिए तो मीठा मीठा गीत सुन लेते हैं।
1: बिल्कुल सुन लेते हैं।

0: ये गीत आप ऐसे वक्त सुनाते हो जब जाने का समय हो जाता है, अभी ना जाओ छोड़कर। एक सखी ने लिखा, अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, काम करते करते अब संयम खो दिया और फोन लेकर बैठ गई।
1: लेकिन आपने सही कहा, हमें तो जाना होगा, इसलिए हम कहेंगे कि अब रुकेंगे नहीं नहीं
0: नहीं। तो इजाजत लेते हैं आप सभी को, सोनाली पाठक
1: और मंदाकिनी जोशी का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आज के मेहमान में मशहूर चित्रकार अखिलेश वर्मा से ममता सिंह की बातचीत।
1: दोस्तों नमस्कार, विविध भारती के स्टूडियो में हाजिर हूं मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने एक ऐसे कलाकार को, एक ऐसे आर्टिस्ट को बुलाया है जो कला में माहिर है, जो रंग भरते हैं, जो अपनी पेंटिंग में रंग भरते हैं, जिंदगी में रंग भरते हैं। अखिलेश जी की पेंटिंग्स आधुनिक अमूर्त कला और लोक संवेदनाओं का अनूठा संगम है। उनकी कृतियों में रंग केवल सजावट नहीं होते बल्कि वे भावनाओं की भाषा बन जाते हैं। वे कैनवास पर ऐसी आकृतियां और रेखाएं रचते हैं जो पहली नजर में थोड़ी रहस्यमय लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे दर्शक को अपने भीतर के अनुभवों और स्मृतियों से जोड़ देती हैं। बहुत सारी बातें अखिलेश जी के बारे में हम आपको बताते रहेंगे इस कार्यक्रम में आज के मेहमान में। तो चलिए शुरू करते हैं सिलसिला और अपने देश के जाने माने पेंटर अखिलेश जी का विविध भारती के स्टूडियो में हम स्वागत करते हैं। अखिलेश जी नमस्कार, स्वागत है
2: जी। नमस्कार,
1: कैसा लग रहा है आपको विविध भारती के स्टूडियो में आकर?
2: विविध भारती एक ऐसी चीज है जो बचपन से आपकी स्मृति में है और हम लोग बहुत जब छोटे थे जब से विविध भारती सुनते आ रहे हैं, और खास तौर पे हमारे पिता वो शास्त्रीय संगीत का जो कार्यक्रम आता था
1: संगीत सरिता
2: अभी भी आता है। उसमें हाँ, उसको हम लोग बहुत सुना करते थे। और वो समय कुछ ऐसा था कि आप उस वक्त अपने आप रेडियो के पास होते थे और संगीत सरिता का वो कार्यक्रम सुनते थे। तो हमारे यहाँ वो एक ज्वाइंट फैमिली होने से 10 बच्चे थे, तो सभी के भीतर विविध भारती के साथ एक गहरा संबंध बहुत शुरू से अनजाने ही बना।
1: जी जी, और पिता का जिक्र किया, आपके पिता खुद ड्राइंग शिक्षक थे, मेरे ख्याल से पहले स्वर्ण पदक विजेता, तो आपने क्या चित्रकला की जो पहली तालीम होती है उन्हीं से ली?
2: ऐसा कहा जा सकता है कि मैं जब छोटा था तो हमारे घर में पिता के कारण सारे जो बच्चे थे सभी लोग पेंटिंग करते थे, तो

0: मेरे को पेंटिंग करने में कोई रुचि नहीं थी, क्योंकि सब लोग एक ही काम कर रहे हैं, तो इसलिए मैं बिल्कुल नहीं करता था। और मैंने फिर 11th क्लास में पेंटिंग सब्जेक्ट लिया और उसके साथ मैंने अपना जीवन शुरू किया। और फिर अगले साल मैंने कॉलेज में, फाइन आर्ट्स कॉलेज इंदौर का जो बड़ा प्रसिद्ध फाइन आर्ट्स कॉलेज है, वहाँ एडमिशन लिया और विधिवत कला शिक्षा प्राप्त करना शुरू करी। तो वहाँ हमारे प्रिंसिपल होते थे चंद्रेश सक्सेना, हमारे टीचर होते थे रामनारायण दुबे, इन लोगों से भी मैंने बहुत कुछ सीखा। और इन लोगों ने एक्चुअली आंखें खोलने का काम किया कि चित्रकला क्या है। हमारे पिता जो थे वो मिनिएचर के मास्टर थे, मतलब मिनिएचर की उनकी बड़ी गहरी समझ थी और वो उसके बारे में बताया करते थे। और हमें अजंता एलोरा ले जाना, खजुराहो ले जाना, इस तरह के जो ऐतिहासिक स्थल हैं, जो बड़े मंदिर हैं, वहाँ ले जाया करते थे। और उन सब की शिक्षा वो दिया करते थे, उनके बारे में बताया करते थे। मगर जो कॉन्टेम्प्रेरी आर्ट का जो समझ पैदा हुई मेरी कॉलेज में आने के बाद हुई
1: जी, वहीं से पेंटिंग से आपका जुड़ा हुआ।
0: जी हाँ।
1: तो आपके बारे में ये बात प्रसिद्ध है कि 20 बरस की उम्र में ही आपकी पेंटिंग की प्रदर्शनी लग गई थी और बहुत बड़ी पेंटिंग आपने बनाई थी, वो क्या बात है हमारे श्रोताओं को
0: बताइए। जी, जब मैं 20 साल का था तब मैं कॉलेज के तीसरे वर्ष में पढ़ रहा था और उस वक्त कोई स्टूडेंट वन मैन शो करे ऐसा संभव नहीं होता था, मतलब उसके लिए रास्ता नहीं था कि आप। किंतु मेरे पिता चूंकि खुद चित्रकार थे, उनका मेरे को बहुत सपोर्ट था और उन्होंने मुझसे कहा कि हाँ तुम करना चाहते हो तो जरूर करो। और फिर मैंने एक ड्राइंग का शो किया जो कि 110 फीट लंबा अकेला एक ड्राइंग था, जिसको देख करके जाहिर है इंदौर के उस वक्त के जितने हमारे कलाकार दोस्त थे और हमारे वरिष्ठ कलाकार थे, उन सभी लोगों को एक अलग रोमांच की बात थी कि गैलरी में आप घुसे और ड्राइंग शुरू हो और गैलरी से जब आप बाहर निकले तो ड्राइंग खत्म हो।
1: क्या बात है।
0: तो वो एक शुरुआत थी और मैंने सोचा कि जब हमको एंट्री लेना है आर्ट फील्ड में, यही करना है या यही रहना है, तो फिर एक कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे आपकी एक इमेज बने या बनना शुरू हो।
1: जी, तो ये जो इमेज बनाने वाली बात है, फिर आपने अपनी इमेज बनाने के साथ साथ आप एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग की ओर झुका हुआ आपका, तो ये किसी ने आपको सलाह दी या आपने खुद चुना, क्या था आपके मन में
0: उस वक्त? हमारे कॉलेज में एक विषय होता था जो कंपलसरी सभी को करना होता था, वो था कॉपी एनी वेस्टर्न मास्टर। तो चूंकि मैं बचपन से ही मिनिएचर पेंटिंग के किताबें और हमारे पिता के कारण से मेरा एक बड़ा गहरा संबंध था कांगड़ा वैली के या भसौली या बूंदी या इन सारी कलम से बहुत ही परिचित था मैं, तो मैंने हमारे टीचर से कहा कि मैं एक इंडियन मास्टर को कॉपी करना चाहता हूँ बजाय वेस्टर्न मास्टर के, तो क्या मुझे ये परमिशन होगी और मैं चाहूंगा कि मुझे नंबर भी उसी पे मिले।
1: जी जी।
0: और अगर आप कहें तो मैं दो वेस्टर्न मास्टर की कॉपी भी बना के दे दूंगा, मगर मैं चाहूंगा कि मेरे को जांचा परखा इसी से जाए जो मिनिएचर। तो फिर उन्होंने सिलेबस में चेंज किया और मुझको अलाउ किया कि हाँ आप मिनिएचर बनाएं। तो उस दौरान मैंने बहुत सारे मिनिएचर उनका गहन अध्ययन किया कि कौन सा बनाना चाहिए। तो उसमें जो मैंने चुना था उसमें तो 200-300 इमेजेस थी, आकृतियां थी, किंतु उसी वक्त एक पेंटिंग मेरे मिनिएचर ध्यान में आया कि इसमें एक अभिसारिका जो है जंगल से गुजर रही है और अपने प्रेमी से मिलने जा रही है। तो जो नायिकाओं के भेद है उसमें अभिसारिका वो नायिका है जो खुद अपने प्रेमी से मिलने जाती है। तो जंगल में शेर चीते और जंगली जानवर और सब चारों तरफ खड़े हैं, भूत प्रेत और चुड़ैल भी हैं, मगर इन सब से निडर निर्भीक, इन सब की तरफ कोई ध्यान न देते हुए वो अपने चली जा रही है। तो मैंने सोचा कि इतने गहरे अंधकार में वो अपना रास्ता कैसे देख रही है। तो वो उसके हाथ में न कोई प्रकाश का स्रोत है, न कोई लालटेन है, न कोई दिया है और वो चली जा रही है। तो फिर ध्यान गया मेरा ऊपर, बादलों में बिजली कड़क रही है, तो बिजली की रोशनी में वो अपना रास्ता देख रही है। तो जब मैंने बिजली की तरफ देखा तो वो बिजली भी बिजली नहीं थी, दो लहराते हुए सांप बने हुए थे सुनहरे रंग के, मतलब बिजली भी नहीं कड़क रही थी। तो वो अपने कामना के प्रकाश में अपना रास्ता देख रही थी। तो ये जो एब्स्ट्रैक्शन था ये मेरे लिए बहुत ही दिमाग को
1: मंथन करने
0: हिला देने वाला था और मेरा ध्यान फिर चित्रकला में अमूर्तन की तरफ गया कि भई हमें अमूर्तन की तरफ ही जाना चाहिए, सोचना चाहिए, अपने को बरतना चाहिए। तो इस तरह से मैंने फिफ्थ ईयर से

0: अमूर्तन में काम करना शुरू किया जब फाइनल ईयर होता था हमारा, और उसमें फाइनल ईयर की जो परीक्षाएं होती थी उसमें एक विषय दिया जाता था, उसको आपको बनाना होता था। तो हम लोगों को विषय था पनिहारिन, और वो पनिहारिन जो है वो उसमें पांच फिगर बनानी होती थी, और वो कुआं और ये सब जो पानी भर रही है इस तरह का कुछ। मैंने उस वक्त फिर बनाया जो चित्र था एब्स्ट्रैक्ट बनाया कम्प्लीटली, और मैंने सोचा कि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे फेल करेंगे और क्या होगा। किंतु मेरे लिए बड़े आश्चर्य की बात थी कि मैं अकेला सारे छात्रों में, हमारे उस वक्त हमारे इंदौर ग्वालियर जबलपुर सबकी एग्ज़ाम एक जगह होती थी, तो हम लोगों की एग्ज़ाम ग्वालियर में हुई थी, तो मैं अकेला फर्स्ट डिवीजन पास हुआ था, बाकी सारे लोग सेकंड डिवीजन में थे।
1: क्या बात है। बढ़िया।
0: तो मुझे भी आश्चर्य हुआ कि मेरे एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग में मुझे नंबर मिले।
1: जी जी।
0: और हमारे जो भी देखने वाले थे जांचने वाले थे उन्होंने ये ख्याल रखा कि मैं क्या करना चाहता हूँ, तो वो एक शुरुआत थी मेरी अमूर्तन की तरफ जाने की।
1: अखिलेश जी, आप जब ये बता रहे थे कि ये एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग में ये सारे चित्र उकेरते हैं कि जंगल है और वहाँ पर जंगल में वन प्राणी है और ये सब, तो मेरी आंखों के सामने वो दृश्य पैदा हो रहा है। ये शब्दों के माध्यम से दृश्य पैदा करना थोड़ा आसान होता है, लेकिन पेंटिंग में किस तरह की चुनौती होती है? ये सारे दृश्य आप बता रहे हैं तो हमें समझ में आ रहा है, लेकिन एक पेंटिंग को एक आम दर्शक देखता है तो कैसे इनको ग्रहण करता है? तो आपके लिए बहुत सारी चुनौतियां होती होंगी, किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है, किस तरह की कोशिश आप करते हैं?
0: मैं तो इस तरह की कोई कोशिश नहीं करता हूं कि लोगों को ये समझ में आए, मगर जब हम चित्र देखते हैं तो हम लोग दरअसल पहले से जो हमारे पूर्वग्रह हैं उनसे संचालित होकर के चित्र देख रहे होते हैं। चित्र देखने का एकमात्र ढंग जो है वो समर्पण भाव से देखना है। अगर आप उसको पूरी तरह से अपनी जो भी समझ है उसको छोड़ करके एक मनुष्य की तरह देख रहे हैं, क्योंकि जो आंख मुझे मिली है वही आंख एक दर्शक के पास भी है, और जितना मैं देखता हूं उतना वो भी देखता है, तो मैं उनके देखने पे संदेह नहीं करता हूं, और मैं चाहता हूं कि उनका देखना जागृत हो। और उसमें जो चुनौतियां होती हैं चित्र बनाते वक्त, वो चुनौतियां दूसरी तरह की होती हैं, जिसमें रंग एक चुनौती है अपने आप में, फॉर्म एक चुनौती है अपने आप में, और रेखा एक चुनौती है कि आप इनका कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं, आप किस रंग के साथ कौन सा रंग लगाएं कि दोनों रंग जो हैं आपस में संवाद करते दिखें। तो ये जो चीजें होती हैं वो दूसरी तरह की चुनौतियां हैं, जो चित्रात्मक चुनौतियां हैं कायदे से देखा जाए तो। और ये जो सामाजिक चुनौतियां हैं देखने की और समझने की, इसके लिए एक पूरा अलग व्यापार है जो उसको फॉलो करना चाहिए देखने वाले को, या उसको। मैं तो देखता हूं कि जो हमारे जंगल में रहने वाले आदिवासी कलाकार हैं, जब वो भारत भवन आते हैं और भारत भवन की आधुनिक कला दीर्घा में वो प्रवेश करते हैं, और तो मैं देखता हूँ कि वो लोग तो सारे चित्रों को खुशी से एंजॉय करते हैं।
1: क्या बात है।
0: तो उनके पास ऐसा कुछ पहले से प्री कंसीव्ड आइडिया नहीं है चित्र का, तो जो चित्र देख रहे हैं उसके साथ वो एकाकार हो जाते हैं तत्काल ही, जैसे कि वो प्रकृति के साथ एकाकार रहते हैं। तो ये जो उनका एक समर्पण भाव है जिसमें वो अपने देखने को पूरी तरह से बरतते हैं, तो मुझे लगता है कि हर मनुष्य ये कर सकता है कि वो अपने देखने को जागृत करके अपना देखना वैसा ही निर्दोष रखे जैसा कि होता है।
1: जी जी। चित्र कला और संगीत का बड़ा गहरा संबंध है। हमने कई पेंटर्स के बारे में सुना है कि वो साथ में रेडियो लगा देते हैं, रेडियो बजता रहता है और चित्रकारी करते हैं। बहुत बड़े बड़े पेंटर्स ने खास तौर से विविध भारती के लिए कहा है, आपने भी इसका जिक्र किया। अभी इस वक्त कौन सा गाना हम अपने श्रोताओं को सुनवाएं?
0: मैं सुनाना चाहूंगा किशोर कुमार का एक गाना है, वो शाम कुछ अजीब थी।
1: इस गाने से जुड़ी हुई कोई खास याद है क्या आपकी?
0: इस गाने से जुड़ी हुई नहीं, ये गाना मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। किशोर कुमार की जो आवाज है उसमें जो कशिश है वो एक इस गाने को खास बनाती है, और उसमें एक विचित्र किस्म की उदासी फैलती है, वो भी मुझे बहुत अच्छी लगती
1: जी,
0: है।
1: और किशोर कुमार हमने सुना है कि आपके घर भी आया करते थे।
0: किशोर कुमार मेरे पिता के साथ पढ़ते थे और क्रिश्चियन कॉलेज में वो लोग पढ़ाई करा करते थे, तो जब वो पहली बार हमारे घर आए तो मेरे दादाजी का एक पायदानी हारमोनियम था घर में, तो उसको देख के किशोर कुमार बहुत ही खुश हुए, और फिर एक नियमित वो हो गया कि वो अपना कॉलेज ख़त्म करके हमारे घर आ जाते थे, फिर देर रात को ही जाया करते थे। वो सिर्फ गाना गाते थे, और उस वक्त वो इतना शर्माया करते थे, ऐसे हमारे पिता बताते हैं।

0: कि वो कोई अगर बाहरी व्यक्ति आ जाए तो गाना बंद कर देते थे।
1: ओह क्या बात है। तो ऐसी तमाम यादें होती हैं, हमें लगता है कि जब आप रंग भरते होंगे तो इन यादों को का भी समावेश करते होंगे। फिलहाल हम ये गाना सुनते हैं
0: जी।

0: गाने के बाद हम आते हैं उस मुद्दे पर। अखिलेश जी, आपकी पेंटिंग में, आपकी चित्रकारी में मध्य प्रदेश की आदिवासी संस्कृति, लोक जीवन और बहुत कुछ देखने को मिलता है, एक पूरी परंपरा देखने को मिलती है मध्य प्रदेश की। तो ये बताइए हमें कि ये आपकी खुद की कल्पनाशीलता है या फिर आप जाते हैं, रिसर्च करते हैं, उन आदिवासी लोगों से मिले, उनकी संस्कृति को जाना, खंगाला, बताइए विस्तार से।
1: हाँ, ये हुआ मेरे साथ जब मैंने भारत भवन में ज्वाइन किया और वहाँ पर हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने एक नया देखना इंट्रोड्यूस किया था जिसमें उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और वो साथ साथ एग्जिबिट थे एक ही छत के नीचे। तो उस तरह से मेरा भी संपर्क जो है आदिवासी कला से वहाँ से शुरू होता है और उसके बाद उन सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर उन के गांव जाना, उनके गांव में जा कर के उनके साथ काम करते हुए समय बिताना, ये सारा चीज़ जो है उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में। तो वो उनका जो देखना है वो इतना निर्दोष है और उनका जो देखना है उतना गहरी आस्था के साथ जुड़ा हुआ है, वो मुझे लगता है कि एक शहरी कलाकार के लिए एक बड़ी चुनौती है कि वो अपने इस आस्था को कहाँ से अपने चित्रों में प्रकट करें। तो ये जो देखना था और ये मेरा जो उनके साथ संपर्क था, उनके साथ का एक बिताया हुआ समय था, उन सब ने मुझे प्रेरित किया अपनी सीधी साधी अप्रोच की तरफ। तो उसका एक प्रभाव पड़ता ही है और फिर हम देखते हैं कि अगर पॉल क्ले के चित्र देखें या पिकासो के आखिरी चित्र देखें तो वो लोग भी इसी सिंप्लिसिटी की तरफ आखिर में जाते हैं। जो हुसैन हो चाहे वो चाहे रजा हो, वो अपने मनुष्य होने का एहसास धीरे धीरे जब उन्हें होता है तो वो उसी सादगी, उसी आस्था और उसी मूल जो हमारी भावनाएं हैं उनकी तरफ चले जाते हैं। तो ये चीज़ें जो है बहुत ही एक महत्वपूर्ण चीज़ है जिसका रियलाइजेशन आपको पेंटिंग करने के दौरान ही होता है,
0: मिलता है। कोई यादगार घटना या कोई यादगार बात आपके जहन में आ रही इस समय कि आप कहीं गए हों और किसी विशेष घटना से प्रभावित होकर कोई विशेष पेंटिंग बनाई हो?
1: वैसे तो मैं

0: घटना से प्रभावित होकर के या प्रेरित होकर के चित्र नहीं, नहीं बनाता हूँ, क्योंकि ये प्रेरणा के जो स्रोत हैं वो बदलते रहते हैं, वो बदलते रहे हैं। और अब मेरे लिए जो प्रेरणा का स्रोत है, इसके पहले तक ये था कि मेरा पिछला चित्र ही मेरे प्रेरणा का स्रोत होता था, अब मेरे लिए जो रंग हैं वो प्रेरणा के स्रोत हैं। वो बहुत ही बड़ी चुनौती भी है। मैं देखता हूँ कि हर रंग अपने में एक प्रश्न है जिसको रिजॉल्व करना के लिए पूरा एक जीवन चाहिए है। मतलब आप रंग के स्वभाव को जब जानना शुरू करते हैं तो वो खुद आपको चमत्कृत करते हैं कि ऐसा कैसे हुआ। उदाहरण के लिए जैसे मैंने एक कैनवस पे रंग लगाया मेटेलिक ऑरेंज, जो कि बहुत ही ब्राइट और बहुत ही चमकता हुआ ऑरेंज था, और वो इतना ज़्यादा चमकीला और इतना ज़्यादा ब्राइट था कि मैं खुद 3 दिन तक उस पर कुछ काम नहीं कर पाया, और रोज सिर्फ बैठ करके उसको देखा करता था कि अब इसके साथ ऐसा कौन सा रंग लगाया जाए जो उसकी मदद करे, उसको आगे बढ़ने में, चित्र को आगे बढ़ने मेरी सहायता करे। और 3-4 दिन के बाद मैंने उसके ऊपर एक फ्लोरोसेंट कलर ऑरेंज का डॉट लगाया, और मेरे लिए ये बहुत ही बड़ा चमत्कार जैसा था कि वो जो पिछला पूरा मेटेलिक ऑरेंज था वो ब्राउन कलर में बदल गया।
1: गजब।
0: और तब मुझे एहसास हुआ कि इसके अंदर एक ब्राउन कलर भी छिपा हुआ था जो एक दूसरे रंग के संपर्क में आने से प्रकट हो गया। तो ये जो रंग अपने भेद खोलते हैं किसी एक दूसरे रंग के संपर्क में आने से, ये मेरे लिए सच में बहुत ही एक आश्चर्य की बात होती है और मेरे लिए चमत्कार। आप खुद ही चमत्कृत हो जाते हैं कि ये क्या है। तो इसने मुझे दिशा में डाला कि मैं रंगों के स्वभाव को समझने के लिए उनके साथ लगातार एक प्रयोगात्मक अप्रोच रखूं।
1: क्या बात है, बड़ा अच्छा लग रहा है कि एक चित्रकार रंगों से कैसे प्रयोग करता है, कैसे खेलता है। हमारे बहुत सारे ऐसे श्रोता भी हैं जो चित्रकला के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उन बारीकियों के बारे में बताइए कि जो रंगों की बात की तो आप रंग और रेखा के साथ कैसे तालमेल बिठाते हैं, किन रंगों का ज़्यादातर प्रयोग करते हैं और किन रंगों को मिलाकर कौन सा रंग पैदा होता है, आपके पसंदीदा रंग कौन से हैं।
0: हाँ, मेरी पहले तो मेरे पसंदीदा रंग की बात करें तो शुरुआती तौर पे मेरे को लाल रंग बहुत ही पसंद था, और वो एक बहुत बड़ी चुनौती भी था, किंतु अब मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे हरी रंग एक बड़ी चुनौती है। पीला रंग लगाना सबसे मुश्किल काम है।
1: हम अपने श्रोताओं को यहाँ बताना चाहेंगे हरा रंग आपको पसंद है और अखिलेश जी हरे रंग की शर्ट पहन के आए हैं, एकदम डार्क हरा, तोता हरा, और बहुत खिल रहा है इन पर ये रंग जी।
0: हाँ, तो मुझे मतलब रंग बरतते वक्त कैनवास पे मुझे ये भी लगा कि मुझे उसे अपने जीवन में भी बरतना चाहिए, तो फिर मैं अपने कपड़ों में भी उनको ले आया, और उस तरह से बहुत ही रंगों से जो डरते हुए लोग हैं, मतलब मैं उस तरह से डर के निसंकोच उनका प्रयोग करने लगा। तो ये जो रंग से आपको प्रेरणा मिलती है, ये मेरे ख्याल से सभी दर्शकों के लिए, श्रोताओं के लिए महत्वपूर्ण है कि आप रंग को जब देखते हैं तो ध्यान से देखें तो आपको उसके अंदर और भी चीज़ें नज़र आने लगती हैं, कई रूप भी नज़र आने लगते हैं, कई रेखाएं भी नज़र आने लगती हैं। किंतु हम अपने देखने पे हमेशा इतना संदेह करते हैं कि हम उसको समझना चाहते हैं, जो कि एक गलत रास्ता भी हो सकता है
1: जी।
0: किसी चित्र को समझने की ज़रूरत नहीं है, उसे देखने की ज़रूरत है। तो जब आप देखना शुरू करते हैं तो वो आपके साथ उसका एक संवाद शुरू होता है और वो चित्र खुलना शुरू हो जाता है आपके साथ धीरे धीरे। आप अपने घर में लाके उसको लगाते हैं तो आप उसको रोज़ अगर देखते हैं तो रोज़ आपको एक नए कुछ उसमें चीज़ें नज़र आने लगती हैं। तो वो एक तरह से ग्रो भी होता है आपके साथ रहते रहते, जैसे हम लोग भी ग्रो होते हैं वैसे चित्र भी विकसित होता रहता है लगातार। तो ये जो चीज़ें हैं हर दर्शक को ख्याल रखनी चाहिए
1: जी। बिल्कुल, यहाँ पर हमें भी ख्याल रखना चाहिए कि एक गाना आना है, तो कौन सा गाना सुनवाएं?
0: मैं चाहूंगा कि भूपेन का एक गाना, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन।
1: मौसम फिल्म का गाना है
0: जी। हाँ,
1: सुनते हैं यही गाना।

0: गाने से पहले बात चल रही थी रंगों की, रंगों की बहुत सारी बातें आपने बताई और एक बात आपने और कहा कि भारत भवन ज्वाइन किया, इंदौर में आपने शिक्षा ली, तो इंदौर से भोपाल की यात्रा के बारे में संक्षेप में बताइए।
1: इंदौर से भोपाल में सीधे नहीं आया था, मैंने दो इंटरव्यूज दिए थे, एक बेंगलोर में दिया था एक भोपाल में दिया था, और संयोग से दोनों जगह मेरा अपॉइंटमेंट मतलब हो गया था। भारत भवन में अपॉइंटमेंट करने में थोड़ा सा टाइम था, तो उन्होंने कहा कि फिर 3-4 महीने लगेंगे, तो मैंने कहा कि ठीक है मैं 3-4 महीने बेंगलोर चला जाता हूँ। तो फिर मैं बेंगलोर चला गया था और वहाँ से फिर मैं भोपाल आया। तो 82 में जब भारत भवन की शुरुआत हुई उसी वक्त फिर मेरा भोपाल आना हुआ, और फिर मैंने लगभग 22 साल भारत भवन में काम किया और प्रदर्शनी लगाना, कलाकारों से मिलना, बात करना, तो ये मेरे लिए भी एक बड़ा वो था। और वहाँ के जो निदेशक थे जगदीश स्वामीनाथन, जो हिंदुस्तान के बड़े चित्रकार हैं और बड़े विचारक भी हैं, जिन्होंने चित्रकला के लिए अपना जीवन भी बिताया, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। तो उनके सानिध्य में रह करके भी चित्रकला का संसार प्रकट हुआ
0: जी। और एक हमने घटना सुनी है कि आपकी पेंटिंग की प्रदर्शनी थी और कोई अमेरिकन व्यक्ति आए और उन्होंने आपकी सारी पेंटिंग खरीद ली थी, वो क्या घटना है जरा बताइए।
1: वो मेरा पहला वनमेन शो था बम्बई में और जहांगीर आर्ट गैलरी में, और ओपनिंग में चस्य हविस करके एक अमेरिकन कलेक्टर थे जो कि सालों से हिंदुस्तान आते थे और हिंदुस्तानी कलाकारों की चित्र खरीदा करते थे, तो वो संयोग से मेरे एग्जीबिशन में आ गए थे। और मैं चूंकि अमूर्त चित्र बनाता हूं तो उन्होंने मेरे एग्जीबिशन से 4-5 चित्र खरीद लिए, जिसको देख करके मतलब जाहिर है एक अलग तरह का वो फैला, और वो पूरा एग्जीबिशन जो है मेरा आधे घंटे में सेल आउट हो गया था। तो ये

ये भी एक बड़ी चमत्कार की बात थी। और फिर दूसरे दिन चर्चा हबीज आए, उन्होंने फिर अपने को इंट्रोड्यूस करा और बताया कि भाई मैं हूँ मेरे कलेक्टर और मैं ये काम करता रहता हूँ, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, एक छोटा सा इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। वो और उनकी पत्नी डेविडा दोनों थे और फिर उन्होंने हमसे बात बात करी तो काफ़ी रुचि पूर्वक उनसे बात हुई। फिर मुझे बाद में पता चला कि वो हिंदुस्तान के जितने भी खास कलाकार थे उन सब के चित्र जो है वो खरीदा करते हैं और उनका

0: पूर्वक उनसे बात हुई। फिर मुझे बाद में पता चला कि वो हिंदुस्तान के जितने भी ख़ास कलाकार थे उन सब के चित्र जो है वो ख़रीदा करते हैं, और उनका एक
1: जी
0: बड़ा कलेक्शन उनके पास था।
1: तो हम सब के लिए कितनी गौरव की बात है, हम सब हिंदुस्तानियों के लिए, कि विदेश से एक बंदा आकर अपने देश की चित्र को, अपने देश की कला को ले जाते हैं, तो हम सब के लिए फख्र की बात है और बहुत अच्छा लगा ये जानकर। मकबूल फिदा हुसैन से आपका नाता रहा है, और तो इनके बारे में बताइए, इनसे कुछ ख़ास बारीकियाँ सीखने को मिली या आपने पिताजी से ही सब कुछ सीखा आपने?
0: हाँ नहीं, हुसैन साहब से तो बहुत ही कुछ सीखने को मिला, और हुसैन साहब के साथ एक ऐसा संबंध बना बाद में जा कर के कि उनकी मैंने जीवनी भी लिखी, और उनकी जीवनी जब पढ़ी उन्होंने और लंदन में मेरी उनसे मुलाकात हुई तो बोले, यार हमारी ऑटोबायोग्राफी से आपकी बायोग्राफी ज़्यादा पॉपुलर हो गई है, क्योंकि उसका 6 महीने में दूसरा एडिशन छपा था तो इतनी ज़्यादा वो बिकी थी। तो हुसैन साहब इस बात से बहुत ही खुश हुए थे। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि इसका अंग्रेज़ी में अनुवाद कराओ तो अपन लंदन में रिलीज़ करेंगे। और फिर वो अनुवाद इतने धीमी गति से हुआ, बाय द टाइम जब तक वो अनुवाद पूरा हुआ हुसैन साहब दुनिया में नहीं रहे, तो वो उनकी ख्वाहिश अधूरी रही। एक उनकी दूसरी भी ख्वाहिश थी, उनका 1956 में पहला वन मैन शो हुआ था प्राग में, और वहाँ पर उनके साथ उनकी जो इंटरप्रिटेटर थी मारिया, उनके साथ उनका प्रेम शुरू हुआ, और फिर बाद में उनसे वो शादी भी करना चाह रहे थे तो वो हो नहीं सके। और मारिया ने जब ये शादी करने के लिए गए उन्होंने मना कर दिया कि भाई आप दूसरी संस्कृति से आते हैं, मैं दूसरी संस्कृति को बिलोंग करती हूँ तो शायद ठीक से नहीं होगा। तो हुसैन साहब ने उस दौरान उन 4-5 सालों में 3 वन मैन शो किए थे प्राग में, और तीनों उनको डोनेट कर दिए थे, गिफ्ट कर दिए थे। तो कई साल बाद 2002 में मैं जब दुबई गया तो हुसैन साहब ने मुझे बताया कि मारिया आजकल ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं और एक बड़े फोटोग्राफर से शादी कर ली है उन्होंने, और मैं अभी उनसे मिलने गया था तो उन्होंने मेरे 80 चित्र वो जो उनको मैंने भेंट करे थे वापस लौटा दिए, और वो उन्होंने 80 चित्र जो हैं अपने घर के एक कमरे में पूरे डिस्प्ले कर रखे थे। और वो बहुत महत्वपूर्ण चित्र इसलिए भी थे कि वो सारे चित्र 1956 के पहले के थे, और हुसैन साहब का हुसैन बनना 1956 में बिटवीन स्पाइडर एंड द लैम्प नाम की पेंटिंग से होता है, उसके बाद हुसैन हुसैन बनते हैं। मगर ये सारे काम जो हैं 50 से लेके 55-56 तक के सारे काम थे और बड़े खूबसूरत काम थे। ये उस जर्नी को दिखा रहे थे जो हुसैन साहब ने तय की थी अपने को पाने तक की। वो चाहते थे कि मैं हुसैन और मारिया के प्रेम प्रसंग पर एक नॉवेल लिखूं,
1: तो आपने
0: तो मैंने कहा कि भाई उसके लिए मेरे को प्राग जाना होगा और आपके साथ ही जाना होगा। तो हुसैन साहब बोले कि हाँ ठीक है, तो तुम अक्सर अक्टूबर नवंबर में आते हो, अगले साल तुम जून में आना, तो मैं जून में फ्री रहता हूँ तो अपन दोनों चले चलेंगे प्राग, और फिर मैं आपको उन सारी जगहों को ले जाऊँगा जहाँ हम लोग मिले थे और जो हुआ था। मगर नेक्स्ट ईयर जून 10 को उनकी डेथ हो गई तो वो हो नहीं
1: वो
0: पाया।
1: ख्वाहिश अधूरी रह गई।
0: तो उन्होंने जितना मुझे बताया था उसके आधार पर मैंने एक नॉवेल की शुरुआत का अंश लिखा हुआ है जिसका नाम है हुसैन और हसीना।
1: जी, तो हम शुभकामना करते हैं कि वो उपन्यास पूरा हो, क्योंकि अब हमारी भी दिलचस्पी बढ़ गई है कि हम पढ़ना चाहेंगे। लेकिन जब आप ये बता रहे थे कि उन्होंने सारी पेंटिंग वापस कर दी,
2: मेरा

0: यहाँ पर हम आपसे ये जानना चाहते हैं, बाबा कारंत की ऑटोबायोग्राफी भी आपने लिखी है, अब लेखन की बात चली है तो आपके लेखन के पक्ष को भी हम उजागर करना चाहते हैं। अपने श्रोताओं को बता दें कि अखिलेश जी बहुत बढ़िया, और इनके भी तो सुंदर कलम की ताकत है, बहुत बढ़िया लेखक भी हैं, तो आप इसके बारे में बताइए, कैसे बाबा कारंत की ऑटोबायोग्राफी लिखने की बात मन में आई, प्रेरणा मिली आपको?
1: हाँ, मैंने है ना ऑटोबायोग्राफी लिखी है हुसैन साहब की और रजा साहब की और जगदीश स्वामीनाथन की, और जो बीबी कारंत थे उनकी ऑटोबायोग्राफी उन्होंने अपने जब आखिरी दिन थे, बीमारी के दिन थे, उस दौरान कन्नड़ की एक प्रसिद्ध राइटर हैं वैदेही, उनको बोल करके अपनी ऑटोग्राफी लिखवाई थी कन्नड़ में, और उसमें ये हुआ कि उसका एक अंग्रेजी अनुवाद हुआ, और अंग्रेजी अनुवाद तो बाबा कारंत जो है भारत भवन में थे, और हम लोगों की बड़ी अच्छी उनके साथ दोस्ती थी और उनके साथ काफ़ी गहरे संबंध भी थे, तो मैंने कहा कि भाई उन्होंने जीवन भर काम जो किया है, ज़्यादातर काम जो है हिंदी नाटकों में किया है, हिंदी भाषा में किया है, और स्कंदगुप्त जैसा नाटक किया है, चंद्रगुप्त जैसा नाटक किया है, ये जयशंकर प्रसाद के इतने कठिन नाटक हैं कि जिसको करने के लिए किसी भी डायरेक्टर की हिम्मत नहीं हुई थी, मगर बाबा कारंत एक ऐसे विलक्षण व्यक्ति थे कि उन्होंने स्कंदगुप्त में से स्कंदगुप्त नाटक क्या है वो ढूंढ निकाला, और अगर आप पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद का ये नाटक तो शायद आप, मैं भी नहीं समझ पाया कि इसमें नाटक कहाँ है, ही वॉज अ ब्रिलियंट माइंड एक्चुअली। तो उनकी ऑटोबायोग्राफी का मैंने हिंदी में अनुवाद किया और वो अभी छपने के प्रोसेस में है
0: जी।
1: तो वो इस वर्ष आ जाएगा। ऐसे ही एक मार्क शागाल बड़े पेंटर हुए हैं रशिया के, जो पेरिस चले गए थे, और फिर बहुत ही जो तीन बड़े चित्रकार हैं जिन्होंने काफ़ी बड़े बदलाव लेके आए चित्रकला के संसार में, उसमें मार्क शागाल, पिकासो और मातिस का नाम लिया जाता है। तो उनकी भी जो ऑटोबायोग्राफी थी लावी, मतलब द लाइफ, उसका मैंने अनुवाद किया है आप बीती नाम से
0: जी जी।
1: और ये तो आप बीती सबको पढ़नी चाहिए, इसलिए भी कि मार्क शागाल ने अपने को इतने ऊपर से देखा है, इतना ऑब्जेक्टिवली देखा है कि आपको भरोसा नहीं होता ऐसा कि कोई व्यक्ति अपने से बाहर रह करके अपने बारे में इस कदर लिख सकता है। वो यहूदी थे तो यहूदियों पर उस वक्त रूस में जो जुल्म हो रहे थे उन सबका उन्होंने वर्णन किया, उनके परिवार पर जो संकट आते थे यहूदी होने के नाते, यहूदी होने के नाते उनको कई चीज़ों से वंचित रहना पड़ता था, मास्को में नहीं जा सकते थे यहूदी लोग बगैर परमिशन के, और अगर जाएंगे तो उनके पास एक नौकर का सर्टिफिकेट होना चाहिए कि मैं नौकर हूँ, ये सारा उन्होंने भुगता, मगर पूरी किताब में शिकायत का एक स्वर नहीं है। ये बहुत बड़ी बात थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी उसको पढ़ते वक्त, वो एक सीधे कविता की तरह उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है जो कि बहुत अच्छी है, तो मुझे लगता है कि वो हर किसी को पढ़ना चाहिए
0: जी,
1: कि कोई व्यक्ति अपने को अपने से बाहर रह करके कैसे देख सकता है इतने ऑब्जेक्टिवली,
0: ये बहुत बड़ी बात है और
1: जी।
0: एक वैचारिक समृद्धि भी मिलती है इस तरह की किताबें पढ़कर, तो हम सबको पढ़नी है ये किताब। और आपका जो लेखन पक्ष है उसमें और भी बहुत कुछ है, अचंभे का रोना और दरस पोथी और शीर्षक नहीं, इन किताबों में क्या दर्ज है हमारे श्रोताओं को?
1: ये जो मेरी किताबें हैं इन सारी किताबों में मैंने चित्रकला पे और चित्रकारों पे जो बातचीत करी है वो है इन सारी जगह में, और उसमें कई चीजें ऐसी भी हैं जो मतलब पहली बार किसी ने चित्रकला में उसको छुआ है और उस पर बात करी है, तो ये सारे निबंध हैं जो अलग अलग समय पे अलग अलग चित्रकारों के ऊपर भी हैं और चित्रकला के प्रश्नों पर भी हैं, तो ये मेरे निबंधों की किताब है एक तरह से, जो 5-7 है, एक उनके बारे में भी है शीर्षक नहीं, दरस पोथी और अचंभे के रोने के अलावा, तो इस तरह से मतलब काफी लिखने का मेरा कोई पैशन नहीं है, मतलब मैंने जितना भी लिखा है हमेशा किसी के कहने पे लिखा है
0: जी जी,
1: जैसे हुसैन साहब की बायोग्राफी भी उनके कहने पे मैंने लिखी
0: जी।

0: ऐसे ही, मतलब कभी किसी ने कहा कि स्वामीनाथन पे लिख दो, तो फिर स्वामीनाथन की बायोग्राफी मैंने उन पे लिख,
1: जी
0: तो ये सारे जो आर्टिकल्स या जितना भी मेरा लेखन का पक्ष है वो मतलब किसी के आमंत्रण पे है वो।
1: जी जी तो दोनों में से कौन सा आपका पसंदीदा शौक है, पेंटिंग या लेखन,
0: मेरे
1: दोनों?
0: लिए तो पेंटिंग ही है, मतलब लिखना
1: जी
0: तो कभी कभार है,
1: कभी
0: मतलब
1: कभार
0: मैंने,
1: ही है।
0: हाँ ऐसा कुछ खास नहीं। अभी इन दिनों में एक किताब लिख रहा हूँ स्वामीनाथन के साथ, मेरे जो पर्सनल संबंध थे इतने साल, 9-10 साल मैंने उनके साथ काम किया भारत भवन में, उसके बाद 14-15 साल उनके साथ संपर्क रहा, तो एक लंबा संपर्क था। और मेरे लिए भी बहुत आश्चर्य की बात थी स्वामी से मिलना और स्वामी जी को जानना, क्योंकि जब हम लोग 74 में पहली बार दिल्ली गए थे तो वहाँ पर ट्रिनाल देखने गए थे हम लोग, इंटरनेशनल एग्जीबिशन थी और बहुत एक्साइटेड थे। जब रात को लौट रहे तो वहाँ कैनॉट प्लेस पे एक हमने बैनर देखा, सिक्स हु डिक्लाइन ट्रिनाल, तो बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसे भी 6 लोग हैं, 6 कलाकार हैं जिन्होंने ट्रिनाल को जो है
1: जी
0: कैंसल आउट किया। तो धूमिमल आर्ट गैलरी में वो एग्जीबिशन थी, तो हम लोग धक्का मुक्की करके जैसे तैसे अंदर घुसे तो हमें स्वामीनाथन ही दिखे एक चित्रकार की तरह। तो उनसे मतलब ऑटोग्राफ लेने के लिए हमारे सीनियर लोग जो थे, तो मैं तो उस वक्त सेकेंड ईयर में ही था, तो मैं तो सबसे जूनियर था
1: जी
0: तो सबसे पीछे ही था, तो मैंने भी अपनी स्केच बुक आगे जब बढ़ाई तो स्वामी जी ने एक ऐसे पलट के देखा, मेरे ख्याल से फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड हमारी नजरें मिली होंगी, उन्होंने ऑटोग्राफ करके लौटा दिया और फिर हम लोग चले भी आए।
1: जी
0: फिर जब 81 में मैं इंटरव्यू दे रहा था, इंटरव्यू देने के लिए बैठा था, तो स्वामी जी मेरे पास सीधे आए और बोले हम लोग पहले मिल चुके हैं।
1: क्या बात
0: तो
1: है,
0: मेरे लिए तो एकदम से मतलब
1: आश्चर्य हुआ
0: बहुत ही
1: होगा एकदम
0: आश्चर्य
1: से।
0: था,
1: हाँ
0: क्योंकि
1: हाँ
0: मुझे तो याद रहना चाहिए था कि मैं स्वामीनाथन से मिला हूँ, पर स्वामी जी को वो इतनी सी झलक उन्होंने देखी, ठीक से देखा भी नहीं होगा शायद, इतनी
1: जी
0: भीड़ थी,
1: जी
0: इतना सारा क्राउड था, बस उन्होंने वो स्केच बुक लौटाते वक्त एक जो होता है देखना
1: बिल्कुल
0: उड़ती सी नजर, बट ही रिमेम्बर्ड वेरी
1: जी
0: क्लियरली कि हम लोग पहले मिल चुके
1: जी
0: हैं।
1: यहाँ पर याद कीजिए कोई गाना, कौन सा गाना सुनवाया?
0: मैं यहाँ पर मोहम्मद रफ़ी का एक गाना, फिर मिलोगे कभी
1: इस
0: इस
1: बात का
0: बात का
1: वादा
0: वादा
1: कर
0: कर
1: लो,
0: लूँ
1: सुनते हैं ये
0: जी
1: गाना।
0: हाँ।

0: गाने से पहले आपके लेखन पक्ष की बात हो रही थी, कुछ अनुवाद भी आपने किए हैं बहुत सारे, तो उन अनुवाद की किताबों के बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: तो एक तो मैं बता चुका हूँ मार्क शागाल की, मैंने ऑटोबायोग्राफी का अनुवाद किया। दूसरा एक बाज बहादुर और रूपमती की प्रेम कथा की एक छोटी सी किताब है, तो उसका मैंने एक अनुवाद किया था। एक स्वीडन के नॉवेलिस्ट हैं अग्नेता प्लायल, उनका एक नॉवेल है डॉग स्टार, वो बहुत ही बढ़िया नॉवेल है। और उसमें भी वही बात है कि वो सारी झंझटों तकलीफों और मुसीबतों के जिक्र के बावजूद भी उसमें शिकायत का कोई स्वर नजर नहीं आता है, उसकी जो नायिका है उसका। तो एक मैंने उसका अनुवाद किया, और ये जो बाबा कारंत के ऑटोबायोग्राफी है उसका अनुवाद। तो इस तरह से अनुवाद का कर्म जो है, मैं मतलब अपने पढ़ने के ही एक ढंग को विकसित करने का तरीका है
0: वो। जी जी बिल्कुल। अखिलेश जी, आपकी पेंटिंग्स बहुत सारे बड़े बड़े संस्थानों में संग्रहित हैं, देश में, विदेश में, यहाँ तक कि फ्रांस, ललित कला अकादमी, महात्मा अंतर्राष्ट्रीय संस्थान वर्धा और भारत भवन में तो है ही। तो ये जो इतनी सारी पेंटिंग्स का संग्रह है आपके पास, हमारे श्रोताओं को बताइए तकरीबन कितना बड़ा संग्रह है और कैसे किया ये सब मुमकिन? एक आम जिंदगी में एक आम चित्रकार के खाते में नहीं आता है।
1: नहीं, मेरे ख्याल से सभी चित्रकारों के खाते में आता है, और वो बस ये है कि उनको अपने काम पर भरोसा होना चाहिए और उसको लगातार दिखाते रहना चाहिए। मैं ये देखता हूँ कि बहुत सारे अच्छे चित्रकार मेरे दोस्त हैं और अभी भी इंदौर में रहते हैं, बढ़िया काम करते हैं, और सच में वो इतना अच्छा काम करते हैं कि मेरे को उनके काम को देख करके रश्क होता है कि काश मैं भी ऐसा कर सकता था, मगर वो लोग कभी दिखाते नहीं हैं। तो ये जो एक दिखाना है, प्रदर्शन करना है, ये एक बहुत ज़रूरी पक्ष है। अदरवाइज कुछ ऐसा हो जाएगा कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। मतलब हमें ये तो देखना ही चाहिए कि भाई हम जो काम कर रहे हैं तो लोगों तक पहुँचे कैसे। तो वो जो पहुंचना है उसी का एक रास्ता है जिसमें इन सारे संग्रह में वो कलाकृतियां जा पाती हैं, या उसमें लोग देखते हैं, पसंद करते हैं, तभी वो आपके चित्र को खरीदना चाहते हैं। तो इस तरह का अनुभव भी मेरा रहा है कि जब भी मैंने कहीं शो किया है तो लोगों ने उसको पसंद किया है, और उसमें से कई चित्र जो है ऐसे महत्वपूर्ण कलेक्शन में गए हैं।
0: और ये लोगों के लिए सीखने के लिए भी एक
1: जरूरी है कि हम जो भी काम कर रहे हैं तो उसको हम अगर दिखाएंगे नहीं तब उसके बारे में हम कैसे कुछ तय कर सकते हैं। हाँ, मतलब वो दर्शकों की प्रतिक्रिया भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना अपना बनाना। तो वो जो बनाना है, खाली वहीं पर चित्र खत्म नहीं होता है, चित्र पूरा होता है जब एक दर्शक उसे देखता है।
0: सही बात है। तो भारतीय संस्कृति और कला का बड़ा ही गहरा संबंध है, और आप अपनी पेंटिंग में भारतीय संस्कृति को और परंपराओं को भी उकेरते हैं, तो ये कैसे होता है उन तमाम श्रोताओं के लिए बताइए जो सीख रहे हैं।
1: हाँ, मुझे ये लगता है कि ये जो कुछ भी हमारी चित्रों में आता है या हमारे स्वभाव में या हमारी बातचीत में या हमारे लिखने में, वो आपके उसी अनुभव से पैदा होता है जो आपने यहाँ रह करके उसको जाना, समझा और भोगा है। तो ये जो संबंध आपका जो बना है अपनी परंपरा से और जो अपनी सामाजिक परिस्थितियों से और जो अपने दृश्य से, जो अपने रंगों से, वो ही आपकी एक स्थायी स्मृति में अनकॉन्शियसली चित्र बनाते वक्त काम करते हैं।
0: जी।
1: तो मुझे हमेशा ये लगता है कि भाई हमें बहुत जागरूक करके, एक अच्छा चित्रकार जो है वो बहुत कीन ऑब्जर्वर भी होता है, बहुत ध्यान से देखने वाला, वो एक एक चीज़ समझने वाला, मतलब अपनी तरह से उसको एब्जॉर्ब करने वाला होता है, और वो सारी चीज़ें

0: कॉन्शियसली बाद में आपके काम में दिखाई देती हैं। तो मुझे ये बहुत ही आश्चर्य हुआ था, मेरे जो प्रदर्शनियाँ हुई वो जापान से लेकर के कैलिफोर्निया तक, मतलब मेरे ख्याल से तमाम देशों में भी, और उसमें ऐसे भी हुआ कि जर्मनी में शो हुआ तो वहाँ भी पसंद किया गया, और जब फ्रांस में हुआ तो वहाँ भी पसंद किया गया, और जब लंदन में हुआ तो। मगर ये तीनों देश ऐसे हैं कि अगर एक तरह के चित्र एक देश में पसंद है तो दूसरे देश में नहीं हो सकते हो।
1: जी जी जी,
0: क्योंकि उन लोगों के बीच में अपनी एक जो देखने समझने की फांक है वो बहुत बड़ी है। तो ये नहीं हो सकता कि जो जर्मनी में पसंद किया जा रहा है वो फ्रांस और लंदन में भी पसंद हो, या जो लंदन में पसंद किया जा रहा है वो जर्मन लोग भी पसंद करें। तो मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है,
1: जी,
0: क्योंकि
1: जी।
0: जर्मन आदमी भी मनुष्य हैं और बाकी लोग भी जो देख रहे हैं वो सारे मनुष्य हैं, क्योंकि मेरे चित्र कोई गाय बैल जानवर तो देखते नहीं है। तो फिर धीरे धीरे मेरे को ऐसा लगा कि ऐसा कोई फॉर्म नहीं है मेरे इसमें जो कॉमन फॉर्म है, ऐसे कोई लाइन नहीं है जो कॉमन लाइन है, मगर रंग एक ऐसी चीज है जो हर व्यक्ति को आकर्षित करते हैं, तो वो शायद रंग ही हैं जो मनुष्य को संबोधित हैं। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही एनलाइटनिंग चीज थी कि मैं उसके साथ अपने चित्रों को भी समझ पाया कि मेरे चित्र में ऐसी कोई ये बात है जो एक मनुष्य को संबोधित है, चाहे वो जापानीज हो, चाहे वो, मतलब जो चित्र न्यूयॉर्क में पसंद किए जाते हैं वो कैलिफोर्निया में बिल्कुल नहीं होते हैं।
1: जी जी।
0: और मेरे साथ ऐसा हुआ कि न्यूयॉर्क में भी उतना ही पसंद किया गया जितना कैलिफोर्निया में। तो ये जो चीजें होती हैं, मतलब इसी ने मुझे बाध्य करा कि मैं अपने चित्रों में उस एलिमेंट को समझने की कोशिश करूं जो एक अलग अलग संस्कृति और अलग अलग विचार और अलग अलग जीवन शैली को जीने वाले लोग पसंद कर रहे हैं।
1: जी जी। यहाँ पर आपकी पसंद का कौन सा गाना सुनवाएं?
0: मेरे ख्याल से हमें वो है जरा खफा खफा।
1: जी, सुनते
0: ये,
1: हैं
0: ये वाला सुनता
1: है।

0: इस गाने के बाद हमारे श्रोताओं को बताइए कि आपके लिए माना जाता है कि आपने पेंटिंग की एक नई परिभाषा गढ़ी है, एक परंपरा को नए सिरे से परिभाषित किया है, तो ये किस तरह से किया है, क्या प्रयोग किए हैं आपने?
1: हम मेरे ख्याल से जो कलाएं हैं, सभी कलाएं जो हैं भविष्योन्मुखी हैं और वो अपनी परंपरा से कुछ लेती हैं और उसको पुनर्परिभाषित कर देती हैं। तो ये जो एक सतत उसका अपना स्वभाव है जो चलता रहता है, हमारी कलाएं जो हैं अतीत में नहीं झांकती हैं, वो अतीत से जो कुछ भी लेना होता है वो ले लेती हैं और अपने भविष्य में अपने विचरण जारी रखती हैं। तो ये जो उनका स्वभाव है कलाओं का, वो अपने आप ही इसको इस तरह का बना देता है जिसमें आप अपनी परंपराओं से बहुत सारी चीज़ें सीखते समझते और बरतते हैं और उनका एक नया रूप सामने आता है, वो पुनर्परिभाषित होकर के नए ढंग से आपके सामने आती हैं। तो ये एक संबंध जो है उसका अटूट संबंध है और इसीलिए कलाएं जो है हमेशा नई और आकर्षित करने वाली होती हैं।
0: जी, और हमारे उन श्रोताओं के लिए बताइए कि जो सीख रहे हैं, जो पेंटिंग की आपकी बारीकियां हैं, किन बारीकियों का ध्यान रखते हैं? जैसे बहुत सारी बातें हैं जो सीखते हैं, तो किस तरह का पेपर, ब्रश और रंग का मिलान कैसे करें वो सब?
1: ये जो है इसमें बहुत सारी चीज़ें तकनीकी रूप से भी ऑपरेट होती हैं और मेरे ख्याल से कोई भी चित्रकार अगर एक अच्छा चित्रकार है तो वो पहले तकनीक को अच्छे से जानता समझता है और फिर उसको बरतता है। तकनीक का गुलाम नहीं होता है, तकनीक उसकी गुलाम होती है।
0: जी जी।
1: तो चाहे हम वाटर कलर करें, चाहे हम पेस्टल कलर करें, चाहे एक्रेलिक, चाहे ऑयल, इन सब के करने का जो ढंग है वो अलग होगा। तो उसको जानना समझना बहुत ज़रूरी है। मेरे ख्याल से हर युवा चित्रकार के लिए ये जो पीरियड होता है अपना कॉलेज का समय, उसका 4 साल का 5 साल का, वो इन सब तकनीकों को सिखाने के लिए एक लंबा समय होता है और वो उस वक्त उसको पूरे तन मन धन से ये काम करना चाहिए कि वो अपने को एक विद्यार्थी की तरह बरते। अभी मैं देखता हूँ कि विद्यालय में जाते से ही वो अपने को आर्टिस्ट की तरह बरतने लगते हैं, जो कि एक गलत रास्ता है। आप हमेशा विद्यार्थी रहेंगे तो आप ज़्यादा सीख सकेंगे और मुझे ये भी लगता है कि एक चित्रकार जीवन भर एक विद्यार्थी ही बना रहता है, वो लगातार सीखता ही रहता है, दूसरों के चित्रों से भी सीखता है, अपने चित्रों से भी सीखता है।
0: जी, ये कहा जाता है कि एक चित्रकार के लिए ये जरूरी है जानना कि कौन कौन से रंग को मिलाएं तो अगला रंग बनता है, जैसे आपने बातचीत के दौरान बताया।
1: हाँ,
0: ये भी थोड़ा सा बताइए।
1: ये बहुत ही जरूरी होता है कि है ना, आप रंगों के मेल मिलाप से भी एक नया रंग बनाना सीखते हैं और आप रंगों को पास पास रख करके भी एक नया रंग का अनुभव पैदा करने में सक्षम होते हैं। ये दोनों चीजें आपको लगातार काम करने से ही आती हैं। रदा साहब अच्छी बात कहते थे कि चित्रकला वो मुश्किल प्रेमिका है, वो उसके पास चली जाएगी अगर आप 4 घंटे दे रहे हैं तो 6 घंटे वाले के पास चली जाएगी। तो जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज़्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं और फिर उसने अपने अनुभव से उसको बरत सकते हैं।
0: एक चित्र को बनाने में कितना वक्त लगता है ये बताएंगे?
1: इसमें दोनों तरह की चीज़ होती हैं। कई बार चित्र जो है खुद भी इतने जिद्दी होते हैं कि वो पूरा होने में 3 महीने 4 महीने लगा सकते हैं और कई बार काम शुरू होते से ही आप उसमें इतना रम जाते हैं कि उसी दिन वो चित्र पूरा होता है। ये एक तरह की परिस्थिति पे भी निर्भर करता है कि कब आप किस मूड में किस तरह से उस काम को शुरू किए हैं और फिर इसमें यात्राएं भी बीच बीच में बहुत सारे व्यवधान पैदा करती है। तो एक चित्र आपने बनाया तो चित्र बनाना हमेशा स्थगन का काम है, आप हमेशा अपने विचारों को रोक देते हैं वहां जहां आपने चित्र छोड़ा है। विचार बहुत तेजी से भागते हैं तो आप अगर उनका पीछा करने लगते हैं तो शायद चित्र बिगड़ सकता है, मगर आप रोक कर रखते हैं अपने को, अगले दिन आते हैं फिर वहीं से शुरू करते हैं, फिर उसके बाद अगले दिन आते हैं तब भी वहीं से शुरू करते हैं जहां छोड़ा था। तो ये जो एक

0: मुश्किल प्रक्रिया भी है कि जिसमें आप अपने को रोके रखते हैं, भले ही विचार आपके उससे आगे जा रहे हों, मगर आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते
1: और वापस उस चित्र में, उस यात्रा में वापस लौटना भी मुश्किल होता है
0: वो
1: जी। इस पूरी बातचीत में अखिलेश जी आपने बड़ी ही काम की बातें और बड़ी ही प्रयोगशील बातें बताई हैं, और इतनी सारी जानकारी के लिए, इतनी दिलचस्प बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विविध भारती परिवार की ओर से नमस्कार।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज के मेहमान। इसके अंतर्गत हमने सुनी मशहूर चित्रकार अखिलेश वर्मा से ममता सिंह की बातचीत।
3: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। श्रोताओं, शाम के 5 बजने को है, थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिकार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में जम्मू कश्मीर पर भारत का रुख दोहराया।
1: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। ये हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है, ऐसी बातें कही गई। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
0: ईरान के तेहरान में स्थित भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार के बावजूद भारतीय नागरिकों को जारी नए परामर्श में अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचने को कहा है। बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि राजदूत जेमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक की आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और यूएई के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमार जुकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो एनसीबी द्वारा आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करने के लिए एक साथ आएंगे। श्री शाह इस अवसर पर मादक पदार्थ नियंत्रण के लिए वर्ष 2026 के लिए दृष्टि पत्र जारी करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने देश भर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध पार्किंग और अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान तेज कर दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि ये कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार की जा रही है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों को अधिक सुरक्षित, सुगम और यात्रियों के लिए सुविधाजनक बनाना है। प्रवर्तन निदेशालय गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह से 3000 किलो मादक पदार्थ

0: आयात से जुड़े धन शोधन मामले में दिल्ली के 5 स्थानों पर छापेमारी कर रहा है। ये तलाशी हरप्रीत सिंह तलवार, शमसुद्रून और उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर की जा रही है। मादक पदार्थ से प्राप्त धन का कथित तौर पर दिल्ली के नाइट क्लबों में निवेश किया गया था। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला में आज निर्माणाधीन गोदाम ढहने से 3 लोगों की मौत और 5 लोग घायल हो गए। घायलों का SMKM अस्पताल में इलाज चल रहा है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, पुलिस, अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं तथा स्थानीय लोगों ने बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। मौसम विभाग ने कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में भी अगले 2 दिन इसी तरह का मौसम रह सकता है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में शनिवार तक तेज हवा के साथ वर्षा का अनुमान है। हॉकी इंडिया ने अगले महीने ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा कर दी है। खेदिन शिलेमा चानू कप्तान तथा निधि और एंगिल हर्षारानी मिंज गोलकीपर की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से अब पेश है फिल्म संगीत।

फिल्म संगीत का अगला गीत आइए सुनते हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में मेरे यार की शादी है फिल्म से। इस गीत में बोल हैं जावेद अख्तर के और संगीत से सजाया है जीत प्रीतम ने।

ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, अब पेश है प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे।

हाय डियर फ्रेंड्स, जाने कि इन तरीकों से कैसे अद्वितीय बने और दूसरों से अलग दिखे, अलग होना क्यों अच्छा है और महत्वपूर्ण भी। आज के लम्हे प्रोग्राम में चेतन के साथ एक ऐसी दुनिया में जहां समानता और विशिष्टता का मुखौटा लगा हुआ है, वास्तव में अद्वितीय होना विद्रोह का कार्य करना है, अनुरूपता के लहर के खिलाफ विरोध करना है। इस अर्थ में अलग होना जरूरी है क्योंकि ये व्यक्तिगत विकास और प्रामाणिक आत्म अभिव्यक्ति को बढ़ावा देता है, और नहीं सिर्फ भीड़ में अलग दिखने के लिए एक शानदार वेश धारण करना ही विशिष्टता नहीं है, बल्कि इसके बजाय एक विलक्षण दृष्टिकोण, एक अद्वितीय विश्व दृष्टि का पोषण करना है। अगर आप चाहे तो ये दुनिया के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए अलग होने के बारे में है। ऐतिहासिक रूप से सबसे प्रभावशाली व्यक्ति वे नहीं थे जो सिर्फ अलग दिखते थे, वे थे जो अलग तरह से सोचते और काम करते थे। लियोनार्डो डा विंची को ही लीजिए, एक बहुश्रुत व्यक्ति जिसने दूसरों को चकित करने के लिए नहीं बल्कि अपनी अतृप्त जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए अपने युग के मानदंडों को चुनौती दी। उनकी विशिष्टता प्रशंसा के लिए पहन जाने वाला परिधान नहीं था, यह उनकी अद्वितीय बुद्धि और दृष्टिकोण का स्वाभाविक परिणाम था। दोस्तों, मेरे अपने निजी अनुभवों ने मुझे सिखाया है कि बाहरी मान्यता के लिए विशिष्टता की तलाश करना व्यर्थ है। दोस्तों, आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है spice.lamhe.vanilla। दर्शकों के लिए तैयार की गई विशिष्टताएं क्षणभंगुर है, लेकिन जो खुद के लिए विकसित की जाती है वह शाश्वत है। आंकड़े इस धारण को पुष्ट करती है। जर्नल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस में प्रकाशित एक अध्याय में पाया गया है कि जो व्यक्ति व्यक्तिगत प्रामाणिकता का अनुसरण करते हैं, उनके जीवन में संतुष्टि और सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य का अनुभव होने की संभावना अधिक होती है। इसीलिए विशिष्ट व्यक्तियों के रूप में अब समय आ गया है कि हम दूसरों से अलग होने के साथ ही आकर्षण को त्याग दें। दोस्तों, मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा, हाउ टू बी यूनिक। इस दुनिया में जहां निरंतर संपर्क के महत्व दिया जाता है, अपने विचारों के साथ अकेले रहने के लिए समय निकालें। ईमेल और टेक्स्ट के युग में हाथ से पत्र लिखना संवाद करने का एक अनूठा और व्यक्तिगत तरीका हो सकता है। विषय वस्तु से अधिक गहराई से जोड़ने के लिए ई पुस्तकों या आइडिया पुस्तकों के बजाय भौतिक पुस्तकों का चयन करें। हमेशा डिजिटल उपकरणों पर निर्भर रहने के बावजूद कुछ कार्य के लिए कागज के नक्शे, मैनुअल, कैमरा, यहाँ तक कि टाइपराइटर जैसे पारंपरिक उपकरणों का उपयोग करें। ऐसे शौक अपनाएं जो मुख्य धारा में न हो या व्यापक रूप से लोकप्रिय न हो। एक ऐसे संसार में जहाँ अक्सर उनके कार्यों को एक साथ करने की क्षमता की प्रशंसा की जाती है, एक समय में एक ही कार्य पर ध्यान केंद्रित करें। हमेशा शॉर्टकट ढूंढने के बजाय कभी कभी लंबा अधिक सुंदर रास्ता चुनें। व्यक्तिगत स्पर्श जोड़ने के लिए उपहार खरीदने के बजाय उन्हें हाथ से बनाए कुछ गिफ्ट्स दें। वास्तविक जीवन के रिश्ते और अनुभवों के विकसित करने के लिए सोशल मीडिया पर बताए जाने वाले समय को कम करें। धीमी गति से जीवन जीने का अभ्यास करें। जीवन की धीमी गति को अपनाएं तथा गति या दक्षता की

अपेक्षा गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करें। पुराने जमाने के हुनर सीखे दोस्तों, ऐसे कौशल सीखे जो आजकल आम नहीं है, जैसे लकड़ी का काम, ऑयल पेंटिंग, एक्रिलिक्स, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों। आजकल डिजिटल जमाने में ये सब न सिर्फ कंप्यूटर पे हो जाता है, स्क्रीन पे होता है, पर आप फिजिकली कीजिए। डायरी या जर्नल मेंटेन करें और लिखें। केवल डिजिटल नोट्स के बजाय एक बौद्धिक डायरी या जर्नल रखें। अनोखे अनुभव के लिए कम लोकप्रिय यात्रा या रेयर लोकेशंस चुने। एक अलग श्रवण अनुभव के लिए विनाइल पर संगीत का आनंद लें। यू कैन लिसन टू ग्रामफोन रिकॉर्ड्स। अपनी खुद की सब्जियां या जड़ी बूटियां उगाने के लिए एक छोटा बगीचा शुरू करें। हमेशा पैसे का उपयोग करने के बजाय वस्तुएं या सेवाओं का व्यापार करें। कुछ नया बनाएं पर ध्यान केंद्रित करें, चाहे वो कला हो, संगीत हो, लेखन हो या रचनात्मक अभिव्यक्ति का कोई अन्य रूप हो, न कि केवल दूसरों द्वारा बनाई गई चीजों का उपभोग करें। पारंपरिक या लोक प्रकृति के नृत्य रूप को सीखें और उनका अभ्यास करें। पारंपरिक फोटोग्राफी की कला की सराहना करने के लिए फिल्म कैमरा से तस्वीर लें। ऐसी भाषा सीखें जो आमतौर पर नहीं सीखी जाती है, जैसे संस्कृत। हार्पसिकॉर्ड या लूट जैसे कम प्रचलित संगीत वाद्य यंत्र बजाना सीखें। शारीरिक परिरक्षण के इस पारंपरिक रूप को अपनाते हुए शरीर के वजन वाले व्यायाम में शामिल करें। पारंपरिक तरीकों से रोटी पकाने की कला सीखें। विभिन्न अनाजों के साथ प्रयोग करें। अद्वितीय अंतर्दृष्टि और दृष्टिकोण के लिए प्राचीन ग्रंथों या पांडुलिपियों का गहन अध्ययन करें। पक्षियों को देखने और उनके बारे में जानने में समय व्यतीत करें। ये एक ऐसी गतिविधि है जो धैर्य और प्रकृति के साथ जुड़ने को प्रोत्साहित करता है। आधुनिक जीवन की भागदौड़ से दूर प्राकृतिक वातावरण में ध्यान करें। ऐसी क्लासिक फिल्म देखें जो समकालीन मुख्यधारा का हिस्सा नहीं है। रणनीतिक सोच को बढ़ावा देने के लिए नियमित रूप से पारंपरिक बोर्ड गेम या शतरंज खेलें। प्राचीन फर्नीचर या वस्तुओं का मौखिक कहानी कहने की कला में निपुणता प्राप्त करें, जो सांस्कृतिक कहानियों को संरक्षित करने और साझा करने का एक सशक्त तरीका है। अपने साथ मौजूद किसी अनोखे कौशल जैसे कि पेपर कटिंग, ओरिगामी, पेंटिंग, म्यूजिक सार्वजनिक स्थानों पर सिखाएं। किसी अजनबी के भोजन या कॉफी का भुगतान चिपके से करें और बिना पहचान चले जाएं। किसी स्थानीय निसर्ग हम में गुमनाम रूप से फूल बेचकर किसी वरिष्ठ नागरिक का दिन खुशनुमा बनाएं। कोई अनूठी वस्तु अपनाएं जो आपकी पहचान बन जाए, जैसे कोई विशिष्ट टोपी या कोई अनोखा आभूषण। अद्वितीय कलाकृतियां बनाने के लिए किसी ऐसे कौशल में निपुणता प्राप्त करने के लिए समय समर्पित करें जो आज दुर्लभ या असामान्य है। तो एक अद्वितीय व्यक्ति होने का मतलब किसी क्षणभंगुर प्रकृति का पीछा करना या किसी आदर्श की नकल करना नहीं है। यह अपने चरित्र की बारीकियों, अपने विचारों की खासियतों और अपने कार्यों की सूक्ष्मताओं को अपनाना है। ये अपरंपरागत में प्रतिध्वनि खोजना है और अपरंपरागत में लय खोजना है। तो दोस्तों, यह था आज का लम्हे प्रोग्राम। नमस्कार दोस्तों, आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है spice.lamhe.vanilla।

ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। श्रोताओं, अब पेश है प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है उमंग उमंग उमंग उमंग। आप सभी श्रोताओं को आपके साथी अजीत का नमस्कार, जय जोहार, जय हिंद। श्रोताओं आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीन बाई मानिकपुरी जी ने। लिखते हैं, शांत रहना कमजोरी नहीं, ये समझदारी की निशानी है, क्योंकि हर जवाब शब्दों से ही नहीं लेकिन व्यवहार से भी दिया जाता है। इतने सुंदर विचार के लिए आप सबको उमंग कार्यक्रम की ओर से हमारा आभार। और आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है मगरपारा बिलासपुर से वसीम जाटव, अकरम जाटव, आफताब जाटव, महताब जाटव, मिराज जाटव और अल्ताफ जाटव। भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, पंकज, आयुषी और मीहू। जेल रोड कानपुर से सरफुद्दीन फातिमा थापा, वसीम अकरम बेलदार और डब्ल्यू सोनम कुटरिया। भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी और उनकी छोटी बहन कोमल। तो श्रोताओ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। जैसा कि हम हर बार कहते हैं इस बार भी कहेंगे कि जुड़े रहिए आपके प्रिय कार्यक्रम उमंग से। और आइए अब चलते हैं आज की श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। श्रोताओ जहां तक गुफाओं की बात है, लगभग सभी अजंता और एलोरा की गुफाओं से परिचित हैं, लेकिन उमंग कार्यक्रम में हमारा उद्देश्य है उन जानकारियों को उपलब्ध कराना जो लोक संज्ञान में कम है लेकिन पुरातत्व और इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जी तो श्रोताओं कल हमने बात की थी भीम बैठका की गुफाओं के बारे में, आज हम बात करेंगे कुटुम्बसर की गुफाओं के बारे में। कुटुम्बसर की गुफाओं को भारत की सबसे लंबी प्राकृतिक गुफाओं में गिना जाता है। तो आइए जानते हैं कि ये गुफाएं कहां स्थित हैं। श्रोताओं ये गुफाएं स्थित हैं छत्तीसगढ़ राज्य के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में, जगदलपुर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर। ये गुफाएं भूमि से लगभग 35 से 40 मीटर नीचे हैं। ये अत्यंत प्राचीन गुफाएं हैं, लेकिन श्रोताओं जब भी हम ऐसे स्थानों की बात करते हैं तो ये जिज्ञासा जरूर मन में आती है कि इनकी खोज कैसे हुई। तो आपको बता दें कि कुटुम्बसर गुफा का जनजातीय नाम गोपनसर था। सन 1951 की बात है, कुछ स्थानीय चरवाहे एक साही का पीछा कर रहे थे। पीछा करते करते वे एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां ढेर सारी झाड़ियां थीं, पत्थर भी थे। जब उन्होंने झाड़ियों को थोड़ा हटाया तो क्या देखते हैं कि वहां एक बहुत बड़ी गुफा का प्रवेश द्वार है। जी चरवाहे उस गुफा की बनावट देखकर हैरान रह गए, क्योंकि वहां चट्टानों के आकार विचित्र थे। वे अद्भुत आकार के थे, जैसे किसी ने उन्हें तराश कर बनाया हो। तो आइए जानते हैं कि उन पत्थरों को तराशने वाला कौन था। श्रोताओ यही तो खास और बड़ी अनोखी बात है कुटुम्बसर की गुफाओं के बारे में। जब विशेषज्ञ यहां पर आए तो उन्होंने पता लगाया कि चट्टानों को तराशने वाली प्रकृति ही थी। यहां पानी हमेशा टपकता रहता है, पानी के लाखों वर्षों से टपकते रहने के कारण इन चट्टानों को आकार मिला। यहां की चट्टानें चूना पत्थर से बनी है। श्रोताओ इन गुफाओं में कुछ आकृतियां तो ऐसी हैं जो किसी पशु, मुख्य रूप से हाथी, बाघ, विशाल मानव आकृति और शिवलिंग की तरह भी दिखाई देती हैं। जरा सोचिए श्रोताओ कैसे इन आकृतियों को प्रकृति ने लाखों वर्षों से पानी की बूंदें टपकाकर बनाया, अद्भुत है ना। जी किसी ने लिखा है कि यदि प्रकृति को शिल्पकार के रूप में देखना है तो कुटुम्बसर की गुफाओं में जरूर जाइए। इन गुफाओं के ऊपर भूमि में कई भूमिगत जल के झरने हैं जहां से निरंतर पानी की बूंदें गिरती रहती हैं। वैज्ञानिकों ने इन गुफाओं में अनेक दुर्लभ जीवों के जीवाश्म भी ढूंढे हैं। एक बात और आपको बता दें श्रोताओं कि इन गुफाओं के अंदर हमेशा घुप अंधेरा रहता है। वहां जाने के लिए पर्यटक गाइड्स और शक्तिशाली बैटरियों वाले लैंप्स लेकर ही जाते हैं। अंदर पानी बहता रहता है, लेकिन एक बड़ी रोचक बात है इन गुफाओं की, आपको बताएं क्या है वो? वो ये कि यहां के पानी में जो मछलियां पाई जाती हैं वे अंधी होती हैं, देख नहीं पाती। यहां के अन्य जलज प्राणी भी देख नहीं सकते। लेकिन एक सवाल है श्रोताओं कि भला ऐसा क्यों है, ना ये बड़ी अजीब बात। जी हां श्रोताओं, वैज्ञानिकों के अनुसार यहां हमेशा अंधकार रहता है। इससे संभवतः मछलियों और जलज जीवों की आंखें तो हैं लेकिन उनमें देखने

0: की क्षमता का विकास नहीं हुआ या फिर धीरे धीरे देखने की क्षमता समाप्त हो गई। एक सिद्धांत यह भी है कि पीढ़ी दर पीढ़ी अंधकार में रहने के कारण उनकी आंखें पूर्ण विकसित नहीं हुई, लेकिन दूसरी इंद्रियां अधिक विकसित हो गईं। मछलियां पानी में कंपन, स्पर्श और रासायनिक संकेतों जैसे गंध इत्यादि के माध्यम से रास्ता और भोजन तुरंत पहचान लेती हैं। इसलिए श्रोताओं, कुटुंब स्तर की मछलियों को दुनिया भर में ब्लाइंड केव फिशेस के नाम से भी जाना जाता है। और हां, इन गुफाओं की एक और बड़ी खास बात है, यहां के कुछ भागों में यदि फुसफुसा करके भी कुछ कहा जाए तो बड़ी दूर तक ये आवाज सुनाई पड़ती है। श्रोताओं, यहां पर कार्यकर्ता इको या गूंज का सिद्धांत। श्रोताओं, ये कहा जा सकता है कि ये गुफाएं वैज्ञानिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां के जंतु विकासवाद और भूविज्ञान के अध्ययन में महत्वपूर्ण है। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी भारत की एक और रहस्यपूर्ण और अनोखी गुफा कुटुंब सर के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा आज का प्रश्न है, कुटुंब सर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। कुटुंब सर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं? आप हमें हमारे IVRS नंबर 8804405559 पर या ईमेल पर यानी audio@ciet.nic.in पर इस प्रश्न का उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और आइए अब सुनते हैं आज के हमारे ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर शैक्षिक कार्यक्रम। तो सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम लीव्स ऑन द ट्री आर फॉलिंग। श्रोताओं, अंग्रेजी का यह सुंदर गीत पतझड़ और वसंत के मौसमों के बीच की प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करता है और विशेषकर संदेश देता है कि हमें प्रकृति का अवलोकन करके उनके सौंदर्य की प्रशंसा करनी चाहिए। ऐसा करके हम प्रकृति से बहुत कुछ सीख सकते हैं। द लीव्स ऑन द ट्रीज।
1: चिल्ड्रन, हैव यू एवर सीन द लीव्स ग्रोइंग इन द ट्री? द न्यू टेंडर लीव्स स्पर्टिंग आउट फ्रॉम द ब्रांचेस लाइक द फ्लावर्स ब्लॉसमिंग? Yes, we want to see them as the flowers blossom and leaves grow. But we never see them growing closely. Here is a song which makes you feel that you notice the growing of leaves and blossoming of flowers. Come on, let's sing the song to know and notice. But before we sing it, let's recite the song. Repeat after me, all right?
2: Yes!
1: The leaves on the trees are turning green, turning green, turning green.
2: The leaves on the trees are turning green, turning green, turning green.
1: The leaves on the trees are turning green, grow, grow, grow.
2: The leaves on the trees are turning green, grow, grow, grow.
1: Very nice. The flowers on the trees are beautiful, beautiful, beautiful.
2: The flowers on the trees are beautiful, beautiful, beautiful.
1: The flowers on the trees are beautiful, busy, busy bees.
2: The flowers on the trees are beautiful, busy, busy bees.
1: The leaves on the trees are falling down, falling down, falling down.
2: The leaves on the trees are falling down, falling down, falling down.
1: The leaves on the trees are falling down, yellow, red and brown.
2: The leaves on the trees are falling down, yellow, red and brown.
1: Yes, and now the leaves on the trees have fallen down, fallen down, fallen down.

0: इस खूबसूरत गीत के बाद आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है फादर डॉक्टर कामिल बुल्के। ये कार्यक्रम हिंदी साहित्य के प्रकांड विद्वान डॉक्टर कामिल बुल्के के जीवन और उनके द्वारा हिंदी साहित्य को दिए गए योगदान के बारे में, विशेषकर तुलसी साहित्य में उनके द्वारा लिखे गए शोध की विस्तार से जानकारी देता है।
1: यूरोप के पश्चिमी भाग में एक छोटा लेकिन खूबसूरत देश है बेल्जियम। बेल्जियम में एक प्रांत है फ्लैंडर्स। इस प्रांत में एक छोटा सा शांत और सुंदर शहर है रम्स कपेला। 1 सितंबर 1909 को अडोल्फ और मारिया बुल्के के घर में एक बालक का जन्म हुआ। माता पिता ने बड़े प्रेम से उसका नाम रखा कामिल बुल्के।
2: कामिल का अर्थ होता है पूजा की वेदी और बुल्के का अर्थ है सुगंधित पुष्प। और सच में जैसा कि नाम था, उन्होंने अपने नाम को शत प्रतिशत चरितार्थ किया। बचपन से ही उनकी गहरी रुचि अध्यात्म और साहित्य में दिखाई देने लगी थी। माता पिता अक्सर उनके बारे में बातचीत किया करते।
3: मारिया, क्या तुम्हें नहीं लगता कि कामिल का अध्यात्म की ओर कुछ ज्यादा ही झुकाव है?
2: मुझे तो अब ये लगने लगा है कि यदि ऐसा ही रहा तो एक दिन वो चर्च में सन्यासी बन जाएगा।
3: मुझे भी ऐसा ही लगता है।
2: स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने ल्यूवेन विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में बीएससी डिग्री प्राप्त की और 1930 में स्पष्ट दिव्य अनुभूति प्राप्त होने पर शिक्षक और पुरोहित बनाने वाले जेसुइट समाज में शामिल हो गए।
1: 6 नवंबर 1935 को 17 दिनों की समुद्री यात्रा के बाद वो बंबई आ गए, जो अब मुंबई है। उन्होंने भारत को अपने कर्मस्थली के रूप में चुना।

0: तीर्थ भूमि को नमन किया। ये गोस्वामी तुलसीदास जी की भूमि है। दरअसल अपनी पढ़ने की आदत के कारण बेल्जियम में ही उन्होंने तुलसीदास जी की कई चौपाइयों का जर्मन अनुवाद पढ़ा था।
1: उनमें से एक चौपाई से वो बहुत प्रभावित हुए। चौपाई थी, धन्य जन्म जग तीतल तासु, पितहे प्रमोद चरित सुन जासु।
0: अर्थात उस बेटे का जीवन धन्य है जिसका यश और कीर्ति सुनकर पिता आनंदित होता है। इन पंक्तियों से वे इतने प्रभावित हुए कि कवि तुलसीदास जी के अनन्य भक्त बन गए। उन्होंने लिखा था,
2: विश्व साहित्य में माता और पुत्र के संबंधों की बहुत सारी चर्चा मिल जाएगी, लेकिन पिता पुत्र के संबंधों की ऐसी व्याख्या और ऐसा ऊंचा आदर्श मुझे सिर्फ भक्त कवि तुलसीदास जी की रामायण में ही मिला।
0: भारत आने पर उन्होंने जो देखा उसने उनके संपूर्ण जीवन के चिंतन और दर्शन को एक नया आयाम दे दिया। उन्होंने अपने भारत आगमन के समय को याद करते हुए अपनी एक पुस्तक एक ईसाई की आस्था राम कथा और हिंदी में लिखा है,
2: 1935 में मैं जब भारत पहुंचा मुझे ये देखकर आश्चर्य बड़ा आश्चर्य हुआ कि रास्ते में सभी संकेत पट्टों पर सूचनाएं और स्थानों के नाम अंग्रेजी में थे। मैंने ये जाना कि अनेक शिक्षित लोग अपनी सांस्कृतिक परंपराओं से अनजान थे और इंग्लिश में बोलना गर्व की बात समझते थे। मैंने विचार किया कि मैं हिंदी भाषा में सिद्धता को प्राप्त करने का पूरा प्रयास करूंगा। हिंदी स्थानीय और जनजातीय भाषाओं में जो ज्ञान प्रणाली और सीखने की सामग्री अंतर्निहित है उनके संरक्षण और पुनरुत्थान से ही हमारा विकास संभव है।
0: से वे दार्जिलिंग गए और अल्प प्रवास के बाद अंततः गुमला आ गए जो आज के झारखंड राज्य में है। उन्होंने गुमला के सेंट इग्नेसियस विद्यालय में 3 साल तक गणित और भौतिकी पढ़ाया और हिंदी की कक्षा में अपने ही विद्यार्थियों को सहपाठी बनाकर हिंदी सीखने लगे। गणित पढ़ाने के बाद वे हिंदी की कक्षा में सबसे पीछे बैठ जाते थे और पूरी तन्मयता से हिंदी सीखते थे।
3: हिंदी के मूल रूप को समझने के लिए धीरे धीरे उन्होंने ब्रजभाषा और अवधि भी सीखी।
0: रांची आकर वे कुछ समय के लिए सन 1938 में झारखंड के ही एक शहर हजारीबाग गए और सेंट कोलंबस कॉलेज में पंडित बद्रीदत्त शास्त्री के निर्देशन में संस्कृत और स्वामी तुलसीदास की 2 प्रमुख रचनाओं रामचरितमानस और विनय पत्रिका का गहन अध्ययन करने लगे।
3: फिर उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्वतंत्र परीक्षार्थी के रूप में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और उच्च अध्ययन के अभिप्राय से वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय पहुंचे और वहां के हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा से मिले।
4: आइए फादर बुलके, आपका स्वागत है।
2: जी डॉक्टर धीरेंद्र, आपके स्वागत से मैं अनुग्रहित और कृतार्थ हुआ। मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि मैं हिंदी में अपना स्नातकोत्तर अध्ययन इलाहाबाद विश्वविद्यालय से करूं।
4: ठीक है, लेकिन उम्मीदवार की कुछ परीक्षा तो लेनी ही होगी।
2: जी मैं प्रस्तुत हूं।
4: तो फादर, मैं चाहता हूं कि आप तुलसीदास जी की विनय पत्रिका के 2 पदों की इसी समय सप्रसंग व्याख्या करें। ये लीजिए।
2: जी अवश्य।
0: फादर

0: कामिन बुल्के ने कुछ ही देर में उन पदों की लिखित व्याख्या कर दी। इस यूरोपीय श्वेत वर्णीय ईसाई पुरोहित को डॉक्टर वर्मा ने प्रारंभ में नौसिखिया समझा था, लेकिन जब उन्होंने व्याख्या पढ़ी तो
1: ओह अद्भुत। तो फादर, अब विलंब कैसा? आप इसी समय से विश्वविद्यालय के हिंदी संकाय में अध्ययन के लिए आमंत्रित हैं।
2: धन्यवाद डॉक्टर धीरेंद्र, ये मेरा सौभाग्य होगा।
1: जी।
0: स्नातकोत्तर अध्ययन के बाद फादर कामिल बुल्के ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा की प्रेरणा से डॉक्टर माता प्रसाद के निरीक्षण में शोध कार्य किया।
3: इससे जुड़ी एक बड़ी रोचक घटना है। फादर कामिल बुल्के चाहते थे कि उनका शोध हिंदी में प्रकाशित हो, लेकिन उन दिनों सभी शोध अंग्रेजी में ही हुआ करते थे।
0: उन दिनों इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अमरनाथ झा थे। फादर कामिल बुल्के ने इसके लिए विश्वविद्यालय के कुलपति से मिलने का समय मांगा।
2: क्या मैं अंदर आ सकता हूँ कुलपति?
4: आइए आइए फादर बुल्के। मुझे बताया गया है कि राम कथा पर आपका शोध बहुत अच्छा बन पड़ा है। आपने इसमें बहुत से नए आयाम भी जोड़े हैं।
2: जी कुलपति महोदय, मैं अपने शोध पत्र को प्रकाशित करने के बारे में ही आपसे विमर्श करने आया हूँ।
4: जी जी,
2: मैं चाहता हूँ कि मुझे अपने शोध पत्र को देवनागरी में प्रकाशित करने की अनुमति दी जाए।
4: मगर फादर, आप जानते हैं कि विश्वविद्यालय के नियमानुसार शोध पत्र सिर्फ अंग्रेजी में ही प्रकाशित किए जा सकते हैं।
2: कुलपति महोदय, जैसा कि आपको ज्ञात है, मेरा शोध का विषय ही राम कथा की उत्पत्ति और विकास है।
4: जी,
2: मैं दृढ़ता से विश्वास करता हूं राम कथा और तुलसी की आत्मा के विराट सौंदर्य के दर्शन केवल और केवल उनकी मातृभाषा में ही हो सकते हैं।
4: जी, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं फादर बुल्के।
2: तो मैं आपकी इस प्रतिक्रिया को एक सकारात्मक उत्तर के रूप में देखने की अपेक्षा करता हूं।
4: जी,
0: तो फिर क्या था? विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद की सभा बुलाई गई और लंबे विचार विमर्श के बाद नियमावली में विधिवत परिवर्तन किया गया। फादर का यह अनुरोध मान लिया गया। भारत के शोध परिदृश्य में ये एक महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि इसके द्वारा देवनागरी में शोध प्रबंध लिखने का रास्ता सबके लिए साफ हो गया और आदिवासी भाषाओं में भी पीएचडी स्तर तक पढ़ाई होनी शुरू हो गई।
3: उन्होंने राम और राम कथा के बारे में अपने शोध ग्रंथ में लिखा है।
2: देखिए, राम वाल्मीकि कथा के मिथकीय पात्र नहीं है, बल्कि वे तो इतिहास पुरुष हैं, जिनकी व्याप्ति सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। रामायण सिर्फ धार्मिक साहित्य ही नहीं है, बल्कि जीवन जीने के तरीके का दस्तावेज है।
0: उनके शोध की विशेषता ये है कि उन्होंने रामायण से संबंधित किसी भी विषय को छोड़ा नहीं है। हिंदी के अतिरिक्त उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बांग्ला, कश्मीरी, सिहली आदि भाषाओं के साहित्य में भी उपलब्ध राम कथा की गहन छानबीन की है।
3: उन्होंने तेलुगु में रचित श्री रंगनाथ रामायण और महर्षि कम्बन द्वारा तमिल में रचित कम्ब रामायण को भी संदर्भित किया। चार भागों में विभक्त 600 पृष्ठों में छपी उनकी ये थीसिस एक प्रतिनिधि शोध ग्रंथ साबित हुई और भारत सहित पूरे विश्व में विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित हुई। इसके बाद सारी दुनिया फादर बुल्के को जानने लगी।
0: अब जहां भी राम कथा होती, फादर कामिल बुल्के का नाम वक्ताओं की सूची में सबसे ऊपर होता।

0: देश भर में राम कथा पर व्याख्यान दिए। वे कहा करते थे,
1: सबहें नचावत राम गोसाई, मोहे नचावत तुलसी गोसाई।
0: सन 1950 में उन्हें बहुत सम्मान पूर्वक भारत की नागरिकता प्रदान की गई। इसी वर्ष वे रांची के सेंट जेवियर कॉलेज के हिंदी और संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बना दिए गए और आजीवन उसी पद पर रहे। वे हमेशा अपने विद्यार्थियों को उनकी अपनी भाषा में ही बातचीत करने हेतु प्रोत्साहित करते थे।
2: सबसे मशहूर अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश लिखने वाले फादर कामिल बुल्के ही हैं। 30 वर्षों की उनकी हिंदी साधना का जीवंत दस्तावेज उनका शब्दकोश माना जाता है।
0: उन्होंने इसमें 40,000 शब्द जोड़े और उसे प्रशासनिक, वैज्ञानिक और तकनीकी दृष्टि से अद्यतन करते रहे। फादर कामिल बुल्के बहुभाषाविद थे। वो अपनी मातृभाषा फ्लेमिश के अतिरिक्त अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, लैटिन, ग्रीक, संस्कृत और हिंदी पर भी संपूर्ण अधिकार रखते थे। इन भाषाओं के ज्ञान के कारण ही उन्हें शब्दकोश बनाने में बहुत सहायता मिली। उन्होंने लिखा था,
1: जब मैं अपने जीवन पर विचार करता हूं तो मुझे लगता है ईसा मसीह, हिंदी और तुलसीदास ये वास्तव में मेरी आध्यात्मिक साधना के 3 प्रमुख घटक हैं, और मेरे लिए इन 3 तत्वों में कोई विरोध नहीं है बल्कि गहरा संबंध है। मैं ईसा मसीह का परम भक्त हूं, हिंदी मेरा अनुराग है और गोस्वामी तुलसीदास मेरी प्रेरणा।
0: कामिल बुल्के की हिंदी सेवाओं के लिए 1974 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। जब लोग उन्हें फादर कहते तो वे किंचित संकोच से बोल उठते,
1: फादर अंग्रेजी शब्द है, यदि मुझे कामिल बाबा कहो तो सचमुच मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
0: 17 अगस्त 1982 को दिल्ली में इस अद्भुत शोध शिल्पी, राम कथा अनुरागी, बहुभाषाविद और हिंदी भाषा के अनन्य सेवक का निधन हो गया। उनकी मृत्यु शैया पर मात्र 2 पुस्तकें थीं, बाइबल और गोस्वामी तुलसीदास जी की विनय पत्रिका। उन्हें दिल्ली में ही दफनाया गया।
2: 36 साल बाद वर्ष 2018 में पद्म भूषण फादर कामिल बुल्के का पार्थिव अवशेष दिल्ली से उनकी कर्मभूमि रांची लाया गया। उनके अवशेष को पूरे सम्मान के साथ रांची सेंट जेवियर कॉलेज में दफनाया गया।
0: महान शब्द शिल्पी और हिंदी साहित्य के इस पुरोधा फादर कामिल बुल्के बाबा को हमारा आभार सहित शत शत नमन।
3: डॉक्टर कामिल बुल्के, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने साथी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
4: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
5: आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में जम्मू कश्मीर पर भारत का रुख दोहराया।
1: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। यह हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है, ऐसी बातें कही गई। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
0: ईरान के तेहरान में स्थित भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार के बावजूद भारतीय नागरिकों को जारी नए परामर्श में अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचने को कहा है। बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि राजदूत जैमिसिन ग्री और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमारजूकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करने के लिए एक साथ आएंगे। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत त्रिपुरा में 96 सड़क परियोजनाओं के निर्माण के लिए 211 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की है। इस परियोजना से राज्य में 160 किलोमीटर से अधिक लंबी सड़कों का निर्माण होगा। इन परियोजनाओं से राज्य की 96 बस्तियों को पहली बार हर मौसम में सुगम सड़क संपर्क प्राप्त होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने देशभर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध पार्किंग और अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान तेज कर दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया है कि ये कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार की जा रही है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों को अधिक सुरक्षित, सुगम और यात्रियों के लिए सुविधाजनक बनाना है। प्रवर्तन निदेशालय ने बेंगलुरु और मुंबई में राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड से जुड़े 9 ठिकानों पर छापेमारी की है। ये कार्रवाई कल शुरू की गई। ये जांच राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड और उससे जुड़े लोगों के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के कथित उल्लंघन के मामले में की जा रही है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारा तला में आज निर्माणाधीन गोदाम ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए। घायलों का एसएसकेएम अस्पताल में इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी स्थिति का जायजा लेने के लिए दुर्घटना स्थल पर हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, पुलिस, अग्निशमन और आपातकालीन सेवाएं तथा स्थानीय लोग बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स

0: जिसमें त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रॉड्रिक्स को हराया। मौसम विभाग ने कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में भी अगले दो दिन तक इसी तरह का मौसम रह सकता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी है ते तुसी सुन रहे हो विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz ते।

0: Piles Hospital. Call करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: आकाशवाणी दे चंडीगढ़ के अंदर तो हम तुसी सुनोगे एक फिल्मी गीत, ते गीत ए दिल है मुश्किल फिल्म तो अरिजीत सिंह दी आवाज़ विच।

0: रहे विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफ एम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ से स्रोतियों शाम के 6:10 होने वाले ने ते हुण तुसीं सुनोगे प्रादेशिक खबरां 6:10 ते हिंदी विच साडे केंद्र तो 6:20 ते पंजाबी विच जिन्हां नूं असीं आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो रिले करांगे।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री से जुड़े कथित वायरल वीडियो प्रकरण फर्जी रिपोर्ट मामले में कार्रवाई होगी। राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने फर्जी रिपोर्ट से संबंधित पूरे मामले में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच की मांग की। हरियाणा सरकार ने कहा, क्लर्क के पद पर सभी नियमित नियुक्तियां मानव संसाधन विभाग द्वारा की जाएंगी। हरियाणा डाक परिमंडल द्वारा चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में एन जनरेशन थीम पर आधारित आधुनिक डाकघर का उद्घाटन किया गया और अंबाला दूरसंचार सर्कल के प्रधान महाप्रबंधक कृष्ण बिहारी मीणा ने ग्रामीण युवाओं से भारत नेट उद्यमी योजना से जुड़कर आत्मनिर्भर बनने का आह्वान किया। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि पंजाब के मुख्यमंत्री से जुड़े कथित वीडियो प्रकरण से संबंधित फर्जी रिपोर्ट मामले में कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने आज पटियाला के रोडेवाल स्थित गुरुद्वारा साहिब में संत बलवंत सिंह जी की बरसी पर आयोजित समागम को संबोधित करते कर रहे थे। गुरुद्वारा साहिब में नतमस्तक होने के बाद मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा लगाए जा रहे आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया।
2: ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਤਾਜ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤੇ ਵੱਡੀ ਔਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤਾਜ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਾਨਵ ਜਾਤ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੋਚਣੇ ਦੀ ਗੱਲ।
1: उन्होंने कहा कि उन्हें इस मामले की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और पूरे प्रकरण की गहन जांच कराई जा रही है। प्रारंभिक जानकारी में हरियाणा की एक प्रयोगशाला का नाम सामने आया है जिसके आधार पर कथित रिपोर्ट तैयार होने की बात कही जा रही है।
2: देखिए, मैंने रात जानकारी लिखी है कि किसी ने एप्लीकेशन दिखती थी कि आपके इतने यहाँ पर कोई लेबोरेटरी पे रिपोर्ट आई है और वो गलत है, तो पूरी जानकारी ली। जानकारी भी जो तथ्य सामने आए थे दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस प्रकार का जेड़ा हुआ है अपनी कमी नहीं छुपाने तो दुर्भाग्य।
1: जांच के माध्यम से यह पता लगाया जा रहा है कि इसके पीछे कौन लोग हैं और इसका उद्देश्य क्या था। दोषी पाए जाने वाले के खिलाफ नियम अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारतीय जनता पार्टी इतनी निम्न स्तर की राजनीति नहीं करती कि गुरुओं के नाम पर लोगों की आस्था, विश्वास और भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि भाजपा गुरु परम्परा का सम्मान करने वाली पार्टी है। राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से जुड़े कथित वायरल वीडियो प्रकरण तथा उससे संबंधित सामने आए गंभीर आरोपों पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पूरे मामले की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच की मांग की है। चंडीगढ़ स्थित विधायक दल कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए सुश्री रेखा शर्मा ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक और पंजाब का युवा चिट्टे और अन्य नशों की भयावह समस्या से जूझ रहा है, वहीं दूसरी ओर राज्य की सर्वोच्च धार्मिक संस्थाओं की गरिमा को लेकर विवाद उत्पन्न किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया रिपोर्टों में सामने आए तथ्यों और शिकायतकर्ता जसप्रीत सिंह द्वारा सार्वजनिक रूप से लगाए गए आरोप अत्यंत गंभीर हैं। गौरतलब है कि गत 16 जून को गुरुग्राम स्थित एक होटल में लुधियाना के पुलिस आयुक्त स्वपन शर्मा तथा पुलिस अधीक्षक जशनदीप गिल कथित रूप से शिकायतकर्ता को मिले थे। सार्वजनिक रूप से सामने आए दावों के अनुसार इस बैठक का उद्देश्य मुख्यमंत्री भगवंत मान से जुड़े विवादित वीडियो को लेकर एक अनुकूल फॉरेंसिक रिपोर्ट तैयार करवाना था। मीडिया रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया है कि बैठक के सीसीटीवी फुटेज मौजूद हैं तथा कथित व्हाट्सएप चैट्स भी सामने आई हैं, जिनमें रिपोर्ट के विभिन्न हिस्सों में बदलाव, निष्कर्षों को संशोधित करने तथा रिपोर्ट को विशेष दिशा देने संबंधी चर्चाएं दिखाई गई हैं। हरियाणा सरकार ने स्पष्ट किया है कि हरियाणा लिपिकीय भर्ती एवं सेवा शर्तें अधिनियम 2026 के लागू होने के बाद क्लर्क के पद पर सब

0: भी नियमित नियुक्तियां मानव संसाधन विभाग द्वारा की जाएंगी। इनमें सीधी भर्ती के माध्यम की जाने वाली नियुक्तियों के साथ साथ अनुकंपा आधार पर की जाने वाली नियुक्तियां भी शामिल होंगी। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि अब अनुकंपा आधार पर नियुक्ति से संबंधित सभी मामलों की जांच हरियाणा सिविल सेवा अनुकंपा वित्तीय सहायता अथवा नियुक्ति नियम 2019 के अनुसार की जाएगी। संबंधित विभाग अध्यक्ष की संस्तुति तथा हरियाणा अधीनस्थ लेखा सेवा कैडर के अधिकारी द्वारा सत्यापन के उपरांत ऐसे मामले आगे आवश्यक कार्रवाई के लिए मानव संसाधन विभाग को भेजे जाएंगे। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। यह समाचार हमारे YouTube चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध है। हरियाणा डाक परिमंडल द्वारा चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय परिसर में आज एन जेन थीम पर आधारित नवीनीकृत डाकघर का उद्घाटन किया गया। मुख्य महा डाकपाल सचिन किशोर ने कहा कि यह डाक सेवाओं के आधुनिकीकरण तथा युवा पीढ़ी को डाक विभाग से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस डाकघर में बच्चों के लिए फ्री वाईफाई की सुविधा है। स्पीड पोस्ट में उन्हें 10% की छूट दी जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस पहल की शुरुआत की थी। आज यह आधुनिकीकृत डाकघर कृषि विश्वविद्यालय में जनरेशन एन को समर्पित किया गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बलदेव राज कंबोज ने कहा कि समय के साथ आए बदलाव को भारतीय डाक विभाग ने भी अपनाया है। आज डाकघर द्वारा पासपोर्ट सेवा से लेकर ई पुस्तकालय, मुफ्त वाईफाई व कैफे जैसी अनेक सुविधाएं दी जा रही हैं।
1: माननीय मंत्री जी का जो सपना है अपनी युवा पीढ़ी को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़ते हुए यहाँ पे डिजिटलाइजेशन और जितनी भी सेवाएं हैं वो सभी को दे सके, और इसकी शुरुआत जो है वो विश्वविद्यालयों से स्कूलों से की गई है। भारत सरकार का प्रयास है कि 500 से अधिक इस प्रकार के आधुनिकृत और सुधारीकृत डाकघर जो है वो पूरे देश में बनाए जाएंगे।
0: अंबाला दूरसंचार सर्कल के प्रधान महाप्रबंधक कृष्ण बिहारी मीणा ने ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं से भारत नेट उद्यमी योजना से जुड़कर आत्मनिर्भर बनने का आह्वान किया है। प्रधान महाप्रबंधक ने कहा कि भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत करने तथा युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत नेट उद्यमी योजना को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि भारत नेट उद्यमी ग्रामीण क्षेत्रों में BSNL सेवाएं उपलब्ध कराने वाले एजेंट के तौर पर काम करते हैं।
2: भारत नेट उद्यमी हमारे बेसिकली ग्रामीण क्षेत्र में सर्विसेज देने वाले एजेंट होंगे, और ये लोग जब हमसे 4B एग्रीमेंट के साथ जुड़ते हैं तो 50% इनको कमीशन दिया जाएगा। और इस स्कीम से अभी भी हमारे बहुत से उद्यमी 2 से 2.5 लाख का जो है कमीशन उठा रहे हैं। तो मेरा सभी नवयुवकों से अनुरोध रहेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा इसके साथ जुड़े और एक आत्मनिर्भर भारत के तहत वो अपना स्वरोजगार स्थापित करके आत्मनिर्भर बने।
0: उन्होंने कहा कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच मौजूद डिजिटल अंतर को कम करना है। भारत संचार निगम लिमिटेड ने ग्रामीण उपभोक्ताओं को सस्ती एवं बेहतर इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नया ब्रॉडबैंड प्लान शुरू किया है। इस योजना के तहत मात्र 259 रुपये प्रतिमाह में 25 MBPS की हाई स्पीड इंटरनेट सेवा तथा 700 GB डेटा उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही उपभोक्ताओं को एक OTT सेवा भी निःशुल्क प्रदान की जाएगी। यह जानकारी देते हुए अम्बाला दूरसंचार सर्कल के प्रधान महाप्रबंधक कृष्ण बिहारी मीणा ने कहा कि यह प्लान विशेष रूप से ऑनलाइन शिक्षा, वर्क फ्रॉम होम, डिजिटल भुगतान, वीडियो स्ट्रीमिंग तथा अन्य ऑनलाइन सेवाओं की बढ़ती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। सरकार समर्थित इस पहल से ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूती मिलेगी और नागरिकों को बेहतर इंटरनेट सेवाएं प्राप्त होंगी। हॉकी इंडिया ने 5 से 14 जुलाई तक ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा कर दी है। भारतीय टीम नए कोच टिम वाइट के नेतृत्व में जूनियर एशिया कप सहित आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी के सिलसिले में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में 7 मैच खेलेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब

0: सिंह सैनी ने कहा पंजाब के मुख्यमंत्री से जुड़े कथित वायरल वीडियो प्रकरण फर्जी रिपोर्ट मामले में कार्रवाई होगी। राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने फर्जी रिपोर्ट से संबंधित पूरे मामले में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच की मांग की। हरियाणा सरकार ने कहा क्लर्क के पद पर सभी नियमित नियुक्तियां मानव संसाधन विभाग द्वारा की जाएंगी। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: नमस्कार, यह आकाशवाणी है। हम तुसी चंद्र शर्मा तो प्रदेशक खबरें सुनो। पहले इस बुलेटिन दिया खास खबर। पंजाब च कल 25 जून तो वोटर सूची में महीने भर चलने वाली विशेष तीव्र सोध SIR होगी शुरू। केंद्रीय रेल राज मंत्री जगमीत सिंह बिट्टू ने मोटर जलंधर के मुख्य रेलवे फाटकों से बनाए जाने वाले ओवर ब्रिजों का नींव पत्थर रखा। केंद्र सरकार ने पुष्टि की सोने सीजन 2024 के पंजाब से यूरिया और डीएपी खाद की लोड़ी मात्रा उपलब्ध है। पंजाब सरकार वालों मोहाली विखे एनआरआई मिलने 2026 का आयोजन और मौसम विभाग ने अज तो लेकर 26 जून तक पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ में कुछ थानों पर गरज चमक में हल्की तो दरमियानी वर्षा द्वारा येलो अलर्ट जारी किया। पंजाब कल 25 जून तो वोटर सूचियों की एक महीना भर चलने वाली विशेष तीव्र सोध SIR शुरू करेगा। यह 14 जुलाई तक जारी रहेगी। पंजाब के मुख चुनाव अधिकारी अमृता मित्रा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान दसिया कि अंतिम वोटर सूची 1 अक्टूबर में प्रकाशित की जाएगी। उन्होंने कहा कि पहले बूथों की रेस्टमलाइजेशन 24 जुलाई तक की जाएगी। कल वोटर सूची 3 अगस्त में प्रकाशित की जाएगी। ऐतराज और दावे 3 अगस्त तो 2 सितंबर तक जमा करवाए जा सकते हैं। नोटिस की मियाद 3 अगस्त तो 28 सितंबर तक होगी। प्रक्रिया बारे जानकारी देते हुए श्रीमती मित्रा ने दसिया
2: ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 25 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 24 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 24,453 ਬੀਲੋਜ਼ ਡਿਪਲੋਏ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਆਫੀਸਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਸਿਕ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਰਿਲੀਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਫੋਕਸ ਕਰ ਸਕਣ ਸਿਰਫ ਇਸੀ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਪਿੰਗ ਹੈ, ਮੈਪਿੰਗ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 86.02% ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 1.84 crores ਪੀਪਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਊਸ ਟੂ ਹਾਊਸ ਇਨੋਮਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ BLO ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਗੇ ਵੋਟਰ ਨੂੰ, ਇਲੈਕਟਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ 2 ਪਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਸ ਦੇਣਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨੋਮਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।
1: कुछ मीडिया रिपोर्टों जिन्हें कहा गया है कि जिन्हें वोटरों की मैपिंग नहीं की गई उन्होंने नाम वोटर सूची विचों काट दिए जाएंगे बारे स्पष्टीकरण देते हैं। उन्होंने दसिया
2: एक बहुत ज्यादा चर्चा चल रही है, कई बारी मीडिया दे विच भी ऐदा दे खबरां देखण नूं आंदे है। उस संबंध च मैं ब्रीफ करना चाहवांगी कि अनमैप्ड बंदा रैंड करके उन्हां दी वोट कट्टी जाऊगी, ये बिल्कुल भी सरासर गलत है। मैं ये आश्वासन दिवाना चाहती हां सारे ही पंजाब दे वोटर्स नूं कि जेनुइन वोट जिहड़ी हैगी ओह किसी दी भी कट्टी नहीं जाऊगी। सिर्फ असीं ये कोशिश करिए कि जिहड़ा एन्यूमरेशन फॉर्म हाउस टू हाउस भेजा जा रहा है ओ एन्यूमरेशन फॉर्म साडे कोल जे तुसी आप भर सकदे हो बहुत चंगी गल है, अदरवाइज साडे BLO साहिबान हरेक हफ्ते तुहाडी मदद करनगे। तुसी फॉर्म भरो ते फॉर्म भर के सानू वापस करो ता जो कि असी तुहाडे नां नूं वोटर लिस्ट दे विच शामिल कर सकीए।
1: उन्होंने दसिया कि सूबे विच सब तो वध मैपिंग मानसा जिले विच 96.07% ते सब तो घट मोहाली जिले विच 69.05% हुई है। कल मुख चुनाव अधिकारी ने 25 जून तो 24 जुलाई तक बूथ पद्धर अधिकारियों BLOs के घर घर दौरे दौरान गन्ना फार्मों की वंड भरन ते एकत्रीकरण संबंधी मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों के नुमाइंदों नाल एक कमेटी भी की। केंद्रीय रेल राज मंत्री जगमीत सिंह बिट्टू ने जलंधर के मुख्य रेलवे फाटकों से बनाए जाने वाले ओवर ब्रिजों का नींव पत्थर रखा। यह रेलवे ब्रिज भीड़ भड़के वाले 2 रेलवे क्रॉसिंग गुरु नानकपुर बस स्टैंड तो गढ़ा रोड रेलवे फाटक से बनेंगे। इन्होंने दोनों रेलवे ओवर ब्रिज बनने में ट्रैफिक जाम की मुश्किल तो राहत मिलेगी। केंद्र सरकार ने पुष्टि की है कि सोने सीजन 2026 में पंजाब में यूरिया और डीएपी खाद की लोड़ी मात्रा उपलब्ध है। केंद्र सरकार के रसायन और खाद मंत्रालय के संयुक्त सचिव ਦੋਵਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 11,45,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ 1,80,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਡੀਏਪੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਕੋਲ 4,27,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ 98,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਡੀਏਪੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ।

0: विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz ते श्रोतियों थोड़ी देर छोएगा साडा अगला प्रोग्राम जयमाला। इस प्रोग्राम नु असीं आकाशवाणी दे मुंबई केंद्र तों रिले करांगे।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं देव दर्शन धूप अगरबत्ती धूप स्टिक्स कोन्स और हवन सामग्री।

जयमाला कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पहला गीत हेमंत कुमार और साथियों की आवाजों में, गीतकार हैं शकील बदायूनी, संगीतकार हैं नौशाद और फिल्म का नाम है गंगा जमुना।

0: लीजिए सुनिए भारतीय सेना गीत। गीतकार, संगीतकार और गायक कलाकार हैं कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है,

0: दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: ओ चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह है ये डटे हुए, देश के लिए जिए देश पर मिटे समर्पण का।

0: अभी आप सुन रहे थे भारतीय सेना गीत। गीतकार, संगीतकार और गायक कलाकार थे कैलाश खेर।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी।

0: साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: नसीर तो ज्यादा माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रौबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, आप वही करते रहोगे।
3: 20 जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन?
4: कौन लाया?
0: लव स्टोरी। इस फिल्म का गीत सुनिए अमित कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं राहुल देव बर्मन।

नूरी। इस फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज में। नगमा निगार है नक्श लायलपुरी, तर्ज है खयाम की।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे देव दर्शन धूप अगरबत्ती धूप स्टिक्स कोन्स और हवन सामग्री।
1: सुबह जलाओ शाम जलाओ
2: देव दर्शन धूप।
1: सुबह जलाओ शाम जलाओ
2: देव दर्शन धूप।
3: करूं हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या कि एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
4: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: एक दूजे के लिए इस फिल्म का गीत सुनिए लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाजों में। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में इस गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: साथियों, जयमाला कार्यक्रम में अब वक्त है एक छोटे से अंतराल पर जाने का।

अंतराल के बाद एक बार फिर से जयमाला कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में है। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, धुन है कल्याण जी आनंद जी की और फिल्म का नाम है गजब।

साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में। नगमा निगार है योगेश, संगीत है सलील चौधरी का और फिल्म का नाम है अन्नदाता।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: साथियों अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जय माला।

हवा महल कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं झलकी वो कैसी होगी, लेखिका सुधा जौहरी, प्रस्तुतकर्ता H.S. व्यास।

0: अरे मर गई रे, अरे कोई तो उठाओ मुझे।
1: अरे
0: अरे राम,
1: कैसे चलती हो माँ? क्या हुआ?
0: अरे मेरे बेटा उठाओ, अरे हाथ तो पकड़ो बेटा।
1: अरे हाथ दो ना माँ।
0: अरे मार दिया।
1: अरे भगवान को दुआ दो अम्मा के हड्डी पसली नहीं टूटी, और भीड़ भाड़ की वजह से स्कूटर की स्पीड कम थी। हाँ
0: अरे बेटा, मैं तुम्हारी अपनी ही धुन में चली जा रही थी, तुम्हारे स्कूटर से ना मेरा थैला टकराया और बस फिर पैर उखड़ गए बेटा।
1: लगी तो नहीं ना अम्मा?
0: अब बेटा बुढ़ापे का शरीर है तो गिरी तो झटका तो लगा ही ना, भीड़ को देखो कोई मेरा रुका भी नहीं। बेटा तुम कहाँ जा रहे हो बेटा?
1: मैं तो यहीं पास सब्जी मंडी तक।
0: अच्छा बेटा, तो चलो मुझे भी वहीं पर उतार देना, मुझे भी उधर ही जाना है, फिर मैं चली जाऊंगी।
1: अच्छा कुछ पानी वानी पियोगी अम्मा?
0: नहीं अब ठीक है बेटा, अब चले।
1: अच्छा लो बैठो पीछे। अम्मा कस के पकड़ना मुझे। हाँ
0: बेटा।
1: और सड़क पर चलो ना अम्मा, तो दाएं बाएं देख के चला करो। हाँ
0: अरे वो तो मैं बड़ी होशियारी से चलती हूँ हमेशा। वो तो क्या है ना, आज मंगलवार है तो हनुमान चालीसा बोलती जा रही थी, वो तो अच्छा हुआ कि पवन सुत ने बचा लिया।
1: वैसे कौन हो अम्मा, कहाँ रहती हो?
0: अरे बेटा मैं कौन, छोटी थी तो सब शंभू की छोकरी कहते थे, बड़ी हुई तो राम नारायण की बहू, फिर शंकर की अम्मा, और अब सोनू की दादी।
1: फिर भी माँ बाप ने कोई तो नाम रखा होगा ना अम्मा, है?
0: हाँ बेटा रखा था नाम शारदा। अरे बेटा तुम्हारा नाम क्या है?
1: मेरा नाम अंशु, अंशुमान।
0: ओ अंशु, ये तो बेटा आंसू जैसा नाम लागे, आगे क्या बोला बेटा?
1: मान, अंशुमान। सूरज को कहते हैं अम्मा।
0: ओ अब आजकल के नाम तो बेटा समझ में भी ना आवे। अब मेरा ही नाम देखो ना शारदा, नाम विद्या की देवी, और पढ़ी कुल पांचवी तक। अरे बेटा सब्जी मंडी तो आ गई।
1: हाँ, आपको कहाँ उतारू अम्मा, मुझे तो यहीं सामने जाना है।
0: बस बेटा यहीं सामने उतार दे। अरे ये तो कुछ जासूस इंटरनेशनल है बेटा, तुम जासूसी करते हो?
1: नहीं नहीं वो तो ऐसे ही कुछ काम है अम्मा।
0: अच्छा भगवान तेरा भला करे। अच्छा चलती हूँ।
1: क्या बुढ़िया है, वहां तो हाय हाय कर रही थी और अब क्या फुर्ती से जा रही है मटक मटक कर। खैर
2: जैन सर, ये जासूसी कंपनी खोले एक हफ्ता हो गया पर कुल दो केस आए और वे भी हमसे सुलझे नहीं।
3: यू नो मधु, हर काम में वक्त लगता है। पहले कुत्ता खोने का केस आया था, दे वर स्टूपिड पीपल, छोटा कुत्ता छोटा कुत्ता छत पर चढ़ गया, उतरना उसको आता नहीं था और बस उन्होंने शोर मचा दिया।
2: राइट सर, एकदम बुद्धू लोग थे।
3: और दूसरा लड़की भागने वाला, हम तो उसे ढूंढ लेते पर लड़की समझदार थी, ब्राइट गर्ल, पता चल गया उसको कि दोस्त गड़बड़ है, सो घर लौट आई।
2: अगेन यू आर राइट सर।
3: यू नो ये शहर बहुत बड़ा यानी मेट्रो टाइप नहीं है। यू नो जब मैं न्यूयॉर्क में था।
2: सर लाल बत्ती जली, कोई गेट पर है सर।
3: देखो देखो उस छिपी खिड़की से देखो, मैं भी देखता हूँ।
2: वो देखिए सर, स्कूटर पार्क करके एक नौजवान आ रहा है।
3: हाँ तुम बाहर के ऑफिस में जाओ क्विक, बस इसे ऐसा लगना चाहिए हम बेहद व्यस्त जासूस हैं। यू नो द यूजुअल ट्रिक्स।
2: ऑफ कोर्स सर, 5 मिनट में लेकर आती हूँ, गुड लक सर।
3: तब तक मैं ऑफिस जमा लूँ। ओहो कितनी मिट्टी है मेज पर, साफ करने का भी वक्त नहीं है, खैर देखा जाएगा। हाँ मेरी किताब है, ये मोटी वाली खोल लेता हूँ।
2: मे आई कम इन सर?
3: कम इन।
2: सर ये मिस्टर अंशुमान है।
3: हेलो आई एम जयंत, जयंत भंडारकर।
1: हेलो सर, सर आप अभी लेंस से क्या देख रहे थे, यहाँ तो कुछ भी नहीं है।
3: आप देख रहे हैं ना मेज पर कितनी धूल है,
1: है?
3: इस पर जो भी आता है अपने फिंगरप्रिंट्स छोड़ जाता है।
1: ओ
3: और भी बहुत कुछ है, वो हमारी सीक्रेट स्पेशल बातें हैं।
1: जी जी
3: मैं बता नहीं सकता। कहिए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं?
1: वो बात ये सर कि वो क्या हुआ कि मेरे माँ बाप ने मेरी शादी तय कर दी है सर।
3: और आप करना नहीं चाहते हैं क्योंकि आप किसी और लड़की से मोहब्बत करते हैं, राइट?
1: नहीं नहीं सर ऐसी बात नहीं है, बात ये सर कि मैं उस लड़की को देखना चाहता हूँ, उससे मिलना चाहता हूँ, और उससे भी पहले ये जानना चाहता हूँ कि वो लड़की है कैसी।

0: तो आप उसके घर या कॉलेज को नहीं चले जाते?
1: नहीं जा सकता ना सर।
0: क्यों?
1: क्योंकि सर वो एमए कर चुकी है और उसके घर के सब लोग मुझे पहचानते हैं। लड़के लड़की को एक दूसरे को दिखाने का चलन हमारे यहाँ आज भी नहीं है ना।
0: ठीक है, आप हमें सिर्फ उसका पता दे दें, फिर सब कुछ हम पर छोड़ दें। वो लड़की का नाम क्या है?
1: जी लड़की का नाम है शारदा। लाइए पता मैं लिख देता हूं। सर आपकी फीस?
2: फिलहाल तो आप 500 रुपए जमा करा दें।
1: बिल्कुल, ये लीजिए, ये लीजिए सर। सर आप लोग कैसे क्या करेंगे?
0: लिसन मिस्टर, मेरी सेक्रेटरी मधु उससे दोस्ती करेगी, फिर वह उसको किसी सुनसान पार्क में ले जाएगी।
1: फिर सर?
0: उधर एक गुंडा इनको छेड़ेगा।
1: सर फिर?
0: दूसरी तरफ से मैं और आप आकर उस गुंडे को पीटेंगे।
1: हाँ सर।
0: मैं उसे कॉलर पकड़ कर ले जाऊंगा और आप उससे आराम से बातें करिएगा।
1: वाह क्या बढ़िया, ब्रिलियंट आइडिया सर, क्या प्लान है सर, एकदम फिल्मी अंदाज में, बाय गॉड मजा आ जाएगा सर।
0: आप जानते हैं न्यूयॉर्क में लोग मुझे क्या कहते थे?
1: क्या कहते थे सर?
0: जायंट नहीं, जायंट।
1: जायंट? पर सर जायंट तो मतलब वो क्या कहते हैं कि बड़ी बड़ी भारी भारी भरकम चीज को कहते हैं, और आप तो माशाल्लाह बड़े मुख्तसर से एकदम मिनी इंसान हैं, छोटे से बिल्कुल हल्के फुल्के हैं।
0: यही तो है, कोई देखने में जायंट लगता है विशाल का है, और कोई दिमाग से जायंट होता है जैसे शर्लिक होम्स, जेम्स बॉन्ड, हरक्यूलिस।
1: ये सब तो सर दुनिया के मशहूर उपन्यास वाले जासूस है ना सर।
0: हाँ, और मैं असली जासूस हूँ, जयंत द जायंट।
2: सर दूसरे ऊपर के खर्चों के लिए जैसे गुंडे को देना होगा और फिर हम लोगों का आना जाना।
0: राइट, क्या नाम है आपका?
1: जी वो क्या बोलते हैं, अंशुमन। अंशुमन
0: मिस्टर अंशुमन, 500 रुपये और जमा करा दीजिए।
1: लीजिए सर, ये लीजिए मैडम।
0: तो ठीक है अंशुमन, हम आपको संपर्क करके जगह और दिन बता देंगे।
1: ठीक है सर, मैं चलता हूँ। सर जितनी जल्दी हो सके प्लीज। अच्छा सर मैं चलता हूँ, बाय सर।
2: सर गया, हमें 1000 रुपए दे गया।
0: पैसे लेने वाले गुर तो तुम्हें याद है ना मधु?
2: यस सर, पहले 500 रुपए बोलो, अगर उसके चेहरे पर कोई रेखा ना उभरे तो किसी बहाने 500 और मांगो, और फिर कोई रिएक्शन ना हो तो 500 और।
0: खैर अब तुम बताओ, उस लड़की शारदा से दोस्ती कैसे करोगी?
2: वो तो मैं कर लूंगी, पर गुंडे का इंतजाम वो मुझसे नहीं होगा।
0: अरे दूर जाने की क्या जरूरत है, मेरा भाई है ना, वो मेरी बुआ जी का लड़का, वो तो लड़की छेड़ने की बात सुनते ही फौरन मान जाएगा।
2: आप चंद्र जी की बात कर रहे हैं? वो तो इतने हैंडसम हैं, गुंडे कैसे लगेंगे सर, और फिर वो तो जेंटलमैन लगते हैं।
0: मेकअप माय डियर मेकअप, तुम बस देखे जाओ।
2: पता तो यही लगता है, वो पीला वाला घर है। चलो घंटी बजाते हैं। चल मधु, ओखली में सिर दिया है तो मूसलों से क्या डरना।
3: जी कहिए, क्या काम है आपको?
2: मैडम मैं कुछ सर्वे कर रही हूँ इस क्षेत्र की महिलाओं का, आपसे कुछ पूछ सकती हूँ?
3: हाँ हाँ आइए बैठिए, अब पूछिए जो भी पूछना है आपको।
2: आपका नाम?
3: टाइप किया हुआ फॉर्म है ना आपके पास, लाइए मैं खुद ही भर देती हूँ। वैसे मेरा नाम शारदा है, आप?
2: मधु, मैं मधु हूँ।
3: इस सर्विस से क्या होगा मधु जी?
2: पता चलेगा ना किस उम्र यानी एज ग्रुप की महिलाएं क्या क्या कर रही हैं।
3: अच्छा ये लीजिए, भर गया आपका फॉर्म।
2: ओ तो आपने एमए किया है, आजकल क्या कर रही हैं आप?
3: अभी तो कुछ नहीं मधु जी, सिर्फ बोर हो रही हूँ।
2: शारदा जी कोई बॉयफ्रेंड वगैरह नहीं बने आपके, यानी आजकल तो चलन है फैशन है।
3: अरे नहीं मधु जी, हमारी तो परवरिश हमारे संस्कार कुछ ऐसे ही हैं। पर ये बताइए आपका है कोई खास?
2: अरे कहां, ना किसी ने सीटी बजाई, ना कभी किसी हैंडसम यंग मैन से टक्कर हुई, पर हाँ मन जरूर करता है कि कोई स्पेशल मिले।
3: जरूर मिलेगा मधु जी, ऊपर वाला सबका जोड़ीदार बनाता है। वैसे आप रहती कहाँ है?
2: शारदा जी बस यही पास ही। तुम शाम को बोर होती हो तो घूमने क्यों नहीं आती?
3: अब अकेले कहाँ जाऊँ मधु।
2: मैं भी अकेली हूँ, ऐसा करें कल शाम पार्क चलें, पर जरा सुनसान है।
3: अरे अच्छा है मधु, भीड़ भाड़ से वैसे भी जी घबराता है, मुझे तो सुनसान जगह ज्यादा पसंद है। चलो एक दोस्त तो मिली आप जैसी।
2: तो कल शाम 6 बजे?
3: हाँ ठीक है मधु, कल साथ चलते हैं। ऑलराइट ओके मधु, बाय
2: बाय। ओके ओके।

0: हे चंदर,
1: वो देखो वो आ रही है मधु और शारदा।
2: हाँ। जयंत भैया आप देखिए, आपकी मधु कितनी अच्छी लग रही है पिंक लिबास में, एकदम गुलाब के फूल जैसी।
0: अबे तुझे मधु को नहीं, मधु को नहीं शारदा को छेड़ना है। हाँ। वो देख उधर, वो वहां अंशु भी छिपा बैठा है। हाँ। अरे वो पास आ गई है, जा।
3: सच मधु, कितनी ताजगी है हवा में, जी चाहता है इसे बाहों में समेट लें।
4: पर सन्नाटा कितना है, पता नहीं लोग यहाँ क्यों नहीं आते। शारदा देखो तुम्हारे पीछे कोई आ रहा है।
3: आने दो, होगा पार्क में कोई।
4: शारदा अजीब सा आदमी है।
3: अरे कुछ नहीं करेगा, आराम से चलो। ओ देखो मिस्टर, यह बदतमीजी नहीं चलेगी यहाँ पर, उधर जाकर टहलो जो तुम्हारी कोहनी जो है ना लड़कियों को ना लगे।
2: कोहनी जरा तिरछी हो गई, आपकी ये चुन्नी भी कितनी खूबसूरत है, इसे छू लूं?
3: आपकी टोपी बनियान रुमाल और लूंगी भी बहुत खूबसूरत है, मैं भी जरा इन्हें छू लूं। ये ले गुंडा।
2: अरे मेरी
3: अरे, अरे ये खा,
2: अरे
3: अरे,
2: अरे, अरे, अरे, अरे, अरे, अरे मेरी लूंगी, मेरी लूंगी।
4: बस शारदा बस बस बस, अरे बस करो लोग आ रहे हैं। बस शारदा, अरे बस करो लोग आ रहे
2: हैं। अरे क्या हुआ, अरे क्या हुआ?
3: तो अंशु मां,
2: तुम आप मुझे जानती है?
3: फोटो देखी है तो ये ड्रामा तुमने किया है?
2: मैं दरअसल तुम्हें देखना, तुमसे मिलना, बात करना चाहता था शारदा।
3: तो अब ये बेचारा तो बीच में ही पिट गया ना, अब उठाओ भाई इसे।
4: इन्हें मैं संभालती हूँ। चंदर जी अब ठीक तो है ना?
0: अरे क्या घपला हो गया, जासूसी की ऐसी की तैसी।
4: चंदर जी ज्यादा लगी क्या?
2: तुम्हारा हाथ लगते ही दर्द गायब हो गया मधु, लग रहा है गुलाब के फूलों का सहारा मिल रहा है।
4: हटिए भी,
3: तो इसलिए तुम जासूसी संस्था में गए थे?
2: हाँ वो, पर तुम्हें कैसे मालूम? तुम्हारी शक्ल तुम्हारी आवाज पहचानी सी क्यों लग रही है मुझे?
3: वो लगता है तुम्हें कुछ गलत फहमी हो रही है।
2: मैंने तुम कल तुम अम्मा तुम्ही थी ना?
3: हाँ बेटा मैं हूँ शंभू की छोरी शारदा।
2: तो कैसा लगा शारदा? ए शर्माने से काम नहीं चलेगा, चलो मैं ही बता देता हूँ, तुम मुझे बहुत अच्छी लगी शारदा, बस मेरी कल्पना साकार हो गई, अब तुम बताओ ना।
0: अरे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे, अरे ये इन दोनों को क्या हुआ? लगता है कि जासूसी का धंधा बंद करना पड़ेगा, ये सेक्रेटरी तो गई काम से। मधु मधु,
4: सॉरी सर, लो चंदर जी पानी पियो।
3: क्यों मधु, हो ही गई ना हैंडसम यंग मैन से टक्कर, हट।

0: वो कैसी होगी। अभी आप सुन रहे थे ये झलकी, लेखिका थी सुधा जौहरी, प्रस्तुति HS व्यास।
1: ये हमारे आकाशवाणी जयपुर केंद्र की प्रस्तुति थी।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, हर दिल से जुड़ी देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम चित्रलोक बस थोड़ी ही देर में।

विविध भारती से प्रस्तुत है नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रलोक। लीजिए सुनिए गायक और संगीतकार ए.आर. रहमान और श्वेता शेट्टी की आवाजों में महबूब का लिखा गीत। फिल्म का नाम है रंगीला।

आइए अब सुना जाए अगला गीत अलीशा चिनॉय कुमार सानू और साथियों की आवाजों में। गीतकार हैं जफर गोरखपुरी और फिल्म का नाम है होंडा राज।

अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। यह है राष्ट्रीय सेवा विविध भारती। आइए सुनिए अगला गीत अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में। गीतकार हैं समीर, संगीतकार हैं नदीम श्रावण और फिल्म का नाम है राजा।

0: जानी मानी फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: चित्रलोक कार्यक्रम की अगली पेशकश आपको सुनवाते हैं वाजिद खान, श्रिया घोषाल और साथियों की आवाजों में। गीतकार हैं कौसर मुनीर, संगीत है साजिद वाजिद का और फिल्म का नाम है एक था टाइगर।

इसके साथ ही कार्यक्रम चित्रलोक समाप्त होता है। सुनिए, सुनाइए और सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर के साथ व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून से सोल में मुलाकात की। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम गिरने से 3 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी। अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा से अचानक बाढ़ आई, असम में चेतावनी जारी की गई। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कनाडा आज रात स्विट्जरलैंड से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली में बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत ग्रीर के नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक तथा प्रगतिशील तरीके

0: से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमारजूकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
1: It is really our responsibility.
2: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूँगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
1: रिलेशनशिप इन अ मोर डिफिकल्ट वर्ल्ड।
0: ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय नागरिक जब तक आवश्यक ना हो ईरान की यात्रा न करें। एक रिपोर्ट।
3: जो भारतीय नागरिक वर्तमान में ईरान में रह रहे हैं या किसी आवश्यक कारण से वहां यात्रा करने जा रहे हैं, उन्हें विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे अपने आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। दूतावास ने ईरान में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों और वहां पहुंचने वाले लोगों से जल्द अपना विवरण भारतीय दूतावास में पंजीकृत कराने की अपील की है। भारतीय नागरिकों को दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया मंचों पर जारी होने वाले अपडेट तथा सलाह पर नियमित रूप से नजर रखने की भी सलाह दी गई है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: इस बीच ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की है। ये वाणिज्यिक जलमार्ग को बहाल करने और खाड़ी में फंसे हजारों नाविकों के संकट को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ओमान सरकार ने कहा है कि ये पहल संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के समन्वय से की गई है। इससे क्षेत्रीय संघर्ष से जुड़ी महीनों के व्यवधान के बाद जलमार्ग से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही को सुगम बनाया जा सकेगा। संगठन के अनुसार क्षेत्र में 11,000 से अधिक नाविक फंसे हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में वीआईपी कल्चर इन इंडिया पावर प्रिविलेज एंड डिस्टेंस फ्रॉम डेमोक्रेसी नामक पुस्तक का विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये पुस्तक सत्ता संस्थानों और लोगों के बीच मौजूद दूरी को जन केंद्रित शासन के माध्यम से इस दूरी को कम करने की आवश्यकता पर बल देती है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये पुस्तक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत की पहचान का उल्लेख करती है।
4: That Bharat is the world's largest democracy and is also called the mother of democracy. Our constitution envisions a society based on justice, equality, liberty and fraternity.
0: उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदाहरण देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने नीट परीक्षा देने वाले छात्रों को यातायात असुविधा से बचाने के लिए हवाई अड्डे से अपनी उड़ान लगभग 45 मिनट तक विलंबित की थी। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह ने आज पंजाब के जालंधर में दो महत्वपूर्ण रोड ओवरब्रिज आरओबी परियोजनाओं की आधारशिला रखी। उन्होंने बताया कि जालंधर शहर जालंधर कैंट खंड पर गुरु नानकपुरा आरओबी का निर्माण 48,95,00,000 रुपए की लागत से किया जाएगा, जबकि दूसरा बस स्टैंड गढ़ा रोड आरओबी 63,98,00,000 रुपए की लागत से बनेगा। दोनों परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता रेलवे देगी। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकारें और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करेंगे। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों की 2026 की बैठक आज बेंगलुरु में संपन्न हुई। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष

0: अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह समापन सत्र में शामिल हुए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि दो दिन की बैठक में आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन निगरानी सहित कई विषयों पर चर्चा हुई।
1: We had 26 delegates from
2: इस बैठक में 10 देशों के 26 प्रतिनिधियों के साथ साथ इसरो इन स्पेस और अंतरिक्ष विभाग के लोग भी शामिल हुए। इसमें ब्रिक्स देशों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए रिमोट सेंसिंग उपग्रह समूहों के इस्तेमाल पर काफी चर्चा हुई, जिसमें आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन और दूसरे पहलू शामिल थे। हमने मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन प्रबंधन तथा अंतरिक्ष अभियानों के सतत संचालन पर भी विचार विमर्श किया।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने 14वें पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर सभी पासपोर्ट अधिकारियों की उनकी समर्पित सेवा और नागरिकों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए सराहना की। श्री सिंह ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत की पासपोर्ट सेवाओं में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि वर्ष 2025 में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों, पासपोर्ट सेवा केंद्रों और विदेशों में भारतीय दूतावासों के माध्यम से भारतीय नागरिकों को लगभग 1.5 करोड़ पासपोर्ट और संबंधित सेवाएं प्रदान की गई हैं। देश भर में पासपोर्ट सेवा केंद्रों और डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान में देश में ऐसे 545 केंद्र कार्यरत हैं। पिछले वर्ष 10 नए डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र खोले गए थे और इस वर्ष भी 10 नए केंद्र खोले जाने की योजना है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी योजना ग्रामीण के मसौदा समन्वय ढांचे पर आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल ने की। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया है कि ये बैठक अगले महीने की पहली तारीख से लागू होने वाले विकसित भारत जी राम जी योजना की तैयारियों के अंतर्गत आयोजित की गई। स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन ने राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान के सहयोग से गंगा नदी के तट पर शहरी नदी प्रबंधन योजनाओं का विस्तार किया है। ये प्रबंधन योजनाएं नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत हैं। अब तक 13 शहरों के लिए शहरी नदी प्रबंधन योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इस योजना के प्रथम चरण में 27 शहरों और दूसरे चरण में 33 शहरों के लिए योजनाएं तैयार की जा रही हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत की खबर है। एक रिपोर्ट।
3: बचाव काम युद्धकालीन तत्परता से जारी है। अब तक 18 श्रमिकों को मलबे की ढेर से जिंदा निकाला गया है। करीब 15 और घायल लोग वहां फंसे रहने का संभावना है। घायलों की इलाज SSKM अस्पताल में हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है उससे भी ज्यादा लोग फंसे हो सकते हैं। सेना, NDRF, सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड और कोलकाता पुलिस मिलकर बचाव अभियान चला रहे हैं। दुर्घटना के कारण पर उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक निर्माण के नक्शे में त्रुटि थी, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है ये अभी स्पष्ट नहीं है। काल विधानसभा में इसी विषय पर बयान दिया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य।
0: अरुणाचल प्रदेश के की पन्योर जिले के याजागी स्थित पोसा में मूसलाधार बारिश और अचानक आई बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। ताजा खबरों के अनुसार 4 लोग लापता हैं, 17 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 3 की हालत गंभीर है। प्रशासन नुकसान का आकलन कर रहा है। भूस्खलन के कारण प्रभावित क्षेत्र याजाली और होजपोटिन दोनों तरफ से अब भी संपर्क से बाहर हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि वे स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने लोगों से सभी सुरक्षा निर्देशों का पालन करने को कहा है। इस बीच अरुणाचल प्रदेश में तेज वर्षा के बाद असम में निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है। SDRF, NDRF और अन्य आपातकालीन बचाव दलों को तैयार रखा गया है। मौसम विभाग ने कल देश के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा में तेज वर्षा हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल तक तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की स्थिति बनी रह सकती है। बिहार में भी अगले 2 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। दिल्ली में कल बारिश की संभावना है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दा उठाने

0: कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में जम्मू कश्मीर पर भारत का रुख दोहराया।
1: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। ये हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है ऐसी बातें कही गई। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
0: भारतीय नौसेना के जहाज उदयगिरी और कवरत्ती दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत वियतनाम के हो चिन मिन शहर से दौरा पूरा करने के बाद रवाना हो गए हैं। इस दौरे पर पूर्वी बेड़े के फ्लैग ऑफिसर रियर एडमिरल आलोक आनंद ने हो चिन मिन शहर की पीपल्स कमेटी और वियतनाम पीपल्स नेवी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समुद्री सहयोग, आपसी समन्वय और क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा पर चर्चा की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लक्ष्य में INS कवरत्ती पर एक संयुक्त योग सत्र भी आयोजित किया गया। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है अम्बरीश सक्सेना।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 791 अंक बढ़कर 76,991 अंकों पर बंद हुआ। निफ्टी भी 198 अंक बढ़कर 24,022 अंकों पर जा पहुंचा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार में मिड कैप 100 सूचकांक 0.1% और स्मॉल कैप सूचकांक 0.4% तक बढ़ा। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया एक डॉलर की तुलना में 8 पैसे मजबूत होकर 94.66 पर बंद हुआ।
0: फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप बी मुकाबले में देर रात स्विट्जरलैंड का मुकाबला कनाडा से होगा। इसी ग्रुप में कतर और बोस्निया एंड हर्जोगोविना आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 12:30 बजे से खेले जाएंगे। US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने स्पेन की पाउला लोपेस और लूसिया रॉड्रिक्स को हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर के साथ व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून से सोल में मुलाकात की। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम गिरने से 5 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी। अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा से अचानक बाढ़ आई, असम में चेतावनी जारी की गई। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कनाडा आज रात स्विट्जरलैंड से खेलेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ FM 107.2 MHz ਤੇ। ਸਰੋਤਿਓ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪ ਕੇ ਲੀਏ ਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਰਿਲੇਅ ਕਰਾਂਗੇ।
4: ਆਪ ਕੇ ਲੀਏ ਮੈਂ ਸਭੀ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲੋਂ ਕੋ ਸਲਮਾ ਕਾ ਨਮਸਕਾਰ। ਸਾਥੀਓ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਕਾ ਪਹਿਲਾ ਗੀਤ ਹਮ ਲਾਏ ਹੈ ਆਪ ਕੇ ਲੀਏ ਆਸ਼ਾ ਭੋਸਲੇ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇ। ਨਗਮਾ ਨਿਗਾਰ ਹੈ मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार हैं राहुल देवबर्मन और फिल्म का नाम है समाधि।

आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में अगला गीत। नगमा निगार हैं हसरत जयपुरी, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन और फिल्म का नाम है सूरज।

0: प्रस्तुति पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है लता मंगेशकर की आवाज में, शब्द रचना मजरू सुल्तानपुरी की, संगीत रचना कल्याण जी आनंद जी की, और फिल्म का नाम है इशारा।

आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में वो नगमा जिसे लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने, संगीत है मदन मोहन का और फिल्म का नाम है पूजा के फूल।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये विविध भारती है और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। तो अगला गीत है आपके लिए लता मंगेशकर की आवाज में। इंदिवर के बोलों को संगीत से सवारा है कल्याण जी आनंद जी ने और फिल्म का नाम सुन लीजिए, हिमालय की गोद में।

साथियों, कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, तर्ज है शंकर जयकिशन की और फिल्म का नाम है संगम।

साथियों, कार्यक्रम आपके लिए अब समाप्त होता है। सलमा सैयद को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

ये है विविध भारती। आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर की हुए पकाए भूर की।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में बाबूलाल चतुर्वेदी यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि,
2: उन्होंने भी फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं एक लाइन सुना करती, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पूरे पकाए दूर के। मैं उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पूरे पकाए दूर के।
1: आप खाए थाली में, हमने कोदे प्याली में।
0: ऐसी अनमोल यादें आप

करिश्मा कपूर फिल्म इंडस्ट्री के एक बेहद सम्मानित कपूर परिवार की सदस्य हैं। परदादा पृथ्वीराज कपूर, दादा राज कपूर, पिता रणधीर कपूर और माँ बबीता की लाडली बेटी करिश्मा प्यार से पुकारी जाती हैं लोलो। वैसे घर में कोई इन्हें लोलीमा तो कोई लोला भी कहता है।

करिश्मा कपूर परिवार की ऐसी पहली महिला सदस्य हैं जिन्होंने फिल्मों में प्रवेश किया। हालांकि इससे पहले उनकी मां बबीता और चाची नीतू सिंह भी फिल्मों से जुड़ी थीं, लेकिन कपूर परिवार से जुड़ने के बाद उन्होंने फिल्मों से नाता तोड़ लिया। और जब करिश्मा ने फिल्मों में काम करने की बात अपने परिवार के सामने रखी तो उनकी ये बात मानने के लिए कोई राजी नहीं हुआ और तब उनका साथ दिया उनकी माँ ने और इस तरह करिश्मा आ गई फिल्मों में। तब उनकी पहली फिल्म आई प्रेम

करिश्मा को अपने फिल्मी करियर को संवारने में उनकी माँ बबीता ने हर कदम पर उनका साथ दिया और करिश्मा ने भी अपनी मेहनत और लगन से साबित कर दिया कि फिल्मों में आने का उनका फैसला गलत नहीं था।

करिश्मा कपूर के शुरुआती फिल्मी करियर में आने वाली ज्यादातर फिल्में गोविंदा के साथ आईं और बाकी की फिल्मों में भी करिश्मा के डांसेस और खूबसूरती का करिश्मा उनकी एक्टिंग पर हावी रहा।

करिश्मा कपूर एक संवेदनशील अभिनेत्री हैं, ये बात बताने का मौका करिश्मा को नहीं मिल रहा था। इसीलिए वो खुद भी कहीं ना कहीं ऐसे मौके की तलाश में थी और आखिर ये मौका उन्हें दिया श्याम बेनेगल ने। फिल्म थी जुबैदा।

0: अपने अभिनय का एक और रूप उन्होंने दिखाया शाहरुख और माधुरी के साथ, फिल्म थी दिल तो पागल है।
1: मुझको हुई ना खबर।

करिश्मा कपूर की कुछ और चर्चित फिल्में थीं अनाड़ी, खुद्दार, राजा बाबू, कुली नंबर वन, बीवी नंबर वन, शक्ति, राजा हिंदुस्तानी, साजन चले ससुराल। आइए सुने कुछ सुरीली झलकें।

करिश्मा के करिश्माई हुस्न और जादुई अदाकारी का दीवाना तो पूरा जमाना है, और शायद ये बात वो भी अच्छी तरह जानती हैं। इसीलिए फिल्मों से नाता तोड़ना वो भी नहीं चाहेंगे।

0: रमेश गोखले द्वारा प्रस्तुत इस कार्यक्रम के लिए आलेख और स्वर अमरकांत का था। अब नमस्ते।
1: आज के फनकार।

प्रस्तुत है छाया गीत। सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। सामिन, मैं आजकल सब कुछ भूल जाती हूँ। मैं अपना प्रेम कहीं रखकर भूल गई हूँ। हाँ, मैं अपना प्रेम कहीं रखकर भूल गई हूँ। ढूंढ रही हूँ उसे। दुख का दरवाजा खुला, करुणा के कमरे में झांका, हंसी को हटाकर देखा, सपनों की भी तलाशी ली, कहीं न मिला तो आज ही थाने में जाकर रपट लिखा दी है कि प्रेम के बगैर भला कोई कैसे जी सकता है। हाँ, प्रेम के बगैर भला कोई कैसे जी सकता है एक भी पल।

कहते हैं चखे बिना तो नमक तक की परख पूरी नहीं होती, और मैंने मोहब्बत कर ली, स्वाद चख भी लिया। कैसे थे मोहब्बत के वो पल, इश्क की वो गलियां, अब कुछ याद नहीं रखना चाहती मैं, कुछ भी तो याद नहीं रखना चाहती।

तुमसे ही की थी मोहब्बत, हाँ कुछ कुछ याद है मुझे, पर अब मैं भूलने लगी हूँ। तुम जो चाहो कहो, मेरे दिल को कुरेदो। तुम जो चाहो कहो, मेरे दिल को कुरेदो। मेरे सीने में गुलाब भर भर के बिखेर तो चाहे। मैं भूल चुकी हूँ सब कुछ कि तुम करते थे मुझसे कभी प्यार, चूमते थे मेरी पेशानी को, मेरे हाथों पर करते थे बोसों की अनगिनत बरसात। हाँ भूल चुकी हूँ मैं अब सब, भूल चुकी हूँ मैं अब सब।

इस अंतराल के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। अब बदल चुकी हूँ मैं, भुला के तुमको आगे बढ़ चुकी हूँ मैं। और प्रेम ही तो सब कुछ नहीं है, हुँ? ये न तो मांस है, न ही कोई पे, न नींद, न तूफानी बारिश से बचने के लिए छत, न ही डूबते हुए लोगों के लिए कोई तैरता हुआ सहारा। फिर क्यों करूं मैं मोहब्बत, क्यों याद रखूं तुम्हें मैं, हाँ फिर क्यों तुम्हें याद रखूं मैं।

जीवन में जो आई थी उमंग, पतझड़ में जो आया था वसंत, सर्दियों की वो बहकी बहकी रातें, प्यार की सारी वो गहरी गहरी बातें, वो प्रेम को निभाने का अटल इरादा, हमेशा साथ रहने का वो वादा, सब धीरे धीरे खत्म हो गया। अब तुमने आसानी से कह जो दिया था, भूल जाओ ये सब। और मैं भूल गई हूं सब सब कुछ सब सब कुछ।

जब प्यार खत्म होता है तो दिल में एक खालीपन रह जाता है। निसंदेह तुम्हारे जाने से घर खाली हो गया था और जीवन सूखी बंजर जमीन, पन्ने जिंदगी के खाली रह गए थे। दिल के किसी सुनसान कोने में पीड़ाएं चुपचाप घर कर गई थीं। हाँ, ये सच है, पर अब समय का मरहम उन्हें भर चुका है। हाँ, समय का मरहम उन्हें भर चुका है। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मेरे साथ रहे ना रहे, मेरा साथ दे ना दे, मैं अब आजाद हूं। अब मैं अपने वश में हूं। हाँ, अब मैं अपने वश में हूं, किसी और के नहीं।

0: और अब छाया गीत से मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

यह प्रोग्राम सुरसांझ ते आज प्रोग्राम विच तुहाडे नाल है तुहाडी रेडियो दोस्त रमन ते आओ प्रोग्राम दा आगाज़ करदे हां गिप्पी गरेवाल ते सुदेश कुमारी दी आवाज़ां विच कैरी ऑन जट्टा टू फिल्म दे इस गीत दे नाल बोल हैप्पी राय कोटी दे ते संगीत जस्सी कटियाल दा।

0: मैं माँ बनने वाली हूँ। बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
1: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
0: क्या ये जांच उपलब्ध है?
2: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
3: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुँचने से रोका जा सकता है।
2: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार।
3: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
4: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
5: श्रोतियों, आज दे प्रोग्राम सुरसांझ दा आखिरी गीत शहीद दे मोहब्बत फिल्म तो गुरदास मान दी आवाज़ विच।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और लंबित मुद्दों के शीघ्र समाधान पर बल दिया। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। श्री मोदी ने टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और जागरूकता अभियानों में एनसीसी कैडेटों तथा माय भारत स्वयं सेवकों की भागीदारी बढ़ाने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने साइबर अपराध और डिजिटल धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी एजेंसियों, बैंकों और डिजिटल प्लेटफॉर्मों के बीच बेहतर समन्वय तथा जन जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि दूत जैमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली में बैठक की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत ग्रीर के नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक और प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमार जुकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
1: It is clearly our responsibility.
2: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूँगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
0: नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि 22 जून को दिल्ली से अमृतसर जा रही एयर इंडिया की एक उड़ान को रनवे निरीक्षण के दौरान के कारण अमृतसर हवाई अड्डे पर कुछ समय तक प्रतीक्षा करने के निर्देश दिए गए थे। मंत्रालय के अनुसार इस दौरान विमान रडार के मार्गदर्शन के तहत कुछ समय के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश

0: कर गया था। ये प्रक्रिया पाकिस्तान के हवाई यातायात नियंत्रण अधिकारियों के समन्वय से की गई। बाद में विमान को दिल्ली वापस भेजा गया, जहां वे सुरक्षित रूप से उतरा। मंत्रालय ने बताया कि घटना की सूचना न देने के मामले में संबंधित एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और विमान चालक दल के खिलाफ अंतरिम कार्रवाई की गई है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत की खबर है। घायलों का इलाज सरकारी SSKM मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में चल रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि कोलकाता नगर निगम घटना की रिपोर्ट तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि हादसे की विस्तृत जानकारी कल विधानसभा में दी जाएगी। गुजरात के भुज क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में आज AI आधारित स्वचालित ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन किया गया। नई व्यवस्था के अंतर्गत ड्राइविंग टेस्ट से पहले वाहन का पंजीकरण, प्रशिक्षण वीडियो देखना, फोटो स्कैनिंग और RFID सेंसर लगाना अनिवार्य किया गया है। अधिकारियों के अनुसार इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और पूरी प्रक्रिया अधिक निष्पक्ष बनेगी। ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय नागरिक जब तक आवश्यक न हो ईरान की यात्रा न करें। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे अपने आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ FM 107.2 ਮੈਗਾਹਰਟਸ ਤੇ ਸਰੋਤਿਓ 11:05 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ 5:55 ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਜੈ ਹਿੰਦ।